सुप्रभात, हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की नवमी तिथि, तदनुसार 30 जून सन 2026, प्रातः के 5:58 और 45 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमरीका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर एक एक गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर प्रातः के 6:05 हुए हैं और लीजिए अब प्रस्तुत है वंदना कार्यक्रम। सबसे पहले लीजिए सुनिए ज्ञान ज्योति।

जब व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करता है तो उसके मन से भय, चिंता और निराशा धीरे धीरे दूर होने लगती है। भक्ति हमें धैर्य, विनम्रता, प्रेम, करुणा और क्षमा जैसे श्रेष्ठ गुणों को अपनाने की प्रेरणा देती है। ईश्वर पर विश्वास सही दिशा दिखाकर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है।

ज्ञान ज्योति। और लीजिए प्रस्तुत है भक्ति गीतों का भक्तिमय कार्यक्रम वंदना। सच्ची भक्ति शब्दों से नहीं बल्कि समर्पण और आस्था से प्रकट होती है। जहां हृदय में श्री राम का वास हो, वहां भय, अहंकार और मोह अपने आप समाप्त हो जाते हैं। और ऐसी ही भक्ति और समर्पण श्री हनुमान के हृदय में था श्री राम के प्रति। उन्होंने अपनी छाती चीर के दिखा दिया कि उनके हृदय में केवल और केवल श्री राम वास करते हैं।

इस संसार में सबसे पवित्र रिश्ता हमारा ईश्वर के साथ है, जो ईश्वर और हमें विश्वास की डोर से बांधे रखता है। अतः अपने मन को ईश्वर से जोड़ लो।

भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। जीवन की हर सुबह की शुरुआत शिव स्मरण के साथ करें तो दिन शुभ हो जाता है। सच्ची भक्ति बाहरी वैभव से नहीं बल्कि शांत, निर्मल और करुणामय हृदय में बसती है। तो आइए शिव की भक्ति में खो जाएं इस भजन के साथ।

प्रेम की मधुरता, करुणा की गहराई और भक्ति का सच्चा स्वरूप यदि कहीं दिखाई देता है तो वह कृष्ण की दिव्य लीलाओं में। उनकी बांसुरी की मधुर तान केवल कानों को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी आनंद से भर देती है। तो आइए श्री कृष्ण की भक्ति के रंग में रंगते हुए सुनते हैं ये मधुर सा भजन।

हे जगत जननी जगदम्बा माँ, सबकी झोलियाँ भरना, आपकी शरण में आए हुए हर भक्त की विपदा हरना।

श्रोताओं, भक्ति के इसी क्रम में आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ भाग 33।

शिव का वरण करने के पार्वती के निश्चय की परीक्षा लेने के उद्देश्य से सप्तर्षियों ने हर प्रकार से उन्हें शिव से विमुख करने का प्रयत्न किया, किंतु शैल कुमारी शैल की भांति ही दृढ़ थी। कहा, मैं महर्षि नारद के वचन की अनसुनी नहीं करूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिल गए होते तो मैं आपका उपदेश सिर आंखों पर रखकर मान लेती, परंतु अब तो शिव जी के लिए मैं अपना जन्म हार चुकी हूँ, फिर उनके गुण दोष का विचार कैसा। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक ये हठ रहेगा कि या तो मैं शिव जी को वरूंगी या फिर कुंवारी रहूंगी। शिव जी के लिए पार्वती की ऐसी प्रीति देखकर ज्ञानी मुनिगण उनकी जय जयकार कर उठे। बोले, हे माते, आप माया हैं और शिव कल्याणकारी भगवान। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ऋषिगण ने हिमवान के पास जाकर उन्हें पार्वती के पास भेजा, जो विनती करके उन्हें घर ले आए। उधर भगवान शंकर के पास जाकर ऋषियों ने पार्वती की दृढ़ प्रतिज्ञा का वर्णन सुनाया, जिससे भगवान शिव आनंद मग्न हो गए।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर, शिप्रा बोस और रामकृष्ण। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण के तुरंत बाद यानी 6:55 पर संस्कृत समाचार और 7 हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 7:05 पर। 7:35 पर सुनिएगा कार्यक्रम लोक संसार। सुबह 8 समाचार प्रभात का अंक और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 8:30 पर सुनिएगा हिमाचल डायरी का आज का अंक। 8:35 पर हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। सुबह 9:20 पर आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 9:30 पर सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। सुबह 10 हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। लघु वार्ता आप सुनेंगे सुबह 10:05 पर। झूमते तराने इस कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा सुबह 10:15 पर। 10:45 पर लेकर आएंगे कार्यक्रम लोक रंग। सुबह 11 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। 11:05 पर विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। देवधरा के लोकगीत, लोकगीतों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12:00। 12:30 पर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा सैनिकों के लिए। दोपहर 1:00 हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। 2:00 मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 2:30 पर सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। दिन में 3:00 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। 3:10 पर विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुनिएगा। शाम 5:00 हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 5:05 पर कार्यक्रम रूपरेखा के बाद भजन संध्या कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युव मंच लेकर आएंगे शाम 5:30 पर। शाम 6:00 प्रादेशिक समाचार सुनिएगा जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से हम रिले करेंगे। सफर सुहाने गाने नए पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:05 पर। 6:30 पर किसान व बागवान भाई बहनों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा किसान वाणी। शाम 7:00 हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 7:05 पर सुनेगा भक्ति संगीत कार्यक्रम। रौनका ग्राइंडियां ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 7:25 पर। 7:45 पर आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:00 सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या का अंक और रात्रि 9:00 न्यूज एट 9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 9:15 पर हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुनेगा। देशभक्ति गीत आप सुनेंगे रात्रि 10:00 और 10:30 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम चांदनी रातें का। रात्रि 11:00 हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित बरेली किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में संस्कृत समाचार और 7 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां राष्ट्रपतिभवने ह्यः 26,2000 द्वितीयरक्षा अलङ्करणसमारोहे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुवर्या शौर्यपुरस्कारान् प्रदत्तवती। शौर्यपुरस्काराः रक्षासैन्यबलानां, केन्द्रीयसशस्त्र आरक्षकबलानां, केन्द्रशासित आरक्षकाणां, कार्मिकाणां च कृते प्रदीयन्ते। एते पुरस्काराः सशस्त्रबलानां, केन्द्रीयसशस्त्र आरक्षिबलानां, अन्यसुरक्षा अभिकरणानां च कार्मिकाणाम् असाधारणशौर्यकार्यान् उद्दिश्य प्रदीयन्ते। राष्ट्रपतिना समारोहे 7 सर्वोत्तमयुद्धसेवापदकानि, 30 परमविशिष्टसेवापदकानि, 12 उत्तमयुद्धसेवापदकानि, 56 अतिविशिष्टसेवापदकानि च वितरितानि। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः, रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः, अन्ये केन्द्रीयमन्त्रिणः, सशस्त्रसेनायाः वरिष्ठाः अधिकारिणश्च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपतिः मुर्मुः वर्या इतः पूर्वम् अस्मिन् मासे 8 दिनाङ्के राष्ट्रपतिभवने रक्षा अलङ्करणसमारोहे प्रथमचरणस्य शौर्यपुरस्कारान् प्रदत्तवती। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ह्यः अवदत् यत् तस्य सेशेल्स् देशस्य यात्रा महत्वपूर्णैः परिणामैः पूरितम् आसीत्, येन भारत सेशेल्स् देशयोः मैत्री प्रवर्धिता भविष्यति। सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे प्रधानमन्त्री अवदत् यत् विगत 15 वर्षेषु उभयोः देशयोः मध्ये सम्बन्धः सुदृढविश्वासेन संयुक्तप्रगतिना च चिह्नितः अस्ति। यदा तु आगामि 50 वर्षाणि नवान्वेषणेन सुस्थिरतया संयुक्तसमृद्ध्या च निर्धारिताः भविष्यन्ति। सः सेशेल्स् देशस्य स्वातन्त्र्यस्य 50वें वर्षे राष्ट्रियदिवसस्य समारोहे भागग्रहणाय हर्षं प्रकटितवान्। श्रीमोदी सेशेल्स् देशस्य राष्ट्रपत्ये डॉ. पैट्रिक हर्मिनी इत्यस्मै सेशेल्स् देशस्य सर्वकाराय, जनानां च स्नेहाय धन्यवादम् अददात्। राष्ट्रियनिवेशावसंरचनाकोषस्य नीफ इत्यस्य कृते सर्वकारस्य समग्रप्रतिबद्धता अधुना 60,000 कोटिरूप्यकाणि अभवत्। एतदुपक्रमं मूलसौकर्याणां कृते अन्येषु राष्ट्रियमहत्वपूर्णेषु क्षेत्रेषु च केन्द्रस्य निवेशप्रतिबद्धतां प्रदर्शयति। केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन गतसप्ताहे आधारभूतसंरचनानिवेशस्य गतिं वर्धयितुं, देशे संस्थागतमूलधनम् उत्प्रेरयितुं च निधौ 30,000 कोटिरूप्यकाणाम् अतिरिक्तनिवेशप्रतिबद्धतानुमोदिता। केन्द्रीयकृषिकृषककल्याणमन्त्री शिवराजसिंहचौहानः अद्य आरभ्य पूर्वोत्तरस्य 2-दिवसीययात्रायां भविष्यति। श्रीचौहानः असमराज्यस्य गुवाहाटीनगरे उच्चस्तरीयसमीक्षासभायाः आयोजनं करिष्यति। सभायाम् असमराज्यस्य समीपस्थेषु क्षेत्रेषु सस्येषु ग्रामेषु महत्वपूर्णजलसंरचनायां च जलप्लावस्य प्रभावस्य समीक्षा भविष्यति। वर्तमानसहायोद्धारकार्याणां प्रगतेः समीक्षापि भवितुं शक्नोति। असमराज्यस्य समीक्षायाः अनन्तरं श्रीचौहानः श्वः अरुणाचलप्रदेशस्य जलप्लावितक्षेत्राणां निरीक्षणं विधास्यति। सः जलप्लावितानां ग्रामाणां, कृषिक्षेत्राणां, सहायोद्धारशिबिराणां च स्थित्याः मूल्याङ्कनं कर्तुं वायुमार्गेण, भूमार्गेण च सर्वेक्षणं करिष्यति। जुलाई मासस्य 3-दिनाङ्कादारभ्यमाणस्य 57-दिवसात्मिकायाः वार्षिक अमरनाथयात्रायाः प्राक् सुरक्षासंस्थाः पञ्जाबतः जम्मूकश्मीरपर्यन्तं तीर्थयात्रामार्गे सज्जतां तीव्रीकृतवन्तः। मोक्ड्रिल् इति आचरन्ति, निरीक्षणप्रणालीं सक्रियं कुर्वन्ति। सहस्रशः तीर्थयात्रिणां सुरक्षितगमनागमनं सुनिश्चेतुम् अन्तःसंस्थासमन्वयं सुदृढं कुर्वन्ति च। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध हट जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी, इस वजह से 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसीलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। केंद्र सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियमन भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। ये नीति कल से चरणबद्ध ढंग से लागू होगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को शून्य उत्सर्जन परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाना और प्रदूषण कम करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार अगले 4 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
2: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है। तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत जबकि 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पेरागुए ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया है। दोनों टीमें निर्धारित समय पर एक एक गोल की बराबरी पर थीं। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पेरागुए ने जर्मनी को 4-3 से हराया। इसके साथ ही पेरागुए राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर गई है, जबकि जर्मनी विश्व कप से बाहर हो गई है। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। ब्राजील ने रोमांचक मुकाबले में जापान को 2-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः की 7:05 हुए हैं और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
4: भाभी जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
3: नीलम अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
4: भाभी छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
5: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुप्रभात हमीरपुर, आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रकाशा। जानकारियों से भरपूर, मनोरंजन से भरपूर ये कार्यक्रम लेकर बिल्कुल हाजिर हो चुके हैं। कार्यक्रम की शुरुआत एक खूबसूरत से विचार के साथ करते हैं। जिंदगी में हर इंसान अपनी कहानी का लेखक खुद होता है। हमारे आज के फैसले ही हमारा आने वाला कल बनाते हैं। चाहे रास्ता सपनों की ओर ले जाए या थोड़ी देर की खुशियों की तरफ, चुनाव हमेशा हमारा अपना होता है। इसलिए वही चुनो जो तुम्हें अंदर से सुकून, सम्मान और असली खुशी दे। बिल्कुल जी, हमारी जिंदगी एक किताब की तरह है और उसकी कहानी का लेखक कोई और नहीं है बल्कि हम स्वयं होते हैं। हमारी सोच, हमारे निर्णय, हमारे कर्म और हमारा धैर्य ही इस कहानी के हर अध्याय को लिखते हैं। हम क्या सोचते हैं वो हमारे जीवन में आगे ज़रूर घटित होता है। किस तरह की सोच है हमारी और हमारे निर्णय किस तरह के हैं, सही समय पर सही निर्णय अगर हमने लिया है तो ज़िंदगी के पन्नों पर वो भी कहानी उभर कर सामने आएगी। हर सुबह एक नया अध्याय लेकर आती है और ये हम पर निर्भर करता है कि उस पन्ने पर शिकायतें लिखें या संघर्ष, बहाने लिखें या उपलब्धियां, निराशा लिखें या फिर उम्मीद। जी बिल्कुल, तो देखिए अगर बीते हुए पन्नों में कुछ गलतियां हुई हैं तो उनसे सीखिए, क्योंकि हर लेखक की सबसे बड़ी खूबी तो यही होती है ना कि वह अगले अध्याय को पहले से बेहतर लिख सकता है। अपने सपनों पर विश्वास रखिए, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए और हर दिन अपनी जीवन की कहानी को नए उत्साह के साथ लिखते रहिए। जी बिल्कुल, और कहानी ऐसी हो जो कि आपके जीवन से दूसरों को प्रेरणा दे। बिल्कुल जी, तो देखिए हमें अपनी इस खूबसूरत कहानी को और भी बेहतरीन बनाना है। ज़िंदगी में हर चीज़ का आनंद लेते जाएं, है ना, और जो आपको लगे

थोड़ा सा हमें जीवन में कष्ट देने वाली चीज़ें हैं उन्हें भूलते जाएं जीवन में, तभी हम अपने इस खुशियों भरे सफ़र को अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए अब कार्यक्रम में भी बात मनोरंजन की करते हैं, खूबसूरत सा गीत आइए सुनते हैं।

0: जी बिल्कुल, ऐसा ही बनना है हमें, एक अलग पहचान बनाएं अपनी, जो भी आपको लगे कि बहुत बेहतर है और हमें करना चाहिए ज़रूर करें। ये जो गीत अभी आपने सुना जागीर फिल्म से था, किशोर कुमार और अमित कुमार की आवाज़ों में। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं, आज के इतिहास की जानकारी आपके साथ साझा करेंगे।
1: बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
2: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं।
3: अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
4: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
5: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम।
7: इतनी भी क्या जल्दी थी?
6: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम।
8: और ये
9: मेरी गुड़िया के
10: नाम। दादी
6: हाँ,
10: आपके नाम?
11: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
6: शुभ शुभ बोलो।
10: क्या
11: RBI कहता है?
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
12: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
13: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
12: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
14: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
12: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
14: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
12: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आपने अपनी रेडियो सेट पे ट्यून किया है आकाशवाणी हमीरपुर 101.8 मेगाहर्ट्ज पर और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। चलिए आज के इतिहास की जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। 30 जून का आज का ये दिन है और आज के दिन की कुछ खास बातें जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। 1905 की बात करें, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना शोध पत्र प्रकाशित कर विशेष सापेक्षता का सिद्धांत दुनिया के सामने रखा था आज ही के दिन जी। और 1947 में सीमा आयोग का गठन आज ही के दिन हुआ था। 2002 की बात करें तो ब्राजील ने जर्मनी को 2-0 से हराकर फुटबॉल के विश्व कप पर कब्जा किया था, यानी विश्व कप उन्होंने जीता था आज ही के दिन। 2005 की बात करें तो ब्राजील ने कन्फेडरेशन फुटबॉल कप जीता था आज ही के दिन। ।2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आम सहमति से शांति रक्षण विभाग के बंटवारे का निर्णय आज ही के दिन किया था। 2008 में रविकांत उमाशंकर विमल चंद्र पांडे को संयुक्त रूप से भारतीय ज्ञानपीठ का नवलेखन पुरस्कार प्रदान किया गया था आज ही के दिन। 2008 में ही भारतीय पत्र अनिसुद्दीन अजीज को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बुक कीपर्स के न्यू बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था आज ही के दिन। बात करें किन महान हस्तियों का जन्म आज के दिन हुआ था। भारतीय साहित्यकार नागार्जुन का जन्म हुआ था 1911 में आज ही के दिन। और हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं आलोचक रघुवंश का जन्म 1921 में हुआ था आज ही के दिन। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार कल्याण जी का जन्म 1928 में हुआ था। और जी बात करें 1934 में C.N.R. राव जो कि भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। जिन महान हस्तियों ने इस दुनिया को अलविदा कहा आज के दिन, उनकी बात करें तो भारत के प्रसिद्ध चित्रकार K.H. आरा का निधन हुआ था 1985 में आज ही के दिन। 1917 में दादा भाई नौरोजी जो कि भारत के प्रसिद्ध एक दिग्गज उद्योगपति, शिक्षाविद और विचारक थे, उनका निधन भी आज ही के दिन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। ये थी आज के इतिहास की जानकारी आपके साथ साझा की और अब चलिए कार्यक्रम में सुनते हैं एक और गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स है, आप सभी आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स यानी कि HIV का ज्यादा रिस्क।
3: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें हम भी इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाऊं, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें।
7: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जारी।
8: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
9: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
10: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
11: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, इस समय आप सुन रहे हैं सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम जी। और अब कार्यक्रम में शामिल करते हैं आज के समाचार पत्रों से कुछ ताजा तरीन समाचार। सबसे पहले बात करेंगे, अमेरिका और ईरान एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने और तनाव कम करने पर सहमत हो गए हैं। होर्मुज जल डमरू मध्य से मालवाहक जहाजों को स्वतंत्र रूप से गुजरने देने की अनुमति भी दी जाएगी। दोनों पक्ष युद्ध के स्थायी समाधान के लिए अंतरिम समझौते के तहत तकनीकी वार्ता जारी रखने पर भी सहमत हुए हैं। अगले दौर की ये वार्ता मंगलवार को यानी आज कतर की राजधानी दोहा में होगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अपनी 3 दिवसीय सेशल्स यात्रा पूरी करके स्वदेश लौट आए हैं, लेकिन ये दौरा सिर्फ स्वागत सम्मान और राजनयिक औपचारिकताओं तक सीमित नहीं रहा। 4 सैन्य सलाहकारों की फिर से बहाली के अलावा उपहार स्वरूप मेड इन इंडिया गश्ती पोत

कहा कि बीते 50 वर्षों के हमारे संबंध गहरे भरोसे और आपसी प्रगति के गवाह रहे हैं। अगले 50 वर्ष नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के रूप में परिभाषित होंगे।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोमवार को आरोग्य सेतु 2.0 लॉन्च किया। कोविड-19 के दौरान शुरू किया गया ये ऐप अब पर्सनल डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड के रूप में काम करेगा। इसमें आभा आईडी बनाने, स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और अस्पतालों में डिजिटल रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी। अगली खबर की बात करें तो सीबीएसई 12वीं के नतीजों की इवैल्यूएशन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बोर्ड का दावा है कि अगले 24 घंटे में प्रक्रिया 100% पूरी कर ली जाएगी। अब तक 99.7% के नतीजे आ चुके हैं। बोर्ड के अधिकारी का कहना है कि अधिक संख्या में आवेदन आने के बावजूद इस बार समूची प्रक्रिया 10 दिन में पूरी हो रही है।

जी, अगर मौसम की बात करें तो पूर्वी छोर पर 18 दिन से अटका मानसून मंगलवार से यानी आज से रफ्तार पकड़ेगा। एक साथ बने कई मौसमी सिस्टम ने सुस्त पड़े मानसून में जान फूंक दी है। मंगलवार को यानी आज उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक दस्तक के आसार हैं। अगले 3-4 दिन में देश के बचे हुए हर राज्य, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान में भी मानसून अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है।

जी, और अब कुछ खेल खबरों की बात करते हैं। सबसे पहली खबर की बात करें तो काइलिन मोपे की अगुवाई में गत उपविजेता फ्रांस की टीम अपने तीसरे फीफा विश्व खिताब की राह में मंगलवार को यानी आज अंतिम 32 के मैच में स्वीडन को हटाने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। ग्रुप चरण में फ्रांस ने तीनों मैच जीते जिनमें कप्तान मोपे और आउस्माने डेम्बले ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं स्वीडन की टीम ग्रुप एफ में एक जीत, एक ड्रॉ और एक हार के साथ तीसरे नंबर पर रही थी। थाईलैंड में हो रही एशियाई यूथ चैंपियनशिप में भारत की अंडर 19 टीम ने हांगकांग को 3-1 से हराकर कम से कम कांस्य पदक और 2027 विश्व यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में सीधा स्थान पक्का कर लिया है। जी, अगली खबर की बात करें तो T20 विश्व कप से बाहर होने के बावजूद भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ICC ने सोमवार को महिला व पुरुष टीमों के ओलंपिक क्वालिफिकेशन का पैमाना निर्धारित किया। अब भारतीय पुरुष टीम को 31 दिसंबर 2026 तक रैंकिंग के आधार पर क्वालिफिकेशन का इंतजार करना होगा। महिला टीम ने मौजूदा T20 विश्व कप में एशिया की शीर्ष टीम के रूप में क्वालिफाई किया।

जी, तो ये थी आज के समाचार पत्रों से कुछ ताज़ा तरीन खबरें आप तक हमने पहुंचाई, और अब इसी के साथ आज का सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त, एक बार फिर आप सभी को कहते हैं सुप्रभात हमीरपुर।

लोक संसार कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल, आज के इस कार्यक्रम में भी हम हिमाचल से जुड़ी हुई जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। जब भी बात आती है हिमाचल की तो यहाँ की खूबसूरत वादियों की याद ज़रूर आती है ना। और देखिए, हम तो अपने इस प्रदेश पर गर्व महसूस करते हैं और यहाँ के हम निवासी हैं ये सोचकर ही मन हर्षित हो जाता है और गर्वित महसूस हो करते हैं हम सभी। और देखिए, बाहर से आने वाले पर्यटक भी यहाँ आकर अपनापन महसूस करते हैं, यहाँ की खूबसूरत वादियों के नज़ारों का आनंद वो लेते हैं। तो चलिए, हिमाचल दर्शन में आज कुछ ऐसी ही जगहों का हम आपसे जो है वो साझा करेंगे, चित्रण करेंगे, एक इसके ज़रिए अपनी जो इस कार्यक्रम में हम जानकारी देते हैं उस जानकारी के ज़रिए। तो चलिए, आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे हम सांगला घाटी की। जी देखिए, सांगला घाटी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित एक बेहद खूबसूरत और शांत पर्यटन स्थल है। इसे बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सेब के बागानों और शांत वातावरण के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए और जो भी यहाँ जाता है इस यहाँ की खूबसूरती का आनंद ज़रूर लेता है। चलिए, इसकी भौगोलिक ऊंचाई की बात करें और इसकी स्थिति की बात करें तो ये घाटी समुद्र तल से लगभग 2600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसके बीच से होकर कलकल करती बसपा नदी बहती है जो इस जगह की खूबसूरती को चार चांद लगा देती है। जी, और भी बहुत सारी जगहें हैं इसके आसपास जहाँ पे घूमा जा सकता है, जिसमें चितकुल एक जगह है। ये सांगला से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसे भारत तिब्बत सीमा के पास बसा हिंदुस्तान का आखिरी आबाद गांव माना जाता है। जी, और देखिए, बात करेंगे कामरू फोर्ट की। ये एक प्राचीन किला है जो कि सांगला गांव के ऊपर स्थित है और इसमें भगवान बद्रीनाथ का एक मंदिर भी है। जी हाँ, कामरू फोर्ट के पास। और देखिए, बैरिंग नाग मंदिर की बात भी हम करेंगे ज़रूर। स्थानीय लोगों के लिए एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण एक मंदिर है जहाँ पे वो जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और जो वहाँ पे आने वाले यात्री हैं वो भी यहाँ पे ज़रूर जाते हैं। जी, साथ ही सांगला और चितकुल के बीच स्थित एक गांव है और ये गांव अपनी हरियाली और पारंपरिक लकड़ी के घरों के लिए जाना जाता है। तो ये तो वहाँ की जगह है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये है रक्षम, जो कि वहाँ की एक खूबसूरत जगह है जो कि आपकी जो कि हिमाचल प्रदेश के जो पारंपरिक लकड़ी के घरों की बनावट और सुंदरता के लिए ख़ास तौर पर जाना जाता है ये गाँव। तो देखिए, सबसे अच्छा समय यहाँ पे घूमने का, सबसे बेहतरीन समय जो है वो जब मौसम भी बहुत अच्छा होता है, सुहावना होता है, तो वो है मई से अक्टूबर तक का समय जहाँ पे आप जा सकते हैं घूमने। चारों तरफ हरियाली होती है और सेब व चेरी के बागों का नज़ारा देखने को मिलता है। ये जो सांगला घाटी है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित, संभवतः भारत के सबसे खूबसूरत पहाड़ी इलाकों में से एक है ये जगह और यहाँ के मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों ने कई यात्रियों को इस जगह से मोहित कर लिया है। इतना प्यारा होने के बावजूद सांगला घाटी जो है वो पर्यटन स्थलों में से एक है जहाँ पे कम लोग जाते हैं क्योंकि बहुत शायद एक पहाड़ी इलाका है तो इसलिए लोग जाने से कतराते हैं, लेकिन ज़रूर जाना चाहिए और यात्री जो है यहाँ पे ज़रूर यात्रा करें ताकि यहाँ के खूबसूरत वादियों का ज़रूर वो आनंद ले पाएं। कभी वक्त मिलता है या कभी हम जब छुट्टियों पे जाते हैं तो इन ऐसी जगहों का हमें ज़रूर भ्रमण करना चाहिए क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने प्रदेश के बारे में हमें देखने को मिलती हैं और हमें महसूस होती है वो खूबसूरती जो प्राकृतिक रूप से हमारे इस प्रदेश को, हमारे हिमाचल को और भी खूबसूरत बनाती है। तो चलिए, ये जो खूबसूरत सी घाटी है, यहाँ का नज़ारा जो है वो ज़रूर हमें लेना चाहिए। यहाँ का जो भ्रमण करने का जब भी मौका मिले ज़रूर हमें करना चाहिए।
और देखिए किन्नौर जिले की ये एक घाटी है, तो ये देखने में बेहद खूबसूरत है। चारों ओर फैले बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगलों और घाटी से बहती बसपा नदी को देखते ही उस लंबी यात्रा की थकान यात्री जो है भूल जाते हैं, जिसके कारण इस घाटी तक पहुँचे हैं। तो क्योंकि देखिए जब ऐसे पहाड़ी इलाकों की यात्रा करने के लिए यात्री जाते हैं तो थकान तो महसूस होती ही है, लेकिन वहाँ पर जाकर जब उन खूबसूरत वादियों का वो भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, वहाँ के बारे में जानते हैं, तो वो थकान स्वतः ही दूर हो जाती है। ये घाटी बेहद खूबसूरत है, खासकर बसंत और शरद ऋतु में जब फूल और सेब के बाग पूरी तरह से खिले होते हैं या जब पत्तियाँ अपना रंग बदलती हैं, तो इस नज़ारे को बिल्कुल भी किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए। जब भी वक्त मिले ज़रूर जाना चाहिए। और देखिए इसके साथ साथ खूबसूरत तो ये घाटी है ही है, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसको एक आकर्षण का केंद्र बनाती हैं। वो हैं वहाँ के लोग, उनके गांव और उनकी सांस्कृतिक जो इतिहास है उसके बारे में जब जानते हैं लोग या यात्री, तो वो खास तौर पर एक बहुत ही आकर्षित करने वाली चीज़ है। सांगला घाटी में अगर कोई जाए तो पुराने किले के अवशेष, पारंपरिक वास्तुकला में बने खूबसूरत मंदिर और वहाँ के लोगों की समृद्ध तिब्बती संस्कृति को बिल्कुल देखना नहीं भूलते और उनके बारे में वो जानकारी हासिल करना चाहती हैं। सांगला घाटी एक शानदार अनुभव जो है साबित होती है उन लोगों के लिए जो प्रकृति से जुड़े रोमांच को महसूस करना चाहते हैं या ऐसी गतिविधियों के साथ जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि ट्रैकिंग हो गया या कैंपिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग, माउंटेन बाइकिंग, ये सारी गतिविधियां हैं जो वहाँ पे की जा सकती हैं। और देखिए ये है हमारे हिमाचल की खूबसूरती जो कि हर जगह हमें देखने को मिल जाती है, और जब भी लोग यहाँ घूमने आते हैं, पर्यटक घूमने आते हैं, तो यहाँ की हर चीज़ का आनंद वो लेना चाहते हैं। तो सांगला घाटी के बारे में हमने बात की आज के इस कार्यक्रम में, और अब चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और सुनते हैं एक प्यारा सा लोकगीत।

0: कार्यक्रम में लोकगीत हम सुनेंगे लेकिन छोटे से अंतराल के बाद।
1: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
2: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
1: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
3: आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स है, आप सभी आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
4: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
5: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स यानी कि HIV का ज्यादा रिस्क।
3: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें हम भी इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाऊं ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखो।
7: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें।
8: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जारी।

0: आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स है, आप सभी आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी हो सकता है।
3: मल्टीपल पार्टनर्स यानी कि एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें हम भी इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाऊं, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
4: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें।
5: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जारी।
6: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
7: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
6: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
8: लोक संसार कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। जी, और अब हमीरपुर से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की बात करते हैं। सबसे पहली खबर की बात करें, सघन पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान के दूसरे दिन सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने घर घर जाकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाई। इस दौरान 883 बच्चों को दवा पिलाई गई, जबकि पहले दिन रविवार को जिले में 29,830 बच्चों को खुराक दी गई थी। पहले दिन कुछ बच्चे छूट गए थे, जिन्हें सोमवार को विशेष प्रयास कर टीमों ने कवर किया। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने प्रवासी परिवारों तक भी पहुंचकर उनके बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाई, ताकि कोई भी बच्चा अभियान से वंचित ना रह जाए। बात करते हैं अगली खबर की। जिला सांख्यिकीय अधिकारी कार्यालय में सोमवार को 20वें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम करवाया गया। कार्यक्रम में जिला सांख्यिकीय अधिकारी अशोक कुमार बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, वर्ष 2007 में महान सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्रा महालनोविस का जन्मदिन जो है वो जन्म दिवस 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने जनसंख्या अध्ययन में माप के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले महालनोविस डिस्टेंस का आविष्कार किया था। पीसी महालनोविस को सांख्यिकी और भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1968 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। इसके अलावा उन्हें अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी पुरस्कृत किया था। भारतीय डाक विभाग ने भी उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था। इस वर्ष सांख्यिकी दिवस का विषय प्रशासनिक डाटा की क्षमता को अनलॉक करना रखा गया है।

जी, हमीरपुर ज़िले के सरकारी स्कूलों में दाखिल प्री प्राइमरी कक्षाओं के नौनिहाल को बरसात की छुट्टियों में पढ़ाई में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए शिक्षकों ने विशेष ऑनलाइन अभियान शुरू किया है। जूम और व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों को कठिन विषय पढ़ाए जाएंगे, जबकि माताओं की मौजूदगी में ऑनलाइन टेस्ट लेकर उनकी सीखने की क्षमता का आकलन होगा। अभियान का उद्देश्य छुट्टियों के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई की निरंतरता बनाए रखना और उन्हें नए शैक्षणिक सत्र के लिए तैयार करना है। जिले भर के स्कूलों में 10 जुलाई से एक माह की छुट्टियां पड़ रही हैं। छुट्टियों के दौरान छोटे बच्चे अक्सर पढ़ाई से कट जाते हैं। ऐसे में स्कूल खुलने के बाद उन्हें दोबारा पढ़ाई की लय में लाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं, और इसी के समाधान के लिए जो है ये पहल शुरू की गई है ताकि विद्यार्थी छुट्टियों के दौरान भी पढ़ाई से जुड़े रहें। जी, एक और खबर की बात करें, गौशाला भड़ोली भगौर में चल रहे 3 दिवसीय ऐतिहासिक मेले के दूसरे दिन श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। सोमवार रात और मंगलवार सुबह हुई बारिश के कारण कुछ समय तक दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन दोपहर बाद मौसम साफ होते ही मेले में फिर से रौनक जो है वो लौट आई। और जो सांस्कृतिक संध्या की बात करें तो उसमें भी पहाड़ी जो प्रस्तुतियाँ थी उन्होंने खूब दर्शकों को झूमने पर जो है वो मजबूर किया, यानी झूमे दर्शक उनकी प्रस्तुतियों पर। और देखिए, ये तो बात हुई।

एक ऐतिहासिक मेले के बारे में, जहाँ पे श्रद्धालु और स्थानीय लोग जो हैं वो खूब आनंद ले रहे हैं उस मेले का। और मेले और ख़ास तौर पर ये जो त्यौहार हैं वो हमारी पहाड़ी संस्कृति का एक गौरव पूर्ण जो है एक एक अवसर होता है जो सबके लिए बहुत ख़ास होता है। तो हम सभी को शिरकत ज़रूर करनी चाहिए, ऐसे मेलों की बात करें या हमारे पर्वों की बात करें। तो चलिए अब कार्यक्रम में इन खबरों के बाद चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा लोकगीत।

0: जी, जनक राज की आवाज़ में ये लोकगीत अभी आपने सुना, और इसी के साथ आज का कार्यक्रम लोक संसार यहीं पर संपन्न करने की दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संसार, आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः की 8 बजने को है थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात का अंक, और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमरीका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
4: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के 1ले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के दो दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति पहली जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
5: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है। तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
6: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज़ जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉक ड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
4: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
7: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रूपये तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रूपये। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग प्वाइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: सेंटर टू विथड्रॉ टेम्पररी रिस्ट्रिक्शंस ऑन सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल फ्रॉम द 1st ऑफ जुलाई। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द स्टेट, सेज चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी। Information and Broadcasting Ministry announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicle policy. Cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve their dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16 at the FIFA World Cup after 2-1 victory over Japan in Houston, US. The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that with effect from the 1st of July, that is tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets of public sector oil marketing companies. We have more from a correspondent.
2: According to the statement, during the period of disruptions arising from the West Asia crisis, the government continued to shield retail consumers from the sharp increase in the international fuel prices by maintaining stable retail prices of petrol and diesel. This led to a significant price difference between retail fuel prices and those applicable to bulk consumers. The ministry said that to address this situation, the temporary regulatory measures introduced on 12th of this month prescribed a temporary limit of 200 liters of high-speed diesel per consumer or vehicle per day at retail outlets and required industrial, institutional and commercial consumers. The measures were aimed at preventing black marketing, hoarding and diversion of fuel while ensuring uninterrupted availability of petrol and diesel to retail consumers. Following a review of the supply situation of petroleum products in the country, the government has concluded that the temporary regulatory measures are no longer required in the public interest. The temporary measures help ensure adequate availability of petrol and diesels across the country while safeguarding the interest of retail consumers. Their withdrawals reflects the improvement in the supply situation and the restoration of normal supply arrangements. Aditya Pratap Singh, Akashwani News, Delhi.
8: West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari has said that the Uniform Civil Code UCC will be implemented in the state. We have more from a correspondent.
3: Chief Minister Shubhendu Adhikari announced in the Assembly that a draft proposal of the bill will be presented at the scheduled State Cabinet meeting on Thursday. Following the models of the Gujarat, Uttarakhand and Assam, a committee has been formed under the leadership of retired Supreme Court Judge Justice Ranjana Deshai. Chief Minister stated that the committee will conduct a study on the total of 9 subjects including marriage, divorce, adoption and submit its report within 4 weeks, based on which the state government will formulate the code. However, he clarified that scheduled tribes, Adivasis, Kurmis and ancient indigenous communities will be kept outside the purview of this law. Shundipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
8: Union Information and Broadcasting Ministry has announced 2 major decisions aimed at boosting the Indian film industry. The decisions were taken at a high-level review meeting chaired by Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav in New Delhi yesterday. We have a report.
9: The meeting focused on measures to enhance film production, improve distribution networks, and integrate emerging technologies into the Indian cinema ecosystem. The ministry said the initiatives are intended to make Indian cinema more globally competitive while encouraging investment in cinema infrastructure, particularly in smaller towns and rural areas. A high-level study group under the chairmanship of Prasar Bharati Chairman Prasoon Joshi has been formed, which will study the opportunities and challenges before Indian cinema. It will suggest ways to strengthen the sector and recommend measures to make Indian films more competitive globally. The ministry has also prepared a model state cinema regulations for adoption by the states. The rules have been sent to all state governments with a request to adopt them. This move will help build a strong, modern and globally competitive Indian film industry. With Soumya and Aman, this is Chirag Jha from News Desk.
8: Delhi government has approved an ambitious electric vehicle EV policy. As per the new policy, EV cars priced up to 30 lakh rupees have been exempted from registration fees and road taxes. The new policy also offers a 1 lakh rupee incentive for purchasing new EVs while scrapping old vehicles, and mandates that only electric two-wheelers can be registered starting April 2028. Addressing a press conference in New Delhi, Delhi Chief Minister Rekha Gupta said that the government has devised a comprehensive plan to execute this in phases over the next 4 years.
10: This is truly a historic day. Delhi EV policy, which we aim to implement starting July 1, 2026. Following the LG approval, the policy will remain in effect until March 31, 2030. It focuses entirely on electric vehicles, especially zero-emission vehicles, with the ultimate goal of gradually transforming Delhi into a pollution-free city. For the benefit of its residents, we have devised a comprehensive plan to execute this in phases over the next 4 years.
8: The house-to-house distribution of electricity

हिमाचल डायरी के आज के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस अंक में प्रदेश की सभी 3,758 ग्राम पंचायतों को 16वें वित्त आयोग से मिलने वाली करीब 481 करोड़ रुपए की ग्रांट हासिल करनी है तो सभी पंचायतों को पहले ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान तैयार करना होगा। इस योजना में पंचायतों को स्पष्ट बताना

देखना होगा कि वे गांव के विकास के लिए किन किन कार्यों पर राशि खर्च करना चाहती है और किन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की जरूरत है। विकास प्लान को ग्राम सभा से मंजूरी दिलाना जरूरी होगा। इसके बाद इसे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड

30 जून को हमीरपुर में ओलंपिक सद्भावना रन का आयोजन किया जा रहा है। ये दौड़ एक दौड़ स्वस्थ भारत के लिए थीम पर आधारित है, जिसका उद्देश्य युवाओं और नागरिकों को खेलों और फिटनेस के प्रति जागरूक करना है। इस दौड़ के आयोजन में सांसद श्री अनुराग ठाकुर मुख्य अतिथि होंगे। ये दौड़ सायं 4 बजे साई स्पोर्ट्स सेंटर ग्राउंड अणु से गांधी चौक हमीरपुर तक होगी। इस दौड़ का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सप्ताह और फिट इंडिया हेल्दी इंडिया के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है।

भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत डिजिटल भारत निधि से हिमाचल प्रदेश में अमेंडेड भारत नेट प्रोग्राम शुरू किया गया है। BSNL के माध्यम से संचालित इस परियोजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। जिला दूरसंचार महाप्रबंधक अजीत कुमार ने बताया कि जिले की 559 ग्राम पंचायतों में से फिलहाल 100 पंचायतों में कार्य तेजी से चल रहा है। योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में भारत नेट उद्यमी नियुक्त किए जाएंगे, जिससे ITI और डिग्रीधारी युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। ग्रामीणों को सरकारी सब्सिडी के कारण निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। हाई स्पीड इंटरनेट से ऑनलाइन टिकट बुकिंग, वाईफाई, TV और निःशुल्क लैंडलाइन कॉलिंग जैसी सुविधाएँ मिलेंगी।

सांसद मोबाइल स्वास्थ्य वैन सेवा के तहत करहा पंचायत में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। शिविर में 62 लोगों का स्वास्थ्य जांचा गया। शिविर में लोगों का रक्तचाप, ब्लड शुगर सहित अन्य आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण किए गए। जांच के दौरान 10 लोगों में उच्च रक्तचाप की समस्या पाई गई। ऐसे मरीजों को आवश्यक चिकित्सीय परामर्श दिया गया तथा नियमित जांच और दवा लेने की सलाह दी गई। स्वास्थ्य टीम ने लोगों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराने के प्रति भी जागरूक किया। हिमाचल डायरी के आज के इस अंक में बस इतना ही। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 8:35 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण के सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान और शाश्वत सिंह की आवाज़ों में तू झूठी मैं मक्कार, इस फिल्म का गाना। लीजिए अब सुनिए ये गाना जिसे हमने लिया है, तेरा क्या होगा लवली, इस फिल्म से।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए, सुनिए थप्पड़ फिल्म का गाना, शर्वी यादव ने गाया इसे।

दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस है, यानी इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे। ये दिवस प्रतिवर्ष 30 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्षुद्र ग्रहों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना तथा पृथ्वी को उनसे होने वाले संभावित खतरों के प्रति लोगों को सचेत करना है। 30 जून 1908 को रूस के साइबेरिया क्षेत्र के तुंगुस्का में एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा गया था और लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर जंगल नष्ट हो गया था। इसी घटना की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2016 से इसे आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। क्षुद्र ग्रह हमारे सौरमंडल के प्राचीन छोटे छोटे पिंड हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित पाए जाते हैं। वैज्ञानिक आधुनिक दूरबीनों और अंतर्राष्ट्रीय अभियानों के तौर पर सब लोग समेकित प्रयास से इसकी निगरानी करते हैं ताकि पृथ्वी की सुरक्षा निश्चित की जा सके। तो चलिए, चित्रलोक कार्यक्रम में अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं। कुमार ने लिखा इसे, मीत ब्रदर्स अंजन ने संगीतबद्ध किया है और मीत ब्रदर्स अंजन और स्टीवन बेन की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम शिमला मिर्च।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर

लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा छोटे से अंतराल के बाद।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए श्रेया घोषाल और जावेद बशीर की आवाज़ों में प्रसून जोशी का लिखा और शंकर एहसान लॉय का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम है भाग मिल्खा भाग।

0: दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म। ये दिवस प्रतिवर्ष 30 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोकतंत्र, संसद की भूमिका तथा जनप्रतिनिधियों के उत्तरदायित्व के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। 30 जून 1989 को अंतर संसदीय संघ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना हुई थी। इसी अवसर की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2018 से इस दिवस को मनाने की घोषणा की। लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था होती है। संसद कानून बनाती है, सरकार के कार्यों की समीक्षा करती है, राष्ट्रीय नीतियों पर चर्चा करती है तथा जनता की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाती है। एक सशक्त संसद ही पारदर्शी, उत्तरदायी और जनहितकारी शासन की आधारशिला भी होती है। संसद महिलाओं, युवाओं और समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करती है तथा संवाद, सहमति और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत बनाती है। तो चलिए, चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको गाना सुनवा रहे हैं हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में, पिंटू की पप्पी फिल्म से।
1: ब्यूटीफुल सजना, ब्यूटीफुल

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए भूमि त्रिवेदी और साथियों की आवाज़ों में कौशल मुनीर का लिखा और अमित त्रिवेदी का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम है रश्मि रॉकेट।

0: श्रोताओ, अब तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:20 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का लिया फैसला। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, खदराला मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का मामला केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया जाएगा। मंडी जिले में रेशम उद्योग से ग्रामीणों की आर्थिकी हुई मजबूत। पिछले 3 वर्षों में 27,000 किलोग्राम से अधिक हरे कोकून का हुआ उत्पादन। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल और प्रदेश मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने एक संयुक्त बयान में कांग्रेस सरकार पर निराधार बयानबाजी करने का लगाया आरोप। और प्रदेश में प्री मानसून सक्रिय, मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में 1 से 5 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थीं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए

0: पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया था। इसी वजह से 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य कालाबाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया गया है। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि खदराला मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का मामला केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया जाएगा। शिमला जिले के खदराला में आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में कल उन्होंने कहा कि पर्यटन व क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से इस मार्ग का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1962 से पूर्व ये मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग था, जिसे बाद में राज्य राजमार्ग का दर्जा दिया गया। उन्होंने कहा कि सुंगरी मार्ग के सुधारीकरण के लिए 1.5 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि युवा देश व प्रदेश का भविष्य है और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए युवाओं का स्वस्थ व जागरूक होना आवश्यक है। उन्होंने युवाओं से नशे, विशेषकर चिट्टा जैसी घातक प्रवृत्तियों से दूर रहने का भी आह्वान किया। मंडी जिले में रेशम उद्योग से ग्रामीणों की आर्थिकी मजबूत हुई है और किसानों की मेहनत से परिवारों की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जिले में पिछले 3 वर्षों में जिले के 6,500 से अधिक किसानों को रेशम बीज उपलब्ध कराए गए, जिससे 27,000 किलोग्राम से अधिक हरे कोकून का उत्पादन हुआ। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: मंडी जिले में रेशम उद्योग अब ग्रामीण समिति की नई पहचान बनकर उभर रहा है। राज्य सरकार के प्रोत्साहन और किसानों की मेहनत से हजारों परिवारों की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 वर्षों में जिले के 6,500 से अधिक किसानों को रेशम बीज उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे 27 किलोग्राम से अधिक हरे कोकून का उत्पादन हुआ है। वही 84,000 से अधिक उन्नत शहतूत पौधे भी वितरित किए गए हैं। सिलिक समग्र 2 योजना के तहत वर्ष 2025-26 में 150 रेशम उत्पादकों को 1,63,00,000 रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। सरकार का कहना है कि रेशम उद्योग मंडी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने में अहम भूमिका निभा रहा है। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
0: प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों और सरकारी एजेंसियों में आउटसोर्स आधार पर भर्तियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि आउटसोर्सिंग केवल अस्थायी और आवश्यकता आधारित व्यवस्था होगी और इसे नियमित सरकारी रोजगार का विकल्प नहीं माना जाएगा। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को ये संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत जिन पदों पर नियमित भर्ती हो चुकी है या स्वीकृत पद भरे हुए हैं, वहां अब आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। विभागों को स्थायी रिक्त पदों पर नियमित भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल और प्रदेश मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर भाजपा के खिलाफ निराधार बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। कल शिमला में एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि सरकार अपनी विफलताओं, भ्रष्टाचार और आर्थिक बदहाली से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने जिलाधीशों और SDM से राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव की तिथियां घोषित करने की मांग की है। नेताओं ने अधिकारियों से संविधान और कानून के अनुसार निष्पक्ष कार्य करने की अपील की। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं और जनादेश को प्रभावित कर रही है, जिनका जनता समय आने पर लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का आज से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। ये आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। केंद्र सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दो महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करने के लिए प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया गया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। कुल्लू जिले के मनाली में एक 14 वर्षीय बालिका की मनालसू नाले में बहने से मृत्यु होने का समाचार है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व अग्निशमन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से बचाव अभियान शुरू किया गया। बालिका का शव व्यास नदी से बरामद किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त बालिका उत्तर प्रदेश के बिजनौर की निवासी थी, जो माता पिता के साथ मनाली भ्रमण पर आई थी। 3 जुलाई से शुरू हो रही 57 दिन की अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रा मार्ग, आधार शिविरों और पवित्र गुफा तक जाने वाले दोनों रास्तों पर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों के पहले जत्थे जम्मू पहुंचने लगे हैं। जम्मू में CCTV कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल भी की है। प्रथम पूजा के अवसर पर भारत सीमा पुलिस के महानिरीक्षक डॉक्टर अकुन सभरवाल ने पवित्र गुफा और बरारी मार्ग में चिकित्सा सहायता केंद्रों का उद्घाटन किया। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के कुछ क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। अधिक ब्यौरे के साथ समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी।
2: प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने को लेकर परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल बनी हुई है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं लोगों को भी उमस भरी गर्मी से राहत मिल रही है। मौसम विभाग ने जल्द प्रदेश में मानसून के दस्तक देने का पूर्वानुमान जारी किया है। इसको देखते हुए विभाग ने लोगों से नदी नालों, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और पहाड़ी ढलानों से दूर रहने और विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। साथ ही विभाग ने लोगों से अनावश्यक यात्रा करने से भी बचने का आग्रह किया है। विभाग ने लोगों से प्रशासन द्वारा मौसम से जुड़ी चेतावनी और एडवाइजरी का पालन करने को कहा है। समाचार कक्ष से मैं पूनम भारद्वाज।
0: अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। राधा पालमपुर, सुमन मंडी की मेयर शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है, मंडी में भाजपा और पालमपुर में कांग्रेस का कब्जा। अमर उजाला और दैनिक जागरण के एक जैसे शब्द हैं, पालमपुर में कांग्रेस की राधा, मंडी में भाजपा की सुमन बनी मेयर। पंजाब केसरी के शब्द हैं, GPDP तैयार होने पर ही पंचायतों को मिलेगी 481 करोड़ की ग्रांट। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पंचायतों को वित्तायोग का 481 करोड़ लेने को बनाना होगा डेवलपमेंट प्लान। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, मंत्रिमंडल विस्तार जल्द, अधिकारियों के पदों में की जाएगी कटौती। मौसम की खबर को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है, मानसून आज से रफ्तार पकड़ेगा, अगले 48 घंटों में हिमाचल में एंट्री। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का लिया फैसला। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, खदराला मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का मामला केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया जाएगा। मंडी जिले में रेशम उद्योग से ग्रामीणों की आर्थिकी हुई मजबूत। पिछले 3 वर्षों में 27,000 किलोग्राम से अधिक हरे कोकून का हुआ उत्पादन। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल और प्रदेश मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने एक संयुक्त बयान में कांग्रेस सरकार पर निराधार बयानबाजी करने का लगाया आरोप। और प्रदेश में प्री मानसून सक्रिय, मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में 1 से 5 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
3: FM बैंड 101.8 MHz पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से लेकर 10 बजे तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुनेंगे।
4: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लेकिन कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा जिक्र तो कल्याण जी का होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये बात कल्याण जी और आनंद जी पर केंद्रित रहेगी। यानी जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की बातें होंगी आज के इस प्रोग्राम में।

कल्याण जी भाई दोनों भाइयों में सबसे बड़े हैं। 1929 में उनका जन्म हुआ था, जबकि आनंद जी का जन्म कच्छ में सन 1933 में हुआ था। मजे की बात यह है कि आनंद जी तो बचपन में कच्छ गुजरात में रहे, लेकिन कल्याण जी मुंबई में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चले आए। आगे चलकर इनका परिवार मुंबई आ गया। दोनों भाई चाल के अपने घर में पड़ोसियों के घरों में रेडियो सुना करते थे, क्योंकि रेडियो तब एक लग्जरी हुआ करता था और सबके घरों में रेडियो नहीं होता था। जब घर में ग्रामोफोन आया तो दोनों भाई मिलकर सुरेंद्र, शांता आप्टे, कुंदनलाल सहगल और पंकज मलिक के गीतों को बड़े चाव से सुना करते थे। सन 1954 अचानक कल्याण जी वीर जी शाह शोहरत की ऊंचाई पर पहुंच गए। दरअसल शशधर मुखर्जी की फिल्म नागिन में उन्होंने संगीतकार हेमंत कुमार के निर्देशन में क्ले वॉयलिन पर बीन की आवाज निकाली थी। ये अपने आप में एक करिश्मा था, क्योंकि इससे पहले फिल्म संगीत में जब भी बीन के सुर सुनाई पड़ते थे तो वो असली बीन होते थे, लेकिन इस बार वाद्य बदल गया था और

0: इस गाने के वादक, जी हाँ वादक यानी म्यूजिशियन कल्याण जी को बड़ी प्रसिद्धि मिली। कल्याण जी वीरजी शाह ने बतौर अकेले संगीतकार फिल्म सट्टा बाजार में भी संगीत दिया था। अभी तक आनंद जी उनके साथ नहीं आए थे।
1: जरा ठहरो जी।

0: तुमसे है प्यार, रुमाल हमें देके जाना।
1: सन 1958 में निर्माता निर्देशक कीकू भाई देसाई ने दोनों भाइयों को सम्राट चंद्रगुप्त नामक फिल्म में बतौर स्वतंत्र जोड़ी पहला मौका दिया। हम आपको बता दें कि कीकू भाई मनमोहन देसाई के पिता थे।

दिलचस्प बात यह है कि मनमोहन देसाई ने सन 1960 में जब छलिया फिल्म बनाई तो भी कल्याण जी आनंद जी को मौका दिया। छलिया का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय हुआ।

सन 1964 की बात है। मनोज कुमार फिल्म उपकार बना रहे थे। उनकी इच्छा थी कि इसका संगीत शंकर जयकिशन दें, लेकिन इस जानी मानी जोड़ी के बीच तनाव चल रहा था, इसलिए बात कुछ बनी नहीं। लेकिन जयकिशन ने कल्याण जी आनंद जी के नाम की सिफारिश मनोज कुमार से की।

उपकार वो फिल्म है जिसने कल्याण जी आनंद जी को शंकर जयकिशन के प्रभाव से मुक्त किया। यहां से वो संगीत आया जिसमें रिदम का अनूठा पैटर्न था।

सिने संगीत के कद्रदान केवल रिदम और अरेंजमेंट को सुनकर कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का फर्क समझ लेते हैं।

ताशी और बांसुरी और साथ में ग्रुप वायलिन, सब कुछ कल्याण जी आनंद जी के संगीत में अनूठा और निराला है।

कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये गाना मेरे छोटे भाई आनंद जी ने कई सालों पहले हिंदी ओजी का लिखा हुआ वो तैयार करके रखा हुआ था। तो मनोज जी नए नए डायरेक्टर हुए थे, उपकार पिक्चर बना रहे थे, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि कल्याण जी भाई ये गाना मेरे लिए रख लीजिए, मैं उपकार फिल्म में प्राण जी के पास गाऊँगा। तो हमने सोचा कि ये उनको उस टाइम प्राण जी फिल्मों में गाया नहीं करते थे, तो हमने सोचा कि ये बिल्कुल नए डायरेक्टर हैं और शायद हमें भी नए कर देंगे। लेकिन मनोज जी ने उपकार फिल्म में वो गाना प्राण जी से इतना अच्छा गवाया और प्राण जी ने भी इतना अच्छा गाया है कि जब अपन फिल्म देखते हैं तो लगता नहीं है कि किसी प्लेबैक सिंगर ने ये गाना गाया होगा। बिल्कुल प्राण जी ऐसी इसी तरह गा रहे हैं कि जैसे वो ही गा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली गाना मन्ना डी जी ने गाया हुआ है।

मुकेश और कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कुछ बड़े अद्भुत नगमे दिए हैं। दरअसल शंकर जयकिशन के बाद अगर मुकेश की प्रतिभा को किसी ने पहचाना तो वो कल्याण जी आनंद जी ही थे।

बेख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। आपको शायद मालूम होगा कि ये गाने के लिए हम लोगों को सिने म्यूजिक डायरेक्टर का फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था। और मुझे एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी गाना मैं जब अनाउंस करता हूँ तो सब लोग चाहते हैं कि इसके साथ कोई हंसी मजाक जरूर होनी चाहिए। तो इसमें तो सही वाक्या हो गया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन एक ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद किसी एक लड़की का फ़ोन आया कि भाई हमें आपका मैं तो एक ख्वाब हूँ ये गाना बहुत पसंद आया और मैं चाहूँगी कि आपके मुँह से ये गाना सुनूँ। तो हमने उनको म्यूज़िक हॉल पर बुला लिया, तो एक दफ़े सुनाया। उसके बाद फिर वो दो चार दिन के बाद आई कि मुझे हमें ये फिर गाना सुनाइए। तो तीन चार दफ़े उन्होंने जब हमसे सुना तो मैं उनके सामने देख रहा था। तो बाद में चौथी दफ़े जब मैंने ये गाना सुनाया तो मैंने ये गाना बोला कि मैं तो एक बाप हूँ, इस बाप से तो प्यार न कर, क्योंकि उसकी निगाहों से लग रहा था कि इसमें और कुछ चक्कर है।

0: कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत को मिला दिया। वे प्रगतिशील संगीतकार थे। प्रगतिशील इस मायने में कि उन्होंने संगीत के बने बनाए ढर्रे को तोड़ा, लगातार नए प्रयोग किए, नई ध्वनियां अपने संगीत में पिरोई और बनाया अद्भुत संगीत।
1: ढोल बजा

0: चाहे उदास नगमा हो या ढमाढम संगीत, कल्याण जी आनंद जी की कोई सानी नहीं। आइए कुछ उदास नगमे सुने जाएं इस संगीतकार जोड़ी के।
1: हम

0: फिल्म समझौता।
1: समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में
2: समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं। ये गाना मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने एक दिन मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। मैं बोला किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं आप? तो बोले भाई आपका मैं गाना लेके गया था और उससे मेरा एक पेशेंट बहुत अच्छा हो गया। मतलब गाने से पेशेंट अच्छा हो गया? बोले आपके गाने के कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ गया। तो अरे सही वाक्य है कि अगर इस गाने को करेक्ट कोई मीनिंग समझे तो जिंदगी की काफ़ी उलझने कम हो जाती हैं।

आपको ये जानकर अचरज होगा कि कल्याण जी आनंद जी की इस सदाबहार और सुपरहिट जोड़ी को जीवन में केवल एक बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1974 में ये फिल्म थी कोरा कागज। कल्याण जी आनंद जी की संगीत यात्रा इतनी लंबी है कि आधे घंटे के सीमित समय में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उनके सफर पर नजर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये जोड़ी लगातार हिट संगीत देती रही, लगातार लोगों के दिलों पर राज करती रही।

कल्याण जी आनंद जी की ये जोड़ी टूट गई है। टूटना शायद आपको सही शब्द ना लगे, ये जोड़ी एक दूसरे से बिछड़ गई है। आज कल्याण जी नहीं हैं, लेकिन आनंद जी हैं, और है इस जोड़ी का अनूठा संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवा।
2: श्रोताओ, अब तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
3: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कार पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहन के विकास पर 8000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
5: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा, और इसके अलावा 8000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में, और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
3: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाके में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। फुटबॉल में फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मोरक्को ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। दो घंटे तक चले रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमें 1-1 से ड्रॉ पर थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 10:05 हुए हैं और लीजिए अब प्रस्तुत है आज की लघु वार्ता।

आज की लघु वार्ता में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज की लघु वार्ता का विषय है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस हर साल 30 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता को क्षुद्र ग्रहों से होने वाले संभावित खतरों के बारे में जागरूक करना और पृथ्वी की सुरक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक अनुसंधान और सहयोग को प्रोत्साहित करना है। 30 जून का दिन वर्ष 1908 में साइबेरिया में हुई विनाशकारी तुंगुस्का घटना की स्मृति में चुना गया है। इस दिन एक विशालकाय क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर फट गया था, जिससे लगभग 2100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 8 करोड़ से अधिक पेड़ नष्ट हो गए थे। इस दिन को मनाने की शुरुआत 2014 में हुई थी और आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिसंबर 2016 में इसे मनाने की घोषणा की गई थी।

क्षुद्र ग्रह चट्टानी और धातु पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन आकार में ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह हमारे सौरमंडल में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एस्ट्रोनाइट बेल्ट में पाए जाते हैं। इस दिन को मनाने का महत्व क्या है, अगर उसकी बात करें तो लोगों को अंतरिक्ष में मौजूद चट्टानों और उनके पृथ्वी से टकराने की संभावनाओं के बारे में शिक्षित करना एक प्रमुख उद्देश्य है इसका मनाने का, और साथ ही अंतरिक्ष एजेंसियों जैसे कि नासा और अन्य खगोलविदों को ऐसे खतरनाक पिंडों की पहचान और ट्रैकिंग करने के लिए प्रेरित करना भी इसे मनाए जाने का एक खास महत्व है। वैज्ञानिक अनुसंधान की बात करें तो क्षुद्र ग्रहों की संरचना और उनके प्रभावों का अध्ययन करके भविष्य की आपदाओं से बचाव की तकनीक विकसित करना। अगर आप अंतरिक्ष और वहां घूमने वाले एस्ट्रॉइड्स के बारे में जानने में रुचि रखते हैं तो आपको आज के दिन का महत्व पता होगा। हर साल आज यानी 30 जून के दिन को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को यूनाइटेड नेशन ने आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड के डे के रूप में अप्रूव किया था, और इसका मकसद लोगों को इनके बारे में जागरूक करना है और पृथ्वी को एस्ट्रॉइड से होने वाले संभावित इम्पैक्ट से बचाने के महत्व को बताना है। एस्ट्रॉइड्स आकार में छोटे होते हैं, ये पहाड़ी ऑब्जेक्ट होते हैं जो पृथ्वी और बाकी ग्रहों की तरह ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। असल में एस्ट्रॉइड्स लगभग 4.6 बिलियन साल पहले सोलर सिस्टम के बनते वक्त बचे हुए टुकड़े हैं। ये बाकी ग्रहों की तरह ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये साइज में ग्रहों से काफ़ी छोटे होते हैं। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने 6 दिसंबर 2016 को तय किया था कि हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए 30 जून का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि 1908 में रूस के साइबेरिया में एस्ट्रॉइड इंपैक्ट हुआ था जो पृथ्वी के इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड इंपैक्ट था। इस कारण यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने तय किया कि हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में मनाने के जरिए इसके खतरे को समझने और इसके लिए जो है वो जागरूकता फैलाई जाए। अब सवाल उठता है कि ये एस्ट्रॉइड्स कैसे बने। सोलर सिस्टम बनने के वक्त डस्ट पार्टिकल्स आपस में टकराए और मिलकर एक बड़े आकार के क्लम्प्स बन गए, और ये अपनी ग्रेविटी से धूल को अपनी ओर खींचते हैं और बड़े बनते जाते हैं। इनसे कुछ प्लैनेट्स बन गए और बाकी बचे हुए एस्ट्रॉइड्स बन गए। उस दौरान कुछ क्षुद्र ग्रह एक दूसरे से टकराए तो उनके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, और कुछ धीरे धीरे हुए क्लाइज से मिलकर अजीब आकार के क्षुद्र ग्रह बन गए। और इनके पृथ्वी से टकराने की संभावना के बारे में कहा जाता है कि बहुत सालों के बाद कोई बड़ा एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकरा सकता है और उसके बाद क्रेटर्स बन सकते हैं। जी, और इस आज के दिन को यानी 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रहों के टकराने से उत्पन्न खतरों के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके, इन पिंडों की पहचान और निगरानी के लिए अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके और इनसे हमारे ग्रह की रक्षा के बारे में चर्चा की जा सके।

भारत में क्षुद्र ग्रह दिवस पर कई अलग अलग कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है और ये पृष्ठ विज्ञान संचारकों के उपयोग के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संसाधन सामग्री एकत्र करके इस प्रयास में सहायता करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। जी, क्षुद्र ग्रह या लघु ग्रह हमारे सौरमंडल में चट्टानी पिंड हैं जो ग्रहों के निर्माण के समय से संचय और विखंडन प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न हुए हैं। इनमें से अधिकांश मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हालांकि कुछ जिन्हें पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह कहा जाता है मंगल की कक्षा के भीतर आते हैं और इनमें से सबसे बड़ा सिरिस 1801 में खोजा गया था और इसका जो व्यास है वो 945 किलोमीटर है।

जी सेरेस, इसे अब बौना ग्रह यानी प्लूटो के साथ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्षुद्र ग्रहों का आकार बौने ग्रहों से लेकर 1 मीटर तक होता है। इनमें से कई किसी ग्रह के करीब से गुजर सकते हैं और उससे टकरा सकते हैं, और जिनमें कि हमारी पृथ्वी भी शामिल है। महाराष्ट्र में लुनार क्रेटर या एरिजोना में लुनार क्रेटर ऐसे ही प्रभावों के कारण बने हैं। इसलिए खगोलविद अब हर संभव पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह की खोज, निगरानी और अध्ययन में लगे हुए हैं। क्षुद्र ग्रह दिवस का उद्देश्य इस प्रयास को उजागर करना और इससे और बढ़ाना है। ये थी आज की लघु वार्ता, विषय था अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:15 हो चुके हैं और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम झूमते तराने।

झूमते तराने कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला झूमता हुआ तराना।

बात है, ओए ओए ओए ओए ओए ओए, तुझ में कुछ बात है। हे कभी तू दिन लगे कभी तू रात है, ओए ओए ओए ओए ओए ओए, तुझ में कुछ बात है। ओ गोरी गोरी चली कहाँ, तू चोरी चोरी चली कहाँ, उड़ा के दिल चली कहाँ, चुरा के दिल चली कहाँ। हे ओ गोरी गोरी चली कहाँ, तू चोरी चोरी चली कहाँ, उड़ा के दिल चली कहाँ, चुरा के दिल चली कहाँ। जाना है तो जा भी ले जा जरा, ओ गोरी गोरी चली कहाँ, तू चोरी चोरी चली कहाँ, उड़ा के दिल चली कहाँ, चुरा के दिल।

गोरी तू चली कहाँ, उड़ा के दिल चली कहाँ, ओ गोरी तू चली कहाँ, चुरा के दिल चली कहाँ, जाना है तो जा भी ले जा जरा। ओ गोरी गोरी चली कहाँ, तू चोरी चोरी चली कहाँ।

से ये दिल लगा, मोहब्बत का खेल खेल जान की बाजी लगा। तू अपने प्यार से किसी का जीवन सजा, आने दे आए कयामत।

चोरी गोरी चली कहाँ, तू चोरी चोरी चली कहाँ, उड़ा के दिल चली कहाँ, चुरा के दिल चली कहाँ, जाना है तो जा भी ले जा जरा, ओ गोरी गोरी चली कहाँ, तू चोरी चोरी चली कहाँ, उड़ा के दिल चली कहाँ, चुरा के दिल चली कहाँ, हाँ ओ गोरी गोरी चली कहाँ, तू चोरी चोरी चली कहाँ, उड़ा के दिल चली कहाँ, चुरा के दिल चली कहाँ।

झूमते तराने। ये कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से जी। और कार्यक्रम का अगला झूमता हुआ तराना कुरुक्षेत्र फिल्म से, आइए सुनते हैं।

जी बिल्कुल। वैसे तो देखिए, सादगी में अपनी ही ये खूबसूरती होती है जो कि कमाल की होती है, लेकिन जब कोई बनठन कर गुजरता है तो हवाएं भी ठहर कर उसका अंदाज देखने लगती है। और ऐसा ही चुलबुला अंदाज था इस गीत में, कुरुक्षेत्र फिल्म से इसे हमने लिया था। आवाज़ें थी सुखविंदर सिंह और साथ दिया था सुनिधि चौहान ने। झूमते तराने इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, आपकी खातिर फिल्म से।

जी बिल्कुल, देखिए दिल चुराने के लिए हमेशा बड़ी बड़ी बातें हों ये तो ज़रूरी नहीं है। कभी एक मुस्कान, कभी एक नज़र और कभी किसी का चुलबुला अंदाज भी काफ़ी होता है। अब देखिए ये गीत, जैसे आपने अभी सुना, ये गीत हमने लिया था मेजर साहब फिल्म से। आवाज़ें इसमें थी जसपिंदर नरोला, सुदेश भोंसले और साथियों की जी। और बिल्कुल जरा दिल को संभाल कर रखिए क्योंकि अब बजने वाला है एक ऐसा ही मस्ती भरा गीत। जी हाँ, वाकई ये गीत जो कि मैजिक क्रिएट कर देगा, खोई मिल गया फिल्म से। आइए सुनते हैं।

तेज और साथियों की आवाज़ों में ये गीत अभी आपने सुना, कोई मिल गया फिल्म से इसे हमने लिया था। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम झूमते तराने अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:45 हो चुके हैं और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग।

0: जी भई दिखा ए जे तुहां सुने होने लोकगीत ई जो बोलदे प्यागड़ा, यानी प्यागा दे समय जे ऐसे ए लोकगीत गाया जांदा। कने जियां इस गीता च हां सुनिया भी नौणा पर जाई ननौणी दी गल होदी है ना। कने ए छोटी छोटी जेड़ी जे बोलदे थे ना कि कृष्ण कने गोपियां दी शरारतां थी, कने से जे कृष्ण जाली जे बाल रूप च थे तो बड़ी सारी शरारतां करदे थे, इस लोकगीत च तुसें सुनया होगा है ना। पिंकी शर्मा दी आवाज़ च था ये लोकगीत। अगला लोकगीत अहां तुहानू सुनाना, लेकिन उससे पहले एक छोटा जिहा अंतराल लेना।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: जी लोक रंग कार्यक्रम आकाशवाणी दे हमीरपुर केंद्र ते तुसां सुणदे हन जी। कने हुण कार्यक्रम दा अगला लोकगीत आओ सुणदे हन।

0: जी एक बेटी जेड़ी जी अपने सहुरे की करी कने तीसो जो अपने जेड़ी जी चिड़ू पंखेरू से भी अपने लगे है ना अड़ा लगा भी ये जे चिड़ू उड़ा दे शायद मेरे प्योकियों दे गाँव च भी उड़दे होने है ना जाते होने तो तिना दे जरिए एक संदेश भेज दी आई कने अपने दिल की गल तीसो जो दसी तो ये जे लोग गीत तुसा सुनिया इस कुछ इड़े ही मन के भाव इकी कुड़िया दे की बेटिया दे मन दे थे है ना तो हूँ एक होर लोक गीत सुनना लेकिन छोटे जे अंतराला ते बाद
1: की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी
1: UGC से मान्यता प्राप्त हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंग। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जब मन के संकल्प, विचार और भावनाएं एक रूप हो जाती हैं तो हर प्रयास सफल होता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से एकता के साथ आगे बढ़ने और भारतवर्ष के सभी लक्ष्यों को मिलकर प्राप्त करने का आग्रह किया। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों और विश्व भर के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में ओम बिरला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। उन्होंने आगे कहा कि एक मजबूत, स्वतंत्र और जवाबदेह संसद ही लोकतंत्र की सच्ची शक्ति और नागरिकों के अधिकारों की सबसे बड़ी संरक्षक है। लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की संसद विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करती है और इसने हमेशा संविधान की भावना, लोकतांत्रिक परंपराओं और जन प्रतिनिधित्व की गौरवशाली विरासत को सशक्त रूप से कायम रखा है। मंडी जिले में रेशम उद्योग से ग्रामीणों की आर्थिकी मजबूत हुई है और किसानों की मेहनत से परिवारों की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जिले में पिछले 3 वर्षों में जिले के 6,500 से अधिक किसानों को रेशम बीज उपलब्ध करवाए गए, जिससे 27,000 किलोग्राम से अधिक हरे कुकून का उत्पादन हुआ। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
2: मंडी जिले में रेशम उद्योग अब ग्रामीण समिति की नई पहचान बनकर उभर रहा है। राज्य सरकार के प्रोत्साहन और किसानों की मेहनत से हजारों

0: परिवारों की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 वर्षों में जिले के 6,500 से अधिक किसानों को रेशम बीज उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे 27 किलोग्राम से अधिक हरे कोकून का उत्पादन हुआ है। वहीं 84,000 से अधिक उन्नत शहतूत पौधे भी वितरित किए गए हैं। सिलेक्ट समग्र 2 योजना के तहत वर्ष 2025-26 में 150 शीतम उत्पादकों को 1,63,00,000 रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। सरकार का कहना है कि रेशम उद्योग मंडी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देने में अहम भूमिका निभा रहा है। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीष सूद।
1: 3 जुलाई से शुरू हो रही 57 दिन की अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रा मार्ग आधार शिविरों और पवित्र गुफा तक जाने वाले दोनों रास्तों पर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल भी की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं राज्य के कुछ क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं लोगों को भी उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने जल्द प्रदेश में मॉनसून के दस्तक देने का पूर्वानुमान जारी किया है। इसको देखते हुए विभाग ने लोगों से नदी नालों, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और पहाड़ी ढलानों से दूर रहने और विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। सतलुज नदी में लगातार बढ़ रहे जल प्रवाह को देखते हुए कड़छम बांध प्रबंधन द्वारा आज अतिरिक्त 100 क्यूमैक्स पानी छोड़ा जाएगा। इसके बाद रेडियल गेटों से कुल जल निकासी 195 क्यूमैक्स हो जाएगी। प्रबंधन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक एहतियाती कदम उठाने की अपील की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
2: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:05 हुए हैं। अब से लेकर दोपहर 12 बजे तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुनेंगे।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ों में आप सुन रहे थे सुदर्शन फ़ाकिर का कलाम। और अब समाप्त फरमाइए प्रेम बर्बादानी का ये गीत नीना और राजेंद्र मेहता की आवाज़ों में।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: रंग तरंग कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मधुकर राजस्थानी का लिखा ये गीत, खयाम के संगीत निर्देशन में आवाज है मोहम्मद रफी की।

आइए अब सुनते हैं पंकज उधास की आवाज में नूर नारवी का कलाम। यह है पंकज उधास की आवाज और नूर नारवी का कलाम।

ये थी राजेंद्र मेहता की आवाज़ गुलजार का कलाम, और अब सुनते हैं मिताली सिंह और भूपिंदर सिंह की आवाज़ में इब्राहिम अश्क का कलाम।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं राजकुमार रिजवी की गाई ये गजल। शायर हैं ताहिर फराज रामपुरी।

0: ये थी मिताली सिंह की आवाज़ और रंग तरंग कार्यक्रम में अब सुनिए जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गीत।
1: ना जवानी नल चल दी।

नजवानी नल चलती और ढाई दिन नजवानी नल चलती कुड़ती।

0: इस गजल के साथ ही
1: रंग तरंग
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।

श्रोतो, अब तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर के 12 बजे हैं और लीजिए अप्रस्तुत है कार्यक्रम देवधरा के लोकगीत।

देवधरा के लोकगीत कार्यक्रम सुनने वाले यहाँ के सारे श्रोतों जो मेरा यानी प्रकाशा दा नमस्कार जी। कार्यक्रम लेने बिल्कुल हाजिर हो चुके जी। कने इस कार्यक्रम च तुसां जो सुनाने छाल छाल लोकगीत बिल्कुल जी। तो कार्यक्रम दा पहला लोकगीत कृतिका तनवर दी आवाज़ च अह सुनना आवा सुनते हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: देवधरा के लोकगीत कार्यक्रम आकाशवाणी दे हमीरपुर केंद्र दे तुसन सुन दे जी कने उन कार्यक्रम चावा सुन दे विनय अबरोल दी आवाज च ये लोकगीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: कार्यक्रम देवधरा के लोकगीत इस वक्त तुसन सुना दे आकाशवाणी दे हमीरपुर केंद्र ते। कने हुण असा सुनना जी कार्यक्रम दा अगला लोकगीत, आवाज है राकेश चंद दी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: देवधरा के लोकगीत कार्यक्रम तुसां सुनन दे आकाशवाणी दे हमीरपुर केंद्र ते। कन्ने कार्यक्रम च जेहड़ा अगला लोकगीत असां तुसां सुनाना, उस च आवाज़ है सोहन सिंह कन्ने नरेंद्र कुमार दी, आवाज़ सुनदे हन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देव धरा के लोकगीत। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12:30 हो चुके हैं और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन जी। दोपहर के 12:30 हो चुके हैं और हम हाजिर हो चुके हैं हमारे सैनिक भाइयों के मनोरंजन के लिए इस कार्यक्रम को लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सुनते हैं 10 फिल्म से ये गीत।

जी हर भारत हर भारतवासी के दिल में जोश भरता हुआ ये गीत, आवाज शंकर महादेवन, उदित नारायण और साथियों की थी। जी हाँ, और अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं अगला गीत।

अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था ढाई अक्षर प्रेम के जी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म है जबरदस्त, आवाज किशोर कुमार की।

अब हम गए काम से, धड़कने लगता है मेरा दिल तेरे नाम से। ऐसा लगता है कि अब हम गए

सावन की घटा फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना, आवाज़ आशा भोंसले की थी। और इसी गीत के साथ आज का कार्यक्रम सैनिकों के लिए अब यहीं पर संपन्न होता है। सैनिक भाइयों, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर का 1 बजने को है। अब आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, और इस दौरान 2 बजे मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। देश की सुरीली धड़कन, कुछ ही पलों में कार्यक्रम सुनिए सुरीला सफर।

नमस्कार, शुभ दोपहर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सुरीला सफर में। आप सभी को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। आज की इबारत पढ़कर बहुत सारे संदेश आए हैं। अगर आपने अभी ये इबारत नहीं पढ़ी है तो फेसबुक पेज पर हमने जो इबारत पोस्ट की है वो आपके लिए एक बार पढ़ देते हैं। रिमझिम में भीगी समंदर की लहरें, उठे झूमके और घड़ी भर को ठहरें। बड़ी दूर से देख आवाज़ देती, कभी पाँव में डोर बनकर लिपटती। किनारे पे आए, मिले, लौट जाएं। कभी रेत पर लिखे नामों को छूकर उधर जा निकलती, जहां पत्थरों पर धड़कते हैं दो दिल एक ही ताल पर। गले उनसे मिलकर, उन्हें प्यार देकर कोई गीत गाती और फिर लौट जाती। तो आपको बताना है कि कौन से शब्द हैं आज के और उन शब्दों पर कौन से गाने सुनवाए जाएंगे। बहुत सारे संदेशों में इन शब्दों का भी जिक्र है और गीतों की भी बात हुई है। तो देखते हैं कि आज कौन कौन से गाने लिस्ट से मैच हो रहे हैं आपकी लिस्ट से। इस मैचिंग के लिए बहुत सारे संदेशों का से गुजरना होगा। और एक संदेश है, कहीं समंदर की लहरों की बातें हैं, कहीं समंदर के कुछ जो एक व्यंजनात्मक रूप से लिखी गई समंदर के बारे में कुछ पंक्तियां हैं। समंदर को जीवन से भी जोड़कर देखा गया है और समंदर के किनारे टहलने की भी कई अनुभव साझा किए गए हैं। बहरहाल ये जो संदेश है इसमें लहरों को सुरीला सफ़र से सजाया गया है, काव्यात्मक रूप से इस बारे में बात की गई है। समंदर की लहरें केवल पानी का उठना और गिरना नहीं बल्कि प्रकृति की सबसे उत्कृष्ट लय और ऊर्जा का नृत्य हैं। लहरों की अनवरत ध्वनि और निरंतरता किसी ध्यान जैसी अनुभूति देती है। लहरों में एक अद्भुत विरोधाभास होता है, ये जितनी प्रचंड और शक्तिशाली हो सकती हैं उतनी ही कोमल और शांत भी। जीवन में ठहराव नहीं, निरंतरता का प्रतीक हैं ये लहरें। समुद्र का ये अनुशासन ही उसकी असली सुंदरता है। वह क्या बात है। और एक और संदेश में कहा गया है कि शाद और अवसाद में अवसर दर्शाती और साजे दिलों की हसरतों तरंगों भरी दास्ता बयान करती इश्किया इबारत निसंदेह प्रेमी युगल के प्रेम विवाह के लिए संजीवनी स्वरूप है। लहरों के राजहंस रूपी प्रेमी किनारे रेत पर इंतजार करती प्रेयसी को लुभाने में कामयाब होगी। इश्किया लबोलुआब से सराबोर संगीत में सुरीला सफ़र का इंतज़ार रहेगा। तो भाई इंतज़ार ख़त्म हो गया है और हमें उम्मीद है कि आप अपने रेडियो के करीब ही हैं, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हों। एक और संदेश में कहा है कि समंदर की लहरों के माध्यम से प्रेमियों के दिलों के धड़कने और उनके आपसी जुड़ाव को दर्शाया गया है। समंदर की लहरों को इस तरह पेश किया गया है जैसे वे इंसानों की तरह आवाज़ देती हैं, प्यार करती हैं और गीत गाती हैं। यादों की अमिटता, रेत पर लिखे नामों को लहरों का छूना उस प्रेम और यादों की पवित्रता को दर्शाता है जिन्हें समंदर रूपी प्रकृति सहेज कर रखती है। लहरों का किनारे पर आना, मिलना और फिर लौट जाना जीवन और प्रेम में आने वाले मिलन और वियोग के प्राकृतिक चक्र है, चक्र का प्रतीक है। वह क्या बात है। और एक और संदेश में शब्दों के का जिक्र किया गया है, उन शब्दों का। माई प्ले लिस्ट इज लॉन्गर टूडे, होपिंग टू हैव मोर चांसेस। छूकर मेरे मन को, रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, इस तरह के कुछ गीत इन्होंने साझा किए हैं। एक और हमारे श्रोता हैं जिन्होंने कहीं से ये गज़ल हमें भेजी है, रेत पर लिख के मेरा नाम मिटाया ना करो। और बहुत खूबसूरत गज़ल है, हमें अच्छा लगेगा अगर आप अपनी बात लिखकर भेजें तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज आप अपने साथ लहरें लाई हैं या फिर लहरों के संग आने वाली हैं और हम सब लहरों के साथ कहीं बहुत दूर, हम सबको लहरों के साथ कहीं बहुत दूर ले जाने वाली हैं, जहाँ हो सुकून के कुछ पल और हम जी सकें अपने मन के हिसाब से, जहाँ कोई रोकने टोकने वाला भी ना हो, जो ना करना चाहे वो काम भी ना हो, बस साथ हो सिर्फ लहरें, फिर तो उनके साथ गुनगुनाना अपने आप ही हो जाएगा, नहीं भी आता होगा तो भी। क्या बात है भाई, ये बात तो है ही कि गीत संगीत और जब मनचाह साथ हो या अपने मन की बात हो तो फिर कितना खूबसूरत वक्त गुजरता है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो चलिए हम गीतों की शुरुआत करते हैं। रिमझिम शब्द को लेकर बहुत सारे गीतों के कयास आए हैं, तो चलिए एक झलक उन सभी की सुन लेते हैं।

तो भाई ये कुछ गीत हैं जो हमने आपकी पसंद से चुने और उनके थोड़े थोड़े अंश आपको सुनवा दिए। हमने ये गीत चुना है और इसे भी बहुत सारे श्रोताओं ने पसंद किया है। लेकिन पहले सवाल पूछ लेते हैं। एक तो आपको बताना है कि ये गीत किस फिल्म का है और किन कलाकारों पर फिल्माया गया है, और जो सबसे पहला रिमझिम का गीत था उसे एक फीमेल वॉइस में भी आपने सुना होगा, तो बताइए कि वो किसकी आवाज़ में आपने सुना है। गायिका का नाम आपको बताना है जो सबसे पहला गीत आपने रिमझिम का सुना था।

बड़ा खूबसूरत तराना छेड़ देता है ये गीत। शैलेंद्र का लिखा, सचिन देव बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ, बिल्कुल सही नाम हमारे श्रोताओं का आया। बहुत बहुत शुक्रिया काला बाजार, देवानंद, वहीदा रहमान और रिमझिम गिरे सावन बरसात का जो गाना हमने आपको सुनाया था, सबसे पहला गाना मंजिल फिल्म का लता मंगेशकर की आवाज़ में। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से प्रॉम्प्ट जो जवाब आते हैं ना, उनमें बहुत कार्यक्रम की को एक गति मिल जाती है और इस गति के साथ जो संदेश आते हैं वो तो बिल्कुल सोने में सुहागा हो जाते हैं। जैसे हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की भारत में एक अजीब सी तड़प भी है और अपनापन भी, लहरों के माध्यम से प्रेम मिलन विरह और प्रकृति के अद्भुत तालमेल को बयां किया गया है। शब्दों का चयन इतना कोमल और संगीतमय है कि पढ़ते ही मन शांत और रूहानी एहसास से भर जाता है। आंखों के सामने बारिश की बूंदों के बीच नाचती झूमती लहरों का दृश्य सजीव हो उठता है। लहरों का उठना ठहरना और फिर लौट जाना प्रकृति के शाश्वत नियम को दिखाता है। और एक और संदेश में कहा गया है कि कुछ लहरें समंदर से नहीं यादों से उठती हैं, वे जब भी दिल के किनारे आती हैं अपने दूर गए साथी से मिला जाती हैं, उनकी कई यादें याद दिलाकर। एक और संदेश में तो रिमझिम के तराने से लेकर बहुत सारे गीतों का जिक्र हो गया है। पिछली रात से रिमझिम के तराने लेकर आई बरसात के आगमन से हमारे दिल के समंदर में भीगी भीगी ठंडी ठंडी लहर सी दौड़ रही है। घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, हाय धड़के क्यों धड़के, आज सुरीले सफर के मिलन की बेला में। जैसे दो दिल धड़क रहे हैं और आवाज़ एक है, सांसों के तार पर देश की सुरीली धड़कन के ताल पर जब गीत गाया समंदर की लहरों ने, तब लहरों की तरह यादें टकराती हैं, तूफान उठाती हैं। रेत पर लिखे नाम भले ही मिट जाएं, दिल पर एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और एक और संदेश में कहा गया है कि विविध भारती के सुरीले सफर में आज समंदर की लहरों के साथ खेलते हैं, ऐसे गीतों का लुत्फ उठाते हैं जिसमें नायक नायिकाएं बेखौफ समंदर किनारे बेतहाशा दौड़ते लहरों के साथ मस्ती करते हैं। कभी रेत पर ताजमहल बनाते हैं तो कभी उसे मिटाकर फिर समंदर के उथले पानी में एक दूसरे को भिगोते लोटपोट हो जा रहे हैं। चलिए इसी से सवाल निकल आया, हमें बताइए कि क्या आपने कभी समंदर की सैर की है, किसी समंदर के किनारे घूमे हैं या वहाँ से सीपियाँ इकट्ठी की हैं? अगर ऐसा किया हो तो हमें ज़रूर बताएं। और कहाँ गए हैं, अलग अलग तटों पर, हमारे देश के अलग अलग समुद्री तट हैं जहाँ का पानी और जहाँ के समुद्री किनारे अलग अलग होते हैं, तो हमें ज़रूर बताएं कि आपका वो अनुभव कैसा रहा और कहाँ गए थे आप। और अब ये जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, बताइए पर्दे पर कौन गा रहा है और संगीत किनका है।

कन्याकुमारी की बात की है जो कि तीन तरफ से समुद्र से घिरा है, बहुत रोमांच होता है, ऐसी अनोखी दुनिया होती है, यह हमारे एक श्रोता ने बताया है उस सवाल के जवाब में जो हमने पूछा था कि समुद्र के किनारे आप कहाँ गए हैं। और हमारी एक और श्रोता ने लिखा है कि मुंबई गए हैं। बाकी जवाबों का भी इंतज़ार हो रहा है, ज़रूर आप लोग कहीं घूमने गए हैं और जल्दी से बताइए। एक श्रोता कह रहे हैं कि आपने जैसे ही रिमझिम के तराने छेड़े वैसे ही हमारे यहाँ भी रिमझिम फुहारें पड़ने लगी हैं, मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है। वाह क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं हम तो दीघा पश्चिम बंगाल गए थे। अब दूसरे सवाल की बारी, वैजयंती माला फिल्म मधुमती, घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, ये जो गाना भी आपने सुना, सलील चौधरी का संगीत निर्देशन था, ये जवाब भी आ गया है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथियों ने बताया है कि ना बाबा मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है, तो मैं जयपुर से ना अजमेर नाव में बैठी ना जल महल और पानी से दूर ही रहती हूँ। ओहो अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि पानी का डर जो है वो बहुत सी चीज़ों से दूर रहना के लिए मजबूर कर देता है। आप ये बताइए कि समुद्र के किनारे बहने वाली हवाओं का भी एक बड़ा ख़ास अहम भूमिका होती है, तो क्या कभी उन हवाओं के साथ आपकी कुछ मुलाकात हुई है, जो तेज़ तेज़ हवाएं बहती हैं बारिश के समय में, अगर याद हो तो वो ज़रूर बताएं। और हाँ, अभी जिन श्रोताओं ने नहीं बताया है कि वो किस समुद्र के किनारे टहले हैं या क्या बनाया है उन्होंने, जो घरौंदे बनते हैं उन घरौंदों को कई बार बच्चे भी बनाते हैं, और आजकल तो बहुत सुंदर सा सेट भी मिलता है बच्चों के उन घरौंदों को बनाने वाला, वो अगर सेट किसी बच्चे को गिफ्ट किया हो तो ये भी बताएं। अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत को सुनने के लिए आपको बताना होगा कि ये गाना किस फिल्म का है। संदेशों की बात करें तो हमारे एक श्रोता ने बताया कि एक और रिमझिम का गाना याद दिला दिया, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, लता मंगेशकर की आवाज़। वैसे तो रिमझिम शब्द वाला पहला सुना गीत मराठी है। रिमझिम पाउस पड़े सारखा, यमुनेला हुपूर चढ़े, पाणीच पाणी चहुड़के चहुकड़े। वाह क्या बात है। और ये एक और श्रोता ने कहा है कि रिमझिम के तराने की गीत मालाएं बुन रहे हैं और सभी मुखड़े उम्मीद के अनुसार मंजिल ढूंढता गाना शुरू हुआ और काला बाजार पर रुक गया। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि सागर की अपनी शांत गुफाएं हैं, गहरी शांत और एकांत, यद्यपि लहरों में उग्रता हो लेकिन उसके नीचे कोई शांति नहीं है। शायद कोई टाइपो एरर हुई है, अशांति लिखते हुए इन्होंने अशांति लिखना चाहा होगा। एक और श्रोता ने कहा है कि वैसे हम अपनी कुछ दिन पहले की एक बात बताते हैं आपके साथ साथ सभी हंसेंगे सुनकर, तो हुआ यूं कि हमारी बेटी ने कुछ पंक्ति लिखकर अपनी एक पोस्ट डाली स्टेटस पर समुद्र के किनारे की पिक के साथ, तो हमने उसे लाइक किया और लिखा कि हम लिखते तो कुछ ऐसा लिखते, तो जवाब में उसने लिखा आप दिल से सोचती हैं और हम दिमाग से, फिर हमने लिखा अरे नहीं हम विविध भारती सुनते हैं ना, तो उसका रिप्लाई सारा क्रेडिट मम्मी ने विविध भारती को दे दिया। फिर उसने ये बात सब दोस्तों को बताई, सब इतना हंसे ऑफिस में, तो सोचो एक छोटी सी बात ने कितनों को हंसाया। बस यही तो हम चाहते हैं, सब खूब हंसे वरना परेशानियां तो सबके साथ हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक और श्रोता ने कहा है कि जीवन दर्शन समंदर की भांति ही गहरा ही नहीं अपितु रहस्यमय भी है, भले ही हम उसके अंदर अपने कौशल विकास से केबल बिछाकर पूरी दुनिया को ही मुट्ठी में भर लेने की होड़ में लगे हुए हैं, फिर भी ये समंदर अब भी रहस्यमय ही है, क्योंकि बहुतेरे तो किनारे के सीप घोंगों से ही खुश हो जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे कि एक कुशल गोताखोर ही समंदर में गोते लगाते हुए उसमें छुपे जीवन दर्शन स्वरूप हीरे मोतियों तक अपनी पहुंच बना पाते हैं। आगे भी लिखा है लेकिन यहीं से एक सवाल का जन्म होता है, और वो सवाल ये है कि इस लाइन पर एक बड़ा प्रसिद्ध मुहावरा है कि गोताखोर लंबी जब अंदर तक जाते हैं समुद्र में तभी वो हीरे मोतियों को पा लेते हैं, तो एक दोहा है, अगर वो दोहा याद आ रहा हो तो वो भी हमें बताएं और इस फिल्म का नाम बताएं जो गीत आप सुन रहे हैं।

बहुत शुक्रिया सही जवाब के लिए। एक तोहफे की तरह आया ये जवाब। और मुकेश और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, इंदीवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन, समंदर की भी बातें हमारे साथियों ने बताई हैं। वैसे एक सवाल आ रहा है मन में कि तोहफों को चुनते वक्त सबसे ज़्यादा किस बात का ध्यान रखा जाता है जेब के अलावा? ये जो हमारे साथियों ने बताया है समुद्र की यात्रा के बारे में, तो एक श्रोता कह रहे हैं कि हम तो समुद्र कनाडा में इन्होंने देखा था कई बार, और बहुत देर तक वहाँ बैठकर आती जाती लहर को देखा, जो बस यही कह रही थी काश हमारे साथी को कुछ जीवन और मिल जाता तो आज वो भी हमारे साथ इस प्यारे से नज़ारे को देख पाते। पर बड़ी मस्ती की छोटी सी अपनी परी के साथ छोटे छोटे पत्थर, रंग बिरंगे पत्थर पानी में डाले और पानी में पैर डालकर बैठे रहे। कन्याकुमारी दीघा छूट गया लिखने में, ऐसा हमारे एक श्रोता कहते हैं। और मुंबई में तो अक्सर ही जाना होता है, वहाँ चौपाटी पर कई बार गए, चेन्नई में भी जाना हुआ, कन्याकुमारी भी गए हैं, ये हमारे एक और श्रोता ने बताया है। एक और श्रोता कह रही है कि वैसे तो हमारा शहर समुद्र के पास ही है, अक्सर हम वहाँ जाया करते हैं, डुमस बीच, सवाली बीच और गोवा दो बार गए, पर सबसे अलौकिक अनुभव हमें धनुषकोडी और कन्याकुमारी का रहा। दक्षिण भारत की यात्रा का अनुभव बेजोड़ था। क्या बात है। मुंबई के जुहू बीच दो तीन बार, अक्सा बीच और गुरई बीच का जिक्र किया है हमारे एक श्रोता ने। द्वारकाधीश और सोमनाथ गया हूँ समुन्दर के पास, ये हमारे एक और श्रोता बता रहे हैं। एक श्रोता ने साझा किया है एक दुर्घटना होते होते बचने का जो अनुभव था इनका। हम लोग पूरा ग्रुप करीब 80 लोग उड़ीसा गए हुए थे, वहाँ पर समंदर की सैर करते हुए अचानक समंदर में तूफान आ गया और हमारी बोट खाने लगी। तभी एक अन्य बोट वाले ने तूफान के सामने अपनी बोट लगाकर हमारी बोट को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया। एक और श्रोता कह रहे हैं कि जुहू चौपाटी मरीन ड्राइव दोनों जगह पर दो तीन बार गई हूं, पर वहां का पानी जो अजीब सा पानी की जो अजीब सी गंध होती है, मैं अपने को अच्छा महसूस नहीं कर पाती, इसलिए मैं पानी के किनारे पर जाना पसंद नहीं करती हूँ। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि पुरी के समुद्र में रस्सी पकड़कर लहरों का आनंद ले रहे थे, पर एक बहुत बड़ी लहर ने उठाकर पटक दिया और मोबाइल में पानी लग गया, थोड़ी सी लापरवाही की बड़ी सजा मिल गई। और समझौता फिल्म का ये गाना हमारे साथियों ने बताया, साथ ही अनिल धवन और शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम का जिक्र हो गया। अब संदेशों की बात करें तो और भी कई संदेश आए हैं। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि मुंबई की कुछ बारिश आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके हमारे शहर अजमेर में भेज दें प्लीज़, क्योंकि यहाँ तो दूर दूर तक बारिश की कोई उम्मीद नहीं लग रही है। अभी यहाँ तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऑफिस के बाहर तेज़ धूप है। ओहो, ये तो बहुत ख़तरनाक है। चलिए जल्दी ही हम दुआ करते हैं बारिश आएगी। एक और श्रोता कह रहे हैं कि VBS सर्विस मुंबई में मानसून के आगमन के साथ पानी बरसना शुरू हो गया, ऐसे में समंदर किनारे हवाओं के साथ लहरें अटखेलियां करती नजर आ रही हैं। पहली रिमझिम बारिश में धरती को छूती हुई पानी की बूंदें मिट्टी की सौंधी खुशबू बिखेरती हैं, तो वहीं समंदर किनारे किसी चट्टान पर बैठकर बीती यादें मस्तिष्क को दूसरी ही दुनिया में ले जाती हैं। और बताया है कि समुद्री लहरों के आसपास फिल्माए गए गाने बच सकते हैं। एक और संदेश में कहा गया, शांत लहर में कुछ खामोशियां भी गीत होती हैं, उन्हें सुनने के लिए कान नहीं बस समझने वाला दिल होना चाहिए। क्या बात है। चलिए अब इसी बात पर अगला गाना, इस गाने को सुनिए और हमें ये बताइए कि ये किस फिल्म का गाना है और गीतकार कौन है।

आवाज पर ये गाना तो हो गया और इसके साथ ही बहुत सारी आवाजें, भावनाएं आवाज बनकर हम तक पहुंच गई हैं। सच में ऐसा लग रहा है जैसे हम आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मुझे तो पानी से बड़ा डर लगता है, मैं तो तालाब में भी नहाता हूँ तो साथ में बाल्टी या मग ले जाता हूँ, समुद्र में जाना तो दूर की बात है। वैसे हमारे साथियों ने ये ज़रूर बता दिया जो हमने एक दोहे का जिक्र किया था कि जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न दरा रहा किनारे बैठ। कबीर दास की का ये दोहा हमारे साथियों ने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता कह रही हैं कि समंदर से बड़ा गहरा नाता है मेरा क्योंकि समंदर के काफ़ी नज़दीक रहती हूँ, अपनी हर खुशी के पल में समंदर के किनारे पहुँच जाते हैं, टहलना हो तो भी वहीं जाते हैं, लहरों से अपनी दोस्ती है, समंदर की हवाओं से यारी है अपनी। क्या बात है, वैसे बहुत बातें करती हैं हवाएं जब आप समंदर के किनारे हों। एक और श्रोता कह रहे हैं कि गुजरात के दमन दीव बीच और सोमनाथ विजाग बीच, चेन्नई के मरीना बीच और रामेश्वरम के धनुषकोडी और कन्याकुमारी, केरला के कोवलम बीच की सैर करके आई हूँ, पर जो चौपाटी की बात है वो सबसे निराली है क्योंकि उसमें बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। क्या बात है। एक और श्रोता ने बताया है कि रेत पर नाम लिखने का किस्सा, कि बचपन इनका मुंबई में

कि ऐसे नज़ारों की तो फोटो तुरंत खींच लेनी चाहिए, क्या बात है। एक और श्रोता कह रही हैं कि मैं वो खुश नसीब हूँ जो समंदर के किनारे रहती हूँ। मेरा बेटा रोज़ शाम को खिलौने लेकर रेती में खेल खेल के खेलते खेलते बड़ा हुआ है। मैं भी सीपियाँ इकट्ठा करके उनसे अलग अलग डेकोरेटिव चीज़ें बनाती थी, लेकिन अब समंदर किनारे बहुत गंदगी रहती है, सीपियाँ मिलना भी बंद हो गया है। सच में ये एक बहुत ही दुखद बात है, और इसलिए समंदर को साफ रखें। अगर समंदर के किनारे आप जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मुंबई चेन्नई जगन्नाथपुरी रामेश्वरम कन्याकुमारी जाना हुआ, हर बार का रोमांच अलग अलग रहा। मेरी बिटिया का बेटा पुरी में पिछले साल हमारे साथ था, उसके साथ समंदर के किनारे लहरों से खेलते खेलते वो अचानक किसी लहर के साथ बह निकला। बस थोड़ी दूर जाते ही हमने लपक कर उसे पकड़ लिया, वो तो मज़े लेता रहा पर हम सबके तो हाथ पैर जम से गए थे। कन्याकुमारी में सनराइज़ की वो झलक का अनुभव इतना सुंदर और आत्मिक अनुभव से भरा हुआ है, वो नज़ारा वीडियो में आज तक कैद है, जिसे हम यदा कदा देखते रहते हैं। एक गीत सुलक्षणा पंडित का गाया हुआ, तू ही सागर है तू ही किनारा। और अब वो सवाल जो हमने पूछा था, प्रेम गीत फिल्म का गाना अनीता राज का जिक्र किया, इंदीवर का लिखा हुआ ये गीत था, ये भी हमारे साथियों ने बता दिया। और अब हम अगले गाने की तरफ चलें, उसके पहले एक संदेश है। प्रकृति और मनुष्य आदिकाल से सहचर हैं, जब रिमझिम बारिश की बूंदें समंदर की लहरों पर पड़ती हैं तो मानो बिछड़े हुए प्रेमियों का मिलन हो रहा हो। यह दृश्य और अदृश्य का मिलना मानव मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इस माहौल में मनुष्य के भीतर की तार्किकता मौन हो जाती है और संवेदनशीलता जागृत हो जाती है, क्या बात है। एक और संदेश में कहा है कि सुख का सुंदर चैतन्य आत्मा है, उसमें से आनंद की तरंगें उठती हैं, खुशी की लहरें उठती हैं और फिर उसी चैतन्य समुद्र में समाती भी हैं। एक और श्रोता ने कविता साझा की है, कहीं पढ़ी हुई ये कविता साझा की है इन्होंने। बादल बरसे धुल गई मन पर बैठी धूल, सब कुछ अपने हो गए समंदर नाव और मस्तूल, खिली जुलाई खुल गया बारिश का स्कूल, बस्ता लेकर सज रहे गुलमोहर के फूल, क्या बात है। तो चलिए अब अगले गीत की बारी है, बताइए कि गीत संगीत किनका है और फिल्म में कौन से कलाकार हैं।

भाई हमारे श्रोताओं ने शशि कपूर और मुमताज का तो जिक्र किया, चोर मचाए शोर का नाम भी बता दिया, लेकिन गीत संगीत नहीं बताया। चलिए हम बता देते हैं, गीत संगीत रविंद्र जैन का था। और एक श्रोता ने बताया है कि चेन्नई के मरीना बीच की वे यादें केवल एक सैर की याद नहीं बल्कि परिवार के साथ बिताए गए उन अनमोल पलों की धरोहर हैं जिन्हें याद करके आज भी मन मुस्कुरा उठता है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि एक बार गोवा गए थे तो उनका फ़ोन जो था पानी में गिर गया और उसके बाद सैंड में दब गया, ढूंढने पर भी नहीं मिला, इनका ट्रिप ख़राब हो गया। वो वैसे बहुत एहतियात के साथ इस दौरान रहना पड़ता है, समुंदर कई बार आपके साथ अटखेलियां करते करते कुछ ऐसा कर जाता है कि आपने उम्मीद भी नहीं की होती है। एक और श्रोता ने बताया कि भोपाल में आज सुबह से ही बादल और हल्की बारिश का सिलसिला चल रहा है, मौसम बहुत सुहाना है, कभी बरसात के मौसम में आप यहाँ आएँ तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। क्या बात है, हम दुआ करेंगे कि हम ज़रूर आएँ। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि सूरत में बारिश हो गई, कल रात 10:30 बजे के बाद शुरू हुई, सुबह 10 बजे तक जारी थी, लेकिन मैं राजस्थान में हूँ, अभी जमकर बारिश नहीं हुई। एक और श्रोता ने अंडमान निकोबार जाते हुए बे ऑफ बंगाल समंदर हवाई जहाज़ से 2.5 घंटे का सफ़र पूरा किया, ये बताया है, नीचे देखो तो नीला समंदर था, मन में डर लग रहा था लेकिन थ्रिल भी लग रहा था। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आप लोग मुंबई में पानी की बारिश से भीग रहे हैं, सुनकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ बनारस में भी पानी से भीग रहे हैं लेकिन सेल्फ सर्विस पसीने से, दुआ कीजिए जी। बिल्कुल, हम तो हाथ जोड़कर दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से ये बादल पहुँचें। मेघदूतों को के बारे में आपने सुना है ना, हमने मेघदूत से कह दिया है कि जल्द से जल्द हमारे सभी साथियों तक पहुँचें। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा के समुद्र तटों को छोड़कर शेष सभी समुद्र तटों पर हो आए हैं, यहाँ तक कि गंगा सागर भी हो आए हैं, क्या बात है। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि अभी इन्होंने वृंदावन की यात्रा की और यमुना की सैर की, सागर के साथ पूरा भारत देखा, दादर की चौपाटी याद आती है। अच्छा, वैसे समुद्र जो है वो कई जगह बड़ा रिझाता है और कई जगह चेतावनी भी देता है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रामेश्वरम के धनुषकोडी और कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद स्मारक पर तेज़ हवाओं का सामना करना पड़ा था। और एक और श्रोता ने बताया कि हमारे शहर कटक से पूरी नज़दीक होने के कारण अक्सर जब मूड किया चल दिए समंदर की सैर को, क्या बात है। और अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इस गीत को सुनिए और हमें ये बताइए कि ये किस नायिका पर फिल्माया गया है।

हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हेर आई शब्द का मतलब बुंदेलखंडी में ढूंढ आई। वैसे हेराई यहाँ पर प्रयोग हुआ है खो आई। और हमारे श्रोताओं ने तुरंत जवाब दिया कि अभिमान फिल्म का गाना, नायिका जया भादुड़ी। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। मजरू दादा की रचना, सचिन दा का संगीत, ऐसा हमारे एक और साथी बता रहे हैं। और मुंबई में अरब सागर पर बना हुआ सीलिंग देखने जाना है एक श्रोता की ये ख्वाहिश है, और ये ख्वाहिश उनकी ये ख्वाहिश जल्दी से जल्दी पूरी हो, हम तो यही दुआ करेंगे। एक श्रोता ने बताया है कि हम लोग समंदर के किनारे, हमने काम भी किया है और अच्छा घूमे भी हैं। एक बार नीलोफर तूफान भी आया था, दो बार रहा, दोनों बार तूफान था। एक तीन चार लगातार लाइट भी नहीं थी, फिर भी आज भी किनारे रहने की बहुत इच्छुक हूँ। एक और श्रोता ने एक दोहा साझा किया है समुद्र तट के वर्णन के बारे में। रामचरितमानस का दोहा है, बांध्यो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारीस, सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। समुद्र के ये 10 नाम हैं जो वाकई बड़ी खूबसूरती से तुलसीदास जी ने पिरोए हैं इस दोहे में। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि बदलते मौसम में जब रिमझिम की बूंदें बरसती हैं तो रेत पर लिखे वो अधूरे नाम भी भीग जाते हैं, लेकिन जहाँ समंदर की लहरें इन पथरीली चट्टानों से टकराती हैं वहाँ आज भी दो दिल एक की ताल पर धड़कते हैं। मानो कह रही हूं कि कुछ सफर कभी खत्म नहीं होते। एक और श्रोता ने कहा है कि एक सुंदर स्वप्निल काव्य शिल्प यानी आज की भारत, समुद्र की लहरों पर जो बिखरा रही है रिमझिम की दौलत, क्या बात है। कल कल फेनिल सागर लहरें किनारे को जो छुए, धड़कते प्रेमी दो दिलों पर प्रणय रस वो छिटकाएं, आते जाते मधुर सुरीले प्रेम गीत वो गुनगुनाएं। और कुछ गाने भी इन्होंने साझा किए हैं। और एक और श्रोता ने कहा है कि सागर के अनंत विस्तार में उठती गिरती ये लहरें कभी शांत कभी उग्र, जैसे जिंदगी की ही कोई अनकही दास्तान कहें। कुछ दूर क्षितिज में उठकर किनारों को छूकर ये बिखर जाती हैं, हार नहीं मानती, बस एक बार एक नया हौसला लेकर आती हैं। कभी थपेड़ों से चुभती हैं तो कभी मखमली स्पर्श सी हो जाती हैं लहरें। जिंदगी के सफर में बहुत कुछ सिखा जाती हैं, हर लहर हमें ये बताती है कि गिरना तो बस उठने की तैयारी है, ठहरना नहीं, निरंतर बहते जाना ही इस बहते हुए जीवन की बाजी है। क्या बात है। और अब ये गीत सुनिए और बताइए स्वर किनका है,

लता जी और भूपेंद्र सिंह, ये हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है। फिल्म किनारा बहुत गंभीर फिल्म और बहुत सारे श्रोताओं ने जिक्र किया है। लता दीदी बिल्कुल सही, इनकी आवाज़ ही पहचान है। और अभिमान फिल्म के गाने के लिए भी जया भादुड़ी, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, एसडी बर्मन का जिक्र हुआ है। संदेश बहुत सारे हैं और मुझे लगता है कि मुझे सारे संदेश कैसे पढ़ने होंगे। सागर के अनंत विस्तार में उठती गिरती ये लहरें, कभी शांत कभी उग्र, जैसे ज़िंदगी की ही कोई अनकही दास्तान कहें, ये हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और एक और श्रोता ने कहा है कि आज शायद दरिया समंदर नदियों की, उनके अविरत बहती लहरों का जिक्र होगा। बिना भीगे मन को प्रसन्न करने वाली लहरों का वो अनहद संगीत शोरगुल में भी कर्णप्रिय लगता है। मैं घंटों तक समंदर के किनारे किनारों से चलता हुआ लहरों का आनंद लेता हूँ, थकान मिट जाती है। शाम को ढलते हुए सूरज की किरणों का दृश्य मनोहर होता है। और इन्होंने कुछ गीत भी लिखे हैं। एक और श्रोता कह रहे हैं कि सागर परम चेतना है, जिसमें बहुत गंभीर स्थायित्व और गहराई है, और उसकी गहराई ज्ञान का प्रतीक है। लहरें चंचलता, भाव और उमंग को दर्शाती हैं, जो कुछ कुछ अहंकार का रूप लगती हैं। मानो ये कहना चाहती हैं कि उन्होंने ही सागर का निर्माण किया है, यथार्थ में तो वो सागर का अंश मात्र ही हैं। काफ़ी गहरा संदेश है ये। और अब ये गीत सुनिए और बताइए कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के मित्र की भूमिका किन्होंने निभाई है।

हमारे श्रोताओं ने कहा है, जवाब बिल्कुल सही दिया है। अमिताभ बच्चन के मित्र हैं अमजद खान, किशन और बिशन। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि कॉलेज काल की ये फिल्म है। एक और श्रोता ने कहा है कि किशन चाचा के अमजद खान ने ये गीत गाना, याराना के संगीत राजेश रोशन का संगीत, इन्होंने ये लिखा है। और एक और श्रोता ने अमजद खान उर्फ गब्बर सिंह को याद किया है। एक संदेश है कि आज सोशल मीडिया दिवस है। सोशल मीडिया ऐसा मंच जहाँ व्यक्ति अपने स्वतंत्र रूप से विचार रख सकता है और प्रतिक्रिया दे सकता है। हमें चलिए आपके विचारों के साथ हमने आज का ये कार्यक्रम का ये सफ़र तय किया, सुरीला सफ़र। और अब इस कार्यक्रम को यहीं पर दे रहे हैं विराम। तो दीजिए राजुल को इजाज़त, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती।

0: 21 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत आईएनएस देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
1: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने के। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सेक्रीफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
2: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
3: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने एफएटीएफ की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने एफएटीएफ के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि एफएटीएफ की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हुल दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हुल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हुल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हुल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हुल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनते हैं महल फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। आनंद बख्शी का लिखा गीत है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: फिल्म तपस्या का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आरती मुखर्जी का गाया हुआ। एमजी हशमत के बोल थे और रविंद्र जैन का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में मेरा साया फिल्म का ये सदाबहार नगमा। राजा मेहंदी अली खान के बोलों को संगीत से सवारा है मदन मोहन ने।

0: इनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

वासना फिल्म का ये गाना आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। साहिल लुधियानवी के बोल थे और चित्रगुप्त का संगीत था। और अब आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति जब जब फूल खिले फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी और नंदा की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

इस गीत के साथ ही अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए राजुल को इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों का संतुलित उपयोग करने का आग्रह किया है। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की सलाह देते हुए इस बात पर जोर दिया कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है, जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: शिमला के चर्चित मनीषा मर्डर मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेहर पवन ने बताया कि मनीषा मित्तल का भाई हिमांक मित्तल ही उनकी हत्या का मास्टरमाइंड निकला है और उसी ने हत्या की साजिश रची है। उन्होंने कहा कि मनीषा मित्तल का अपने भाई के साथ संपत्ति विवाद चल रहा था और हिमांक ने अपनी बहन की हत्या करवाने के लिए दो शूटरों को सुपारी दी थी।
2: हिमांक के पास सरस्वती पैराडाइज स्कूल के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज का एक्सेस था, जिससे वह मृतका श्रीमती मनीषा मित्तल के आने जाने का सारा मूवमेंट ट्रैक कर सकता था। ये सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस हिमांक ने गोविंद को प्रोवाइड किया था। जांच के आधार पर यह सामने आया कि हिमांक ही इस हत्या की साजिश का मास्टरमाइंड था तथा हिमांक ने गोविंद के साथ मिलकर दीपक व आशीष को इस वारदात को अंजाम देने के लिए नियुक्त किया था। हिमांक को भी दिनांक 29/6/2024 को रोहतक हरियाणा में गिरफ्तार कर लिया गया है।
0: पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया है। उन्होंने आज ऊना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान के समापन अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अनुराग ठाकुर ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया। इस मौके पर अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में संगठन विस्तार, राष्ट्र निर्माण में कार्यकर्ताओं की भूमिका और विकसित भारत के संकल्प जैसे विषय शामिल रहे। विधायक सतपाल सत्ती भी इस मौके मौजूद रहे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को अपनी शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्ति के अवसर पर ये बात कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चार दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों में स्पष्ट उद्देश्यों, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना के साथ अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से अंजाम दिया है।
3: चार दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ। भारतीय सेना के जांबाज सैनिकों ने काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में भी अहम भूमिका निभाई है। पश्चिमी मोर्चे पर भी सेना ने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी गंभीरता और संयम के साथ किया है। ऑपरेशन सिंदूर इसका ज्वलंत उदाहरण है।
0: वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर के राजकीय महाविद्यालय नैनादेवी में वाणिज्य संकाय और राजकीय महाविद्यालय जुखाला में विज्ञान व वाणिज्य संकाय बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया है। उन्होंने आज शिमला में मुख्यमंत्री से भेंट की और कहा कि इन संकायों की बहाली से क्षेत्र के विद्यार्थियों को अपने घर के निकट ही उच्च शिक्षा की सुविधा मिलेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को घर द्वार पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में हिमाचल देश भर में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
4: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं लाहौल जिले की चिट्ठी। लेखक हैं सुरेंद्र कुमार और वाचिका हैं प्रभा शर्मा।
0: जून माह की शुरुआत पंचायती राज चुनाव के परिणामों के साथ हुई। जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों में भाजपा, कांग्रेस और लाहौल स्पीति विकास मंच के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। कई वार्डों में अंतिम दौर तक रोमांच बना रहा। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरे प्रदेश से आदर्श आचार संहिता हटा दी, जिससे विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का मार्ग फिर से खुल गया। 15 जून को केलंग स्थित जनजातीय संग्रहालय में नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों और उप प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने सभी जनप्रतिनिधियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। विधायक अनुराधा राणा और उपायुक्त किरण बड़ाना ने सभी प्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास और जनसेवा के लिए समर्पित होकर कार्य करने का संदेश दिया। बाद में प्रदेश सरकार ने नई पंचायत संस्थाओं के गठन के लिए पुरानी पंचायतों को भंग कर पहली बैठक 27 जून को आयोजित करने के निर्देश भी जारी किए। शिक्षा के क्षेत्र में भी जिला लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। अतिरिक्त निदेशक स्कूल शिक्षा बीआर शर्मा ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शकोली का निरीक्षण किया और विद्यालय की कार्यप्रणाली की सराहना की। इस दौरान शिक्षा और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कक्षा 12वीं की टॉपर सिमरन, कक्षा 10वीं की जिला टॉपर विन्नी तथा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों आशा और ऋषिक को विशेष सम्मान मिला। खेल जगत में जिले के लिए एक और खुशी की खबर तब आई जब राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शांशा के छात्र ऋषिक रवांक ने चयन हिमाचल प्रदेश की अंडर 18 एथलेटिक्स टीम में हुआ। अब वे सितंबर में देहरादून में आयोजित नॉर्थ जोन प्रतियोगिता में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला व बाल विकास विभाग और प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन ने छोटे बच्चों की स्कूल पूर्व तैयारी को मजबूत बनाने के लिए समर कैंप अभियान शुरू किया है। जिले के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की भाषा, गणित और अन्य बुनियादी क्षमताओं को खेल खेल में विकसित करने के साथ अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। जिले में 17 से 26 जून तक नशा मुक्त भारत अभियान के तहत व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यालयों में विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। साइकिल रेस, दौड़, क्रिकेट प्रतियोगिता, संवाद कार्यक्रम और जागरूकता अभियान आयोजित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केलंग में आयोजित सामूहिक योग शिविर के दौरान भी लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जिला उद्योग केंद्र द्वारा केलंग में फंडिंग एवं नेटवर्किंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें महिला उद्यमियों को सरकारी योजनाओं, बैंक ऋण, उद्यम पंजीकरण, डिजिटल विपणन तथा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और ONDC जैसे प्लेटफॉर्म की जानकारी दी गई ताकि वे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। कृषि क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र कुकुमसेरी और इफको के संयुक्त तत्वावधान में खेत बचाओ अभियान आयोजित किया गया। किसानों को मृदा परीक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग तथा नैनो यूरिया और नैनो DAP जैसी आधुनिक तकनीकों की जानकारी देकर वैज्ञानिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। जनसेवा का एक सराहनीय उदाहरण तब देखने को मिला जब घेपन झील से लौटते समय रास्ता भटके दो ट्रैकर्स को पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन विभाग, DDMA और स्थानीय गाइडों ने संयुक्त अभियान चलाकर सुरक्षित रेस्क्यू किया। सभी एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई की लोगों ने खूब सराहना की। विकास कार्यों की बात करें तो विधायक अनुराधा राणा ने लगभग 26 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से बनने वाली केलंग सीवरेज योजना का भूमि पूजन किया। लंबे समय से लंबित इस परियोजना के पूरा होने से केलंग क्षेत्र में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को नई मजबूती मिलेगी। जिले में वाणिज्यिक LPG सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति बहाल होने के बाद प्रशासन ने नियंत्रण वितरण व्यवस्था समाप्त कर दी है। अब गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पहले की तरह सामान्य व्यवस्था के तहत की जा रही है। माह के अंतिम दिनों में जहालमा नाले में अचानक आई बाढ़ ने मनाली उदयपुर और पांगी किलाड़ सड़क संपर्क को बाधित कर दिया। लाहौल स्पीति जिला की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
4: मीडियम वेव और एफएम शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे लाहौल जिले की चिट्ठी। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 3:10 हुए हैं। कुल्लू और कल्पा रिले केंद्रों पर अब से लेकर शाम 4:20 तक आप सुन सकते हैं विविध भारती के कार्यक्रम। आकाशवाणी शिमला से हमारे कार्यक्रमों का प्रसारण अब बंद होता है। शाम 4:20 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: काम किया और इसे शिक्षा और संवाद का विषय बताया, मतलब ये शर्माने की, घबराने की, मुंह छिपाने की या सबसे कोने में बैठकर की बात नहीं है, बल्कि ये अपने शरीर के प्रति जागृत रहने की, सचेत रहने की और इससे जुड़ी जितनी सतर्कताएं हैं उन्हें इस्तेमाल में लाने की चीज है। ये बताने वाली है अदिति गुप्ता। बाकी बहुत बड़ा काम है
6: और ये तो बहुत नेचुरल प्रोसेस है ना। और महिलाओं को यानी बच्चियों को ये हम उस बारे में डरा देते हैं या कुछ बुरा बुरा कह देते हैं, बल्कि उन्हें इस बारे में बताना चाहिए कि जब पीरियड्स आते हैं तभी कोई महिला माँ बन सकती है। तो ये प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, बल्कि हम उसे कहते अभिशाप समझ बैठते हैं कि अरे क्या हमारे नसीब में है, पर उसे बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे अंदाज के साथ अगर हम बच्चियों को समझाएं तो ये बहुत वरदान साबित तो हो ही चुका है, तो उसे हम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं
5: और शरीर की एक आवश्यक क्रिया है
6: जी। तो अदिति गुप्ता का जन्म झारखंड में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने देखा कि कई लड़कियां मासिक धर्म को लेकर सही जानकारी के अभाव और सामाजिक संकोच का सामना करती है और इस विषय पर घर और समाज में खुलकर बात नहीं की जाती, जिसके कारण कई सारी लड़कियों में डर और भ्रम पैदा हो जाता था।
5: और अपने जीवन के इन्हीं अनुभवों से अदिति को ये समझ में आया कि केवल चुप रहने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि सही जानकारी से और इस बारे में बात करके, इस बारे में जानकारी पहुंचा कर ही बदलाव लाया जा सकता है। वैसे उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन से डिज़ाइन की शिक्षा प्राप्त की,
6: लेकिन उनकी रुचि केवल करियर बनाने तक सीमित नहीं रही राजुल जी, बल्कि वे समाज की वास्तविक समस्याओं को समझकर उनका समाधान खोजने में विश्वास रखती थी और इसी के मद्देनजर उन्होंने मेंस्ट्रुपीडिया नामक कॉमिक बुक की शुरुआत की।
5: अपने पति तुरहिन पाल के साथ मिलकर उन्होंने मेंस्ट्रुपीडिया की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य था कि लड़कियों को मासिक धर्म के बारे में सरल भाषा में वैज्ञानिक और सही जानकारी मिल सके।
6: अब सरल भाषा बच्चों के लिए यानी छोटी बच्चियों के लिए कॉमिक से बढ़कर क्या
5: होगी, ये बहुत अच्छी पहल है
6: जी। तो उन्होंने कॉमिक बुक, चित्रों और आसान तरीके से समझाने वाली सामग्री का उपयोग किया ताकि किशोरियां बिना डर बिना झिझक के इस विषय को समझ सके।
5: और इनके प्रयासों से कई परिवारों और स्कूलों में इस विषय पर बातचीत को बढ़ावा मिला। अदिति ने यह संदेश दिया कि स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर जानकारी छिपाने के बजाय जागरूकता फैलानी चाहिए
6: जी। और उनका काम केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने समाज को ये सोचने के लिए प्रेरित किया कि किसी भी समस्या को समझने और हल करने के लिए संवाद का होना कितना जरूरी है।
5: बिल्कुल। और अदिति गुप्ता को उनके सामाजिक कार्यों के लिए कई मंचों पर सम्मान मिला। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों में अंडर 30 की सूची में स्थान मिला और वो BBC की प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भी शामिल रहीं।
6: और अदिति गुप्ता का जीवन बताता है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए किसी बड़े पद की आवश्यकता नहीं होती, एक छोटी सी समस्या को गंभीरता से समझकर सही दिशा में प्रयास करके बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। और अदिति गुप्ता ने एक ऐसे विषय पर आवाज़ उठाई है राजुल जी, जिस पर लोग चुप रहते थे, उनकी सोच ने चुप्पी को जागरूकता में बदल दिया।
5: और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जागरूकता आई तो कम से कम बच्चियों में ये एक विश्वास आया, क्योंकि बहुत सारे घरों में अभी भी ये होता है कि इन दिनों ये छूना नहीं है या दूर रहना है, या बहुत सारे घरों में अगर बेटे भी हैं तो ये बताया जाता है कि अभी ये गंदी हो गई है,
6: या चिड़िया ने छू लिया।
5: हाँ, तो इस तरह की बातें सुन के बेटों के मन में पहले से बात आती है कि ये गंदी होती है, ये गंदी, मैं गंदा नहीं होता हूँ,
6: ये गंदी।
5: तो एक चीज वो जो वैषम्य पैदा होता है
6: बेटे और, हाँ,
5: वो भी एक उन्होंने दूर करने की कोशिश की है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इस विषय पर बातचीत होने लगी है। अब देखो ना, हमारे कार्यक्रम में एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया है,
6: तो लेते हैं ब्रेक।

0: तो सोनाली, पूरा हुआ अंतराल और हम लौट आए हैं। विषय हम लोग बहुत गंभीर था जिस पर बात कर रहे थे
1: जी,
0: मासिक धर्म की बात कर रहे थे। तो आप कुछ कह रही थी इसके बारे में।
1: जी राजुल जी, ऐसा है ना कि इसके पीछे भी, जैसे पुराने ज़माने में आपने जैसे कहा कि महिलाओं को दूर बिठाया जाता था या फिर घर में छूना नहीं है, तो उस ज़माने में काम भी महिलाएं बहुत भारी भरकम किया करती थी। जैसे कुएं से पानी निकाल कर लाना है, फिर चक्की से आटा पीसना है, फिर खेतों में काम करना है, तो उस वक्त महिलाओं को थोड़ा आराम की ज़रूरत होती थी, इसलिए उस ज़माने में इस तरह से उन्हें अलग बिठाया जाता था। पर अब हम हल्का फुल्का काम करने लग गए, फिर भी हम उन्हीं बातों को, उन्हीं रूढ़ी वादी बातों को लेकर चलें। और तो और स्वच्छता के प्रति भी हम जागरूक नहीं है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन दिनों में नहाना नहीं है, पर कितनी गलत बात है। उस वक्त स्वच्छता का, हाइजीन का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो हमें रोज नहाना चाहिए, नहाना चाहिए, स्वच्छता का कपड़े बदलना चाहिए, और जो पैड्स वगैरह है उसे भी समय समय पर बदलना बहुत
0: जरूरी है। और अब तो इसके विषय में सरकार की तरफ से भी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी बहुत पहल हो रही है, मुफ्त में पैड्स गांव में दिए जाते हैं। और एक बात और है, ये भी कहा जाता है, जब कई बार कोसते भी देखा है, पढ़े लिखे बच्चियों को भी इस बात को कोसते हुए देखा है कि अरे ये क्या है, तो ये वो समय होता है जब कहा जाता है कि स्त्री सबसे ज्यादा, उसके अंदर जो शक्ति, शक्ति कहा जाता है ना, तो शक्ति उसके अंदर सबसे ज्यादा इस समय होती है। और इस बारे में कई, अगर हम गौर से देखें तो बहुत सारे हमें उदाहरण और कई सारी ऐसी रीतियां भी मिल जाएंगी जो इस बात को बिल्कुल
1: प्रूव करती है,
0: प्रूव करती है, प्रमाणित करती है कि भाई ये बहुत खास समय होता है। तो इस खास समय को खास तरीके से बिताने के लिए अलग बिठाया जाता था, ना कि इसलिए क्योंकि गंदे हो जाते हैं। तो गंदगी की यहाँ पर सिर्फ तभी तक रहती है जब तक हम नहाते नहीं हैं या कुछ भी दूसरी तरह की गंदगी से अपने आप को साफ करने की कोशिश करते हैं, तब गंदगी नहीं रहती। जब हमें कहीं पर आराम करने के लिए छोड़ा जाता है या अच्छे से खाने के लिए कहा जाता है, बहुत जगह ये भी होता है।
1: उस वक्त हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए, बहुत आराम करना चाहिए। इस तरह से हम देखभाल कर सकते हैं अपने घर वाली, जो घर की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उन्हें इस तरह से आराम दिया जा सकता है, ना कि उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाए और उन्हें इस तरह से व्यवहार किया जाए कि अरे दूर रहो, छुओ ना, बल्कि उन्हें बहुत आराम और बहुत प्यार से उस वक्त अगर संभाले तो ये दिन भी बहुत आसानी से निकल जाते हैं।
0: और साथ ही साथ अगर हम गीत सुनते हुए ऐसी गंभीर विषयों पर बातचीत करते हैं
1: तो कार्यक्रम में मजा आ जाएगा।

0: चांद कहाँ खोया है ये ढूंढने भी कुछ बच्चे बहुत जिद करते हैं जब अमावस्या होती है या जिन रातों में चांद नहीं निकलता। तो कई बार ऐसा भी होता था कि जैसे मेरे घर के पड़ोस में एक छोटा बच्चा था, तो वो ये बात कहता था कि आप तो कहते हो कि रोज चांद निकलता है, रोज सूरज और चांद तो रोज आते हैं, देखो तुम्हें भी जैसे हम लोग बच्चों को बताने के लिए कहते थे ना कि देखो भाई सूरज चांद रोज समय पे आ जाते हैं, तुम्हें
1: तुम
0: भी सब
1: समय से
0: काम।
1: जाया करो ट्यूशन
0: हाँ,
1: स्कूल।
0: तो उसने कहा कहाँ आते हैं, देखिए चांद तो आ जाया ही नहीं है। तो भाई हमने कहा ये हाजिर जवाबी बच्चों की तो बिल्कुल पानी पानी कर देती है।
1: ये जो बच्चे होते हैं हमें बहुत बार शर्मसार कर जाते हैं। ये आज बच्चों की शरारतों के बारे में हम बातें कर रहे हैं, बातें हल्की फुल्की में। तो इसमें एक सखी ने हमारे लिखा है कि मेरे बेटे ने 4 साल का था तब एक कप में मिस्त्री लोग काम कर रहे थे, केरोसिन तेल रखा था, वहाँ पहुँच गया उसके पास और उसने केरोसिन तेल पी लिया पानी
0: अरे
1: समझ कर।
0: बाप रे,
1: फिर उसको हम लोग को अस्पताल लेकर भागना पड़ा, 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहा, फिर ठीक हो गया। यानी देखिए कितने परेशान हो जाते हैं ना माता पिता दादा दादी जब इस तरह से बच्चे ये कर देते हैं। और एक लिखते हैं कि छोटे बच्चों की शरारतें, छोटे बच्चों की शरण में हमारे जीवन में खुशियां भर देती है, उनकी शरारती जब याद आती है तो आप ही चेहरा खिल उठता है। मेरा नाती 2 साल का है, वो सारी छोटी छोटी चीज़ें छोटी जगह पर छिपा देता है, उसे याद भी रहता है कि कौन सी चीज़ उसने कहाँ रखी है। पूछो तो बताता है कि जब मैं गुस्सा करती हूँ तो मुझसे कहता है कि नानी मैं पुलिस बोल रहा हूँ, प्रिंस नाम है, और मुझे डांट लगाओगे तो आपको जेल में बंद कर दूंगा।
0: अरे
1: मैं कहती हूँ तुम नानी कहकर किसे बुलाओगे, तो कहता मैं पहले दरवाजा खोलूंगा फिर आपको नानी कहकर बुलाऊंगा फिर बंद कर दूंगा। बहुत ही लटके झटके से बोलता है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, घर भरारा भरा रहता है। हमें सुन के ही इतनी हंसी आ रही है
0: हाँ, तो
1: तो
0: इनके
1: और
0: मतलब
1: जो
0: इन्हें तो डांटना भी मुश्किल हो जाता होगा। एक संदेश में बताया है कि हमारे पड़ोस में रहने वाले दंपति का बेटा अंशु भी बहुत शरारती है। अभी वो 3 वर्ष का है, उसने अभी साइकिल चलाना सीखा है और उसके दादाजी ने छोटी सी सुंदर साइकिल खरीद कर दी है। कुछ दिन पूर्व वो अपने मम्मी पापा के साथ नाना नानी के घर गया था, तो अपनी साइकिल की चाबी अपनी दादी के तकिए के नीचे छुपा कर गया था और दादी को पोल कर गया था कि दादी ध्यान रखिएगा कहीं दादाजी उसकी साइकिल लेकर ऑफिस ना चले जाए।
1: कितनी मासूमियत है कि उन्हें ऐसा लगा कि इतने लंबे चौड़े इतने ऊंचे दादाजी इतनी छोटी सी ट्राइसिकल कैसे चलाएंगे।
0: हाँ, और कितना ये भाव भी होता है ना बच्चों में कि ये मेरी चीज है,
1: हाँ
0: ये पता नहीं अभी ये ले लेंगे।
1: नहीं, और उन्हें ऐसा लगता ना कि पापा के पास में बाइक है या कार
0: हाँ
1: है या फिर मम्मी के पास तो पूरा किचन है, उनकी सारी
0: हाँ
1: चीजें मम्मी की, तो ये मेरी साइकिल है या मेरे खिलौने ये मेरे
0: बिल्कुल।
1: हैं। एक साथी ने लिखा है कि मेरा बेटा जब छोटा था तो पूरा दिन उधम मचा कर रखता था, छोटे बच्चों की शरारतें घर आंगन में हंसी खुशियां बिखेर देती है और उनकी मासूम हरकतें नटखट बातें और भोली मुस्कान सभी का मन मोह लेती है। कभी वो खिलौने बिखेर देते हैं तो कभी नई नई बातें सीख कर सबको चौंका देते हैं, उनकी शरारतों में मासूमियत छिपी होती है, इसलिए उन्हें प्यार और सही मार्गदर्शन के साथ समझना चाहिए।
0: और एक हमारे साथी ने एक बड़ी खतरनाक समस्या की तरफ इशारा किया है कि भाई आजकल तो छोटे बच्चों में भी इंटरनेट ने अपने गिरफ्त में ले लिया है और इसके चलते अपनों के आज्ञाओं का उल्लंघन सार्वजनिक रूप से ही देखा जा रहा है और उनके शैतानी भरी शरारत से ना ही उनकी आंखों पर ही चश्मे चढ़े हुए हैं और हम लोग अपने अपने आंखों पर चश्मे चढ़ाए हुए हैं। जाने कैसा ये आश्चर्य है जो उनके द्वारा किए जाने वाली शरारतें ही अब स्क्रीन पर ही

0: देखा जा सकता है, मतलब वो वही शरारतें कर रहे हैं जो वो देख रहे हैं।
1: देख रहे हैं। वही एक साथ ही लिखते हैं कि बच्चों की शरारत बेहद पसंद आती है, तो कभी हंसी भी आ जाती है, तो कभी कभी नाक में दम भी हो जाता है, तो कभी माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है। हमारे घर में कई छोटे बच्चे थे, एक बार वीसीआर के अंदर उन लोगों ने न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डाल दिए।
0: ओ
1: अब वीसीआर चलना बंद हो गया। जब मैकेनिक को बुलाया तो उसने इतने सारे कागज निकाले, पूछने पर किसी ने भी नहीं बताया कि किसने काम किया था।
0: सच में ये शरारतें तो खत्म होने का मतलब
1: नाम ही नहीं
0: नाम
1: लेती।
0: नहीं लेती, और लगता है कि चलती भी रहे, बाद में याद करके कितनी हंसी आती है।
1: हाँ
0: अच्छा, अब एक मुस्कुराहट और सज जाएगी अगर हम एक गीत सुन लें।
1: सुनते हैं गीत।
2: ओ मेरी, ओ मेरी।

0: सोनाली, ब्रेक पूरा हुआ और हम लौट आए हैं ब्रेक के बाद।
1: कार्यक्रम है सखी सहेली। और एक साथी ने लिखा है कि बचपन में मैंने भी एक शरारत की थी। 1960 के आसपास हमारे घर बिजली का कनेक्शन आया था और उन दिनों कुतूहलवश वायर से जुड़े होल्डर में लैंप लगाकर वायर को सीधा प्लग में डालकर स्विच ऑन करके जो स्पार्क हुआ उससे मेरी उंगली को झटका लगा।
0: ओह
1: पर चीखने के बाद मेरे बड़े भैया ने स्विच ऑफ कर मुझे छुड़ा तो लिया, लेकिन उंगली पर स्पार्क के निशान के साथ काली पड़ गई थी उंगली, और ऊपर से डांट के साथ मार भी पड़ी थी। वो भी झटका अलग से लगा था। एक साथी ने लिखा है कि खुद को ट्रंक के अंदर, वुलन कपड़े का जो ट्रंक होता है उसमें
0: हाँ,
1: सारे कपड़े निकाले और खुद को ट्रंक के अंदर बंद कर
0: ये
1: दिया था।
0: बहुत खतरनाक शरारत होती है जो बच्चे करते हैं, क्योंकि कई बार इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता
1: बहुत
0: है,
1: ज्यादा
0: चोट
1: खतरा।
0: भी बहुत गहरी लग सकती है। एक बड़ी मासूम सी शरारत हमारे एक और साथी ने साझा की है कि सर्दियों के दिन में हमारे घर में परिवार और बच्चे आए थे। वो देख रही थी कि सभी बॉडी लोशन और क्रीम का प्रयोग अपने शरीर पे करते हैं। उसने अपने टेडी बियर को पूरा कोल्ड क्रीम निकाल कर टेडी लगा दिया। हाँ, और बहुत बहुत ज्यादा लगा देने पर उससे संभाला नहीं तो उसने उसे बेड के नीचे छुपा दिया। घर में महक आ रही थी और जहाँ फर्श पर भी गिरा तो पैर में चिपक रहा था। ओ, तो बच्ची की बड़ी बहन ने बताया कि इसने कुछ किया है, तो पूरे बेड पर उसने फैला दिया था। जब उसकी माँ ने डांटा तो बोली कि टेडी को ठंड लग रही थी तो इसलिए उसे मालिश कर रही थी, जैसे नानी मुझे करती है तो मैं टेडी को कर रही थी। तो फिर उसे समझाया गया कि भाई तुम टैडी को मत करो, तुम बच्ची हो, तुम्हारी मालिश होगी, तुम नाना नानी की कर दिया करो।
1: हाँ, कितना कितना मासूमियत भरा सवाल था और जवाब भी बड़ा ही मासूमियत भरा था। एक ने लिखा है कि एक बच्चा बहुत देर से एक घर की बेल बजाने की कोशिश कर रहा था लेकिन पहुंच नहीं पा रहा था, तो हमने सोचा कि उसकी मदद कर दे। हमने बेल बजा दिया, फिर बच्चों को वॉशरूम जाना था तो बोला, अंकल अब भागो, वो घर का मालिक आ जाएगा तो हमें बहुत डांट
0: अरे
1: देगा।
0: बाप रे।
1: यानी उन्हें ऐसा लगा कि किसी उसे जाना है अंदर, तो बच्चा तो शरारत कर रहा था। उसके बाद में एक ने लिखा है कि मेरे बहन के छोटे बेटे ने उनके घर के बोरिंग यानी बोरवेल में पाना, पंचिश और ना जाने सारे औजार उसमें डाल दिए थे और सारे नए खरीदने पड़े।
0: क्या क्या तो गजब गजब शरारते हैं। और बच्चों की ये जो मासूम शरारतें होती हैं, इन पर बिगड़ते भी हैं हम कई बार, लेकिन अगर इन्हें अगर इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो उन्हें ये शरारत करने देनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं शरारतों से उनके दिमाग का भी विकास होता है, उनके व्यक्तित्व का भी विकास होता है, और वो मेलजुल कर या किसी कठिन समय में अपने आप को कैसे निकालना है ये
1: जी
0: भी सीखते हैं। तो बस नज़र रखनी पड़ती है बच्चों पे कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि एक बच्चा था, नया खिलौना जैसे ही उसको मिला तो वो तुरंत उसका सब ऊर्जा
1: खोल लिया
0: पुर्जा
1: उसने।
0: बराबर कर देता था। उसको बहुत शौक था मोटर कार का, हेलीकॉप्टर का, तो बस वो देखते ही तुरंत उसको
1: खोल
0: उसको
1: देता
0: चाहिए
1: था।
0: पेचकस, पेचकस से उसने तुरंत खोला वोला और सब अलग। तो भाई लोग कहते थे कि क्या करना है तुम्हें, तो कहता था मैं कोशिश कर रहा हूँ मैकेनिक बनने की, और बाद में आगे चल के वो वास्तव में
1: बहुत बड़ा इंजीनियर
0: इंजीनियर बना।
1: जी।
0: तो
1: तो
0: भाई
1: ये
0: ये कुछ
1: यानी
0: चीजें
1: उन्हें
0: होती
1: रोकी
0: हैं।
1: टोकी मत कि आपको लगता है कि भाई इतना महंगा खिलौना खरीदा और इसने तो दूसरे दिन तोड़ दिया, पर क्या पता उसकी जो क्रिएटिविटी है उससे उसे एक दिन बहुत बड़ा इंसान बना दे। साथ ही जो बच्चे ना क्रेयॉन होते हैं ना उससे दीवारें गंदी करते हैं, तो बहुत सारे लोग डांटते हैं पर उन्हें डांटे ना, एक छोटा सा कोना उन्हें दे दे,
0: हाँ
1: क्योंकि क्या होता है ना जो क्रेयॉन उंगलियों में पकड़ते तो उनकी उंगलियों के मसल मजबूत होते हैं,
0: हाँ
1: तो उन्हें गोदने दीजिए। ऐसा नहीं है कि हाँ पूरा ही घर गंदा मत करने दीजिए, पर उन्हें कह दीजिए कि ये जो है ना ये कोना तुम्हारा है, जहाँ जो या फिर व्हाइट बोर्ड आते हैं, ब्लैक बोर्ड आते
0: वो
1: हैं
0: लगा सकते
1: वो
0: हैं,
1: लगा सकते
0: बिल्कुल
1: हैं, या फिर ऐसे
0: कागज लगा दे,
1: हाँ
0: एक
1: आज
0: जो बड़े बड़े चार्ट पेपर्स आते हैं वो
1: हाँ वो
0: लगा
1: लगा
0: दें और
1: दे।
0: कहें कभी कभी कोई कोई आए तो दिखाए भी कि देखिए भाई ये इसने बनाया है, देखिए कितना सुंदर बनाया है। बच्चों की अगर इस तरह से तारीफ भी करते रहें कि गोदने वाले

0: आंख हमेशा के लिए चली जाती
1: चली जाती है।
0: तो ये इन बातों का हमें बस ध्यान रखना
1: चाहिए। हाँ, मतलब ऐसे चुभने वाली चीजें बच्चों की पहुंच से दूर ही रहें तो अच्छा है। नरम नरम से खेल, अच्छे अच्छे खिलौने, ये सब देकर बच्चों का बचपन ऐसा ही बना रहे जैसे कि
0: गाने में है।
1: हाँ।

0: सोनाली, देखिए शरारतों की बात चल रही है तो कैसे कैसे कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं। हमारी एक सखी बता रही है कि मेरा बेटा जब 6 साल का था तो वो एक दिन अकेले खेलते हुए किचन के स्लैब के नीचे छुप गया और सो गया। कुछ देर बाद जब उसके दादा दादी उसको ढूंढने लगे तो वो सोने के कारण रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। वो घबरा गए। मैं दूसरे शहर में थी, मुझे पता चला तो मैंने सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग में चेक किया तो पता लगा जनाब कहाँ छुपे थे। मैंने तुरंत उसके दादाजी को कॉल किया। जब वो वहां गए तो पता चला कि सो रहा है आराम से। खैर, जान में जान आई।
1: यानी दादाजी नाना जी रहे तो
0: हाँ
1: उसका भी कितना फायदा है ना।
0: बिल्कुल, मतलब बच्चों की शरारतों के बीच में एक अंकुश भी रहता है। वैसे दादा दादी को भी अच्छा लगता है,
1: और एक है
0: अकेलापन
1: ना,
0: नहीं लगता।
1: यानी परिवार में पुल का काम करते हैं ना, ब्रिज का काम करते हैं,
0: बिल्कुल
1: कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो दादा दादी ब्रिज का काम करते हैं कि उनकी बदौलत पूरा परिवार जुड़ा रहता है।
0: मूल से सूद ज्यादा प्यारा
1: प्यारा
0: होता
1: होता
0: है
1: है।
0: कहा भी जाता है, तो भाई वो अपने बच्चों को प्यार

0: भी देते हैं, भरपूर प्यार भी देते हैं, और जो अनुभव होता है ना उनका अपने बच्चों को पालकर, वो भी काम आता है,
1: बहुत काम आता है। पर अभी परिस्थितियां थोड़ी बिकट होने लग गई है। एक साथी लिखते हैं कि बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी के साथ हम बहुत समय बिताते थे, अभी बच्चों में शायद वैसा समय नहीं है और ना ही उतने शौक है उनसे कहानी सुनने के, किस्से सुनने के। सब कुछ तो उनको फोन में और टीवी में मिल जाता है, दादा दादी के साथ समय बिताना पसंद भी नहीं आता उन्हें। इसका नतीजा ये होता है कि अधिकतर बुजुर्ग अकेलेपन में ही समय बिताते हैं, जबकि बुजुर्गों के पास तो सजीव अनुभव और ज्ञान होता है, संस्कार देने की काबिलियत होती है और सोशल मीडिया अब टीवी से जुड़ गए हैं। उस जमाने में कहाँ था सोशल मीडिया और टीवी।
0: बिल्कुल,
1: तो ये एक थोड़ी सी समस्या है, परेशानी है, ये
0: परेशानी है। और इस बारे में हमारी एक सखी लिख रहे हैं कि आजकल के समय में ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि परिवार बहुत छोटे हो गए हैं। हमारे घर में ये समस्या नहीं है, हमारा संयुक्त परिवार है, 13-14 लोग अभी साथ में हैं, तो बड़े बुजुर्गों को अकेलेपन की भावना नहीं आती है, चहल पहल हमेशा रहती है। मुझे लगता है कि एकल परिवार भी एक कारण है अकेलेपन का,
1: बहुत ही बड़ा कारण है अकेलेपन का, एकल परिवार। और सचमुच है ना, पुराने ज़माने की बात की जाए ना राजुल जी, तो उस वक्त प्राइवेसी नाम की ऐसी चीज़ ही नहीं हुआ करती थी जो आजकल लोगों को चाहिए। लोगों को बस लगता है कि हमें बस हमारा स्पेशल यानी बेडरूम, उसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम उनका हो, उसमें किसी को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, बच्चों को भी सब प्राइवेसी की ज़रूरत है। पर पुराने ज़माने में सब एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल करते थे, एक घर में रहते थे, लड़ते झगड़ते भी थे पर फिर एक हो जाते थे, तो एक बहुत सुंदर दिखता था ऐसा घर। पर अभी ये थोड़ा सा इसकी कमी नज़र आ रही है। एक साथ लिखते हैं कि बुज़ुर्ग अगर घर में है तो ये बात का सबसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास थोड़ी थोड़ी देर जाकर समय देना चाहिए, बैठना चाहिए, उनकी ज़रूरत का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ हमारी सेवा और समय ही नहीं, उन्हें हमारा थोड़ा सा प्यार भी दे देना चाहिए तो वे बड़े खुश हो जाते हैं।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जब रेडियो पर आपके कार्यक्रम सुनते हैं तो अकेलापन नहीं लगता, हार्ड कॉपी में किताब पढ़ते हैं जिससे मन के तूफान शांत होते हैं, सोशल मीडिया कम वापरता हूँ, कसरत करके तंदुरुस्त जीवन जीने का प्रयास है, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर कहा खाओ पियो और मौज करो, सादा जीवन, किसी को मदद करने से भी अकेलापन महसूस नहीं होता।
1: क्या बात है। एक साथी लिखते हैं एकल परिवारों में बुजुर्गों का अकेलेपन की समस्या बहुत ज्यादा है। बुजुर्गों का अकेलापन केवल एक भावनात्मक समस्या नहीं है बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसके कारण उनमें डिप्रेशन और याददाश्त कमज़ोर होने की जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। इसके उनके इस खालीपन को दूर करने के लिए बातचीत, जुड़ाव और नियमित दिनचर्या बहुत ज़रूरी है। दो प्यार के बोल, सुविधापूर्ण उनकी दिनचर्या, इस उम्र में उनके अकेलापन दूर करने के लिए मेल मिलाप बहुत ज़रूरी है जो आजकल बेहद कम हो गया है।
0: और ये एक हमारे श्रोता ने अंग्रेजी में संदेश भेजा है, आई एम अ सीनियर सिटीजन रिटायर्ड फ्रॉम बैंक एंड स्टार्टेड अ न्यू जर्नी इन रेडियो एज आरजे ऑन कम्युनिटी रेडियो, इंजॉइंग अ लॉट, आई लव रेडियो सिंस माई चाइल्ड हुड, विविध भारती साथ हो तो बोर होने का सवाल ही नहीं है।
1: क्या बात है
0: भाई, इस तारीफ के लिए शुक्रिया, विविध भारती के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। और एक बात और इनके संदेश से पता लगती है कि अगर बुजुर्ग कोई अपना शौक डेवलप कर लेते हैं उस समय भी, ये सोचकर नहीं कि ये जिंदगी का अवसान है बल्कि ये एक नया पड़ाव है, एक नई यात्रा है
1: जी।
0: और अगर वो एक कोई शौक अपना शुरू कर लेते हैं तो उससे निश्चित रूप से उन्हें अकेलापन कम महसूस होगा। ये तो सही बात है। एक हमारे पढ़ रही थी तो भी एक संदेश में शायद ये भी कहा गया है कि आजकल बच्चों के पास समय नहीं होता। सही बात है, समय नहीं होता, बड़े जब होने लगते हैं तो कम समय रहता
1: है। पर अगर ऐसा है ना कि बच्चे नहीं बात कर रहे हैं तो बुजुर्ग खुद भी जाके बोल सकते हैं कि कैसे हो बेटा, क्या हालचाल है, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। नहीं तो ऐसा लगता ना कि अरे वो बात नहीं कर रहे, वो नहीं जा रहे, तो पहल दोनों तरफ से होनी
0: चाहिए, दोनों तरफ से होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए कि बच्चे बहुत ज्यादा व्यस्त हैं तो अगर बच्चे को उस समय उसको जो चाहिए, मान लीजिए कि बहुत व्यस्त है, पढ़ाई कर रहा है या किसी प्रोजेक्ट में अपने बिजी है, और आप सिर्फ इतनी सहायता कर रहे हैं कि मान लीजिए प्रोजेक्ट बनाने में उसको कुछ काटने की जरूरत है, आप काट कर उसे वो पकड़ा देते हैं, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है।
1: उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगता है,
0: और हमें गीत सुनना भी बहुत अच्छा लगता है।
1: सुनते हैं गीत।

0: भाई देखो, हमारे एक श्रोता ने अपनी दिनचर्या साझा करके बताया है कि सुबह पूजा पाठ, फिर शिवालय, फिर भोजन, फिर 1 बजे सुरीला सफर सफर, फिर सखी सहेली, फिर 5 बजे फिर आराम, और फिर 5 बजे 5 किलोमीटर वॉकिंग, फिर भोजन, फिर टीवी प्रोग्राम, फिर 5 या 6 घंटे नींद। यही है 70 साल के बुजुर्ग की दिनचर्या।
1: क्या बात है, ये तो किसी 17 साल के जो है ना युवा को भी शर्म आएगी, इतनी परफेक्ट दिनचर्या है
0: हाँ सही बात है।
1: आपकी। वैसे पानी पानी मुहावरे का मतलब है शर्म से पानी पानी होना। तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि पानी पानी होना, इस मुहावरे से एक बात याद आ गई। तब मेरा बेटा बहुत छोटा था और उसे लेकर मैं एक परिचित के घर गई। बातचीत के बाद मेरी परिचित चाय बनाने के लिए उठी तो मैंने बोल दिया मैं चाय नहीं पीती, और मेरे बेटे से पूछा दूध पियोगे, तब भी मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरा बेटा भी दूध नहीं पीता था। लेकिन जैसे ही मैंने मना किया, मेरा बेटा तुरंत बोल पड़ा कि मुझे खूब गर्म दूध दीजिएगा। और आंटी सुनिए ना, मेरी मम्मा चाय नहीं कॉफी पीती
0: हाँ
1: है। इसलिए मम्मा के लिए कॉफी बना दीजिए। मुझे उस समय बहुत शर्म आई और शर्म से पानी पानी हो गई। ये
0: सही
1: सचमुच
0: बात है, बच्चे
1: बच्चे
0: पोल खोल देते
1: बहुत
0: हैं।
1: पोल खोलते हैं।
0: एक बच्चे ने कहा कि जब उसके पिताजी ने कहा कि भाई हम घर पर नहीं हैं, जाओ क्या दो अंकल आए, क्या दो घर पे नहीं है, तो उसने जाके कहा, पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। अब मतलब
1: उसने
0: पिताजी
1: बता
0: बिल्कुल,
1: दिया।
0: हाँ बिल्कुल पानी पानी, वो झक मार के फिर बाहर निकले और मिले अपने मित्र से, क्योंकि बच्चे ने बता दिया था कि पिताजी ने कहा है कि हम घर पे नहीं है।
1: एक बार एक एक व्यक्ति थे, उनके मित्र आए थे, तो उन्हें अंदर से आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, उनकी छोटी सी बेटी थी। तो अब क्या बात करें बच्चे से, तो उन्हें पूछा कि बेटा तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं, पहले नाम पूछा क्या नाम है आपका, फिर आपके पापा क्या काम करते हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरे पापा तो घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, कपड़े धोते
0: सब पोल
1: हैं,
0: खोल दी।
1: सब पोल खोल दिया अंदर से। पापा ने सुना, अरे ये मैं तो

0: वो पानी पानी हो गए छल से।
1: अच्छा वो बच्चा भी बेचारा क्या करे, उसने
0: हाँ
1: काम का मतलब यही समझा
0: समझा
1: कि
0: कि
1: हम, माँ कहती होगी कि हम काम कर रहे हैं, तो काम का मतलब झाड़ू लगाना। तो कभी कभी अगर पिताजी ने झाड़ू लगा भी दी तो उसने कह दिया कि वो ये भी काम करते हैं, ये भी काम करते हैं, मतलब वो तो बड़ा ही कर रहा था।
0: और एक बार ऐसे हुआ कि बैठे हुए थे लोग, तो छोटी बच्ची भी थी साथ में, तो उसकी मम्मी बोले कि चलो टाइम हो रहा है हम घर जा रहे हैं, तो बोले नहीं नहीं मम्मी रुको रुको, अंदर से कप प्लेट की आवाजें आ रही है, शायद चाय बनने
1: सच
0: वाली।
1: में ये स्थिति जो है बड़ी खतरनाक होती है। उस समय माँ बाप को समझ में नहीं आता कि देखें रुकें क्या करें। और कभी कभी ये भी कहना पड़ता है भाई बड़ा शरारती है। जैसे कह दे कि कई बार ऐसा होता है कि माएँ कहती हैं बच्चा खाता ही नहीं, कुछ नहीं खाता, और इधर बच्चे ने जैसे ही नाश्ते की प्लेट आई और उसने खाना शुरू किया,
0: सब खा
1: सब
0: लिया।
1: खा लिया। तो ऐसे में एक बात बस यही कहेंगे कि अगर बच्चे हैं, ये तो बच्चे हैं, और हो सकता है कि सामने प्लेट में जो हो वो उन्हें पसंद आ रहा हो इसलिए वो खा रहे हो, तो घर में ऐसा रूल बनाए ना कि बहुत सी बार ऐसा होता ना कि बच्चे, हम बाहर जाके नहीं खाने देते बच्चों को, तो ऐसा रूल अगर आपने बनाया है कि बाहर जाके किसी के यहाँ खाना मत, तो बच्चे का मन फिर मचलेगा।
0: जिसके लिए हम खूब मना करते हैं।
1: हाँ खूब मना करते हैं, बल्कि इसके बजाय ये कर दें कि भाई अगर बच्चे को कोई चीज़ पसंद आ रही है, जैसे अगर बच्चे ने, छोटे बच्चे ने, मान लीजिए एक मैंने देखा था कि एक बच्चे घर गया, बच्चे छोटी बच्ची थी उनके साथ, और उन्होंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लाकर उसमें रखे और उन्होंने कहा कि खाओ। अब जगह ऐसी थी कि जो माँ गई थी तो उसको लगा कि नहीं खाना चाहिए, तो वो उसने एक ले लिया और कुतरना शुरू कर दिया। बच्चे ने एक किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर दूसरी किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर तीसरी किशमिश उठाने वाली थी तो उसे लगा कि टोकना चाहिए, फिर उसे लगा कि अगर हम टोकेंगे तो बच्ची को गलत मैसेज जाएगा, तो उसने क्या किया कि कहा कि अच्छा तुम्हें किशमिश अच्छी लग रही है, और दो चार किशमिश बीन कर उसको अलग से दे दी, बच्ची अपना वो खाती रही, और इस तरह से उसको भी पानी पानी नहीं होना पड़ा और बच्ची की भी शरारत या जो बाल स्वभाव है
0: जी,
1: वो पूरा हो गया।
0: और जैसे पानी पानी होने की बात है, इसके तो कई उदाहरण हैं कि कई बार ऐसा होता है ना कि किसी को कुछ चीज़ खाने की मनाही होती है, और भाई इच्छा तो होती है, अब मिठाई खाने की मनाही है, घर वाले कहने कि भाई डायबिटीज़ है खाओ मत मीठा का, अब बहुत ललचाया है हलवाई के यहाँ जाके खा लिया, और घर वालों ने किसी ने देख
1: देख
0: ली।
1: लिया तो पानी पानी हो गए।
0: तो ऐसे लज्जित होना स्वाभाविक सी बात है, पर लज्जित हो गए हैं ना तो उसके बाद में अपराध बोध से ग्रसित नहीं होना है, उसे
1: बिल्कुल
0: वही छोड़ देना है कि भाई ठीक
1: हाँ
0: है ना, गलती हो जाती है, बड़े हैं बूढ़े हैं कोई भी उम्र के लोग हैं, अगर गलती हो गई है तो उसको हंस के स्वीकार कर ले, उसका दिल पर बोझ ना रखे, नहीं जिंदगी को हल्के में लेना चाहिए।
1: और देखो हमारे एक श्रोता ने बड़ा प्यारा सा संदेश हमारे साथ साझा किया है कि वो जो विविध भारती के कार्यक्रम होते हैं जिनमें वो अपने संदेश साझा करते हैं, जैसे सखी सहेली या सुरीला सफ़र, तो उसमें वो अपनी और अपनी धर्मपत्नी के प्रेम के बारे में अगर कभी कुछ संदेश देते हैं तो वो पढ़कर पत्नी पानी पानी हो जाती है शर्म से। वो तो ऑफिस में देते हैं, पत्नी वहाँ घर में पानी पानी हो जाती है। तो भाई लेकिन ये कितनी सुंदर यादें, स्मृतियाँ आप लोग साथ साथ संजो रहे हैं।
0: सचमुच, और ये यादें हैं ना, ये बहुत सुंदर यादों को हमें संजो कर भी रखना चाहिए कि ये पल ये क्षण जो है फिर से नहीं
1: फिर
0: आते।
1: से नहीं आएंगे, जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन हम ये समय नहीं बीतने देंगे, हम गाना सुनेंगे।
0: बिल्कुल, सुनते हैं गीत।

0: तो भाई बड़ी रोचक रोचक बातें हो गई। हम लोगों ने काफ़ी किस्से सुन लिए और उन पानी पानी होने वाली स्थितियों के बारे में भी जान लिया, जो कई बार एकदम ऐसा कर देती हैं कि समझ में नहीं आता इधर जाएं कि उधर जाएं, क्या करें कैसे करें।
1: तो बहुत मज़ा आया, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिख कर भेजे। तो विविध भारती से जुड़े रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और राजुल का
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: एक जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार। वो कहते हैं, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15 फिल्म मुल्क। और फिल्म थप्पड़। जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है, उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
1: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो अनुभव सिन्हा जी देर से मिले, लेकिन मिले तो दुरुस्त मिले।
2: हाँ,
1: बहुत सारी फिल्मों की आमद हुई आपकी फिल्में दुनिया में, आर्टिकल 15, भीड़, और इन सब में गाने लिखे, थप्पड़ के सारे गाने आपने लिखे।
2: हाँ, मुल्क के सारे गाने।
1: तो मुल्क के हाँ। तो मैं चाहती हूँ कि मुल्क फिल्म का गाना, फिर आर्टिकल 15 का, क्रमवार आप बताएं और रचना प्रक्रिया बताएं।
2: मुल्क का गाना आप वो सुनाए, पिया समाए।
1: जी,
2: बहुत अच्छा गाना है,
1: बहुत पसंदीदा कव्वाली।
2: हाँ,
1: कव्वाली है।
2: यस यस,
1: कव्वाली की शक्ल में है ये गाना। और हम आपको बताएं कि विविध भारती
2: उसमें हमारा पूरा हिंदुस्तान है उस गाने
1: जी
2: में।
1: बिल्कुल। हाँ। पूरी फिल्म बड़ी बेहतरीन है। हाँ। इसमें अनुभव सिन्हा जी को बधाई जाती है
2: जी,
1: सबकी ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से।
2: मैं समझता हूँ कि जो मुल्क फिल्म है
1: जी,
2: या आर्टिकल 15 है, ये ऐसी फिल्म है जो हमारे हिंदी सिनेमा में जो ऐसी फिल्में बनी हैं जो याद की जाएंगी।
1: बिल्कुल, जिनका जिक्र किया जाए,
2: जिक्र
1: ये
2: किया
1: दर्ज
2: जाए।
1: होती हैं आज के समय में।
2: हाँ, वो ऐसी फिल्मों में ये फिल्में हमेशा जिंदा रहेंगी, जैसे थप्पड़ है, मुल्क है, आर्टिकल 15 है।
1: बिल्कुल।
2: और मेरी खुशनसीबी है कि मैं इन फिल्मों का हिस्सा हूँ।
1: शकील साहब, ये मुल्क फिल्म की बेहद मकबूल कव्वाली, और विविध भारती से एक प्रोग्राम होता है सुबह चित्रलोक, पहले ये भारत की गूंज के नाम से प्रसारित होता था, इसमें अक्सर हम विविध भारती से प्रसारित किया करते थे, और उसमें आपका नाम लेते हुए बड़ा फक्र महसूस होता था कि शकील आजमी ऐसे शायर गीतकार हैं जिन्हें हम निजी तौर पर भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि बात अनुभव सिन्हा जी की चली है, तो आर्टिकल 15, भीड़, कई फिल्में हैं आपके खाते में, तो क्रमवार इनका जिक्र करें, रचना प्रक्रिया बताएं इन गानों का। आर्टिकल 15, इंतजारी, जिसे आयुष्मान खुराना ने गाया भी है।
2: जी हाँ, जी हाँ, इंतजारी सुनवा सकते हैं आप
1: जी।
2: बिल्कुल।
1: तो
2: आर्टिकल 15 से
1: तो कैसे वो गाना बना, वो बनने की क्या कहानी?
2: उस गाने की कहानी ये है कि
1: कोई दिलचस्प बात हो।
2: हाँ, दिलचस्प बात है। अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे ये कहा, कहने लगे यार सिचुएशन मैं नहीं बता रहा हूँ, आप यूँ समझ लीजिए कि वो गुलजार साहब का वो एक गीत था, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास
1: पड़ा है इजाजत फिल्म
2: लौटा दो। हाँ, तो इसका उल्टा गाना चाहिए मुझे।
1: अरे क्या बात है। हाँ,
2: उल्टा मतलब कि
1: सामान देना है।
2: हाँ वो कह रहे कि वो कह रहे लौटा दो, और मुझे ऐसा चाहिए कि ले जाओ, ठीक है,
1: संचय करना है यहाँ पर।
2: तो उसमें जो गाना है वो मैंने लिखा है कि मोहब्बत में जो दो लोगों के आपसी जो मोमेंट्स होते हैं, है ना, हंसी है, गम है, रोना है, मुस्कुराना है ना, साथ में कुछ कहीं खा रहे हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं आइसक्रीम खा रहे हैं, और कहीं किचन में थोड़ा झगड़ लिए हैं, तो ये सारे जितने भी मोमेंट्स हो सकते हैं, तो अब हम बिछड़ गए हैं और मैं इसको अकेला जी रहा हूँ।
1: अच्छा, क्या बात है, ठीक है, सारा कुछ एक गाने में आना।
2: हाँ, तुम तो बिछड़ गए हो और खुश हो, लेकिन मैं वहां से निकल नहीं पा रहा हूँ। वो साझा जो चीजें हैं हमारी, मैं उसको अकेला जी रहा हूँ और मैं दुखी हो रहा हूँ। तो तुम एक काम करो, ये आओ और इसको ले जाओ। तो ये मैंने एक मतलब स्टोरी बोर्ड बनाया और इसको मैंने शायरी में लिखा और वो इस तरह से गाना बना, इंतजारी
1: जी। हाँ, तो वो शायरी कैसे बनी वो बताइए, मतलब वो शेर अगर याद है तो।
2: हाँ, इसी तरह से बनी वो कि आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी,
1: क्या बात है, वाह,
2: ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी,
1: वाह वाह, बहुत सुंदर
2: है ना।
1: तो
2: अच्छा, पहले इसमें ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, ये लाइन पहले नहीं थी, उसमें कुछ खुमारी राइमिंग की लाइन थी। तो अनुभव सिन्हा साहब ने कहा कि शकील भाई ये इंतजारी लफ्ज बड़ा यूनिक है, इंतजार होता है, इंतजारी लोग नहीं लिखते हैं। तो हमारे बचपन में हम गांव में सुनते थे, अरे हम तुहरी इंतजारी देखत रहे हैं, है ना, इंतजारी कर नहीं रहे थे, इंतजारी देखत रहे हैं, पुराने लोग बोलते थे। तो अब हमारा जो मुल्क है ना, वो बहुत विशाल, बहुत बड़ा मुल्क है,
1: रंगी है,
2: और बहुत मतलब भाषाएं बहुत हैं, तो कोई भी शब्द कुछ अलग से आता है तो वो कानों को भला लगता है,
1: बिल्कुल,
2: है ना, कुछ नया लगता है। तो मैंने इंतजारी जानबूझ के, और बोले ये इंतजारी और रेजगारी बड़े कमाल, अरे इंतजारी बड़ा कमाल लग रहा है, ये खुमारी जो है इसको चेंज करो यार, कुछ नया लफ्ज ले आओ। तब उसकी जगह पे ये आया, आना आ भी जाना, ये ट्यून पे लिखा हुआ गाना
1: जी,
2: और अनुराग साइकिया ने म्यूजिक किया है इसका। आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी, ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, वो जो हम रोए साथ थे वो सब आके लेके जा। तो वो उसका उल्टा गाना था जो गुलजार साहब का था, ये उसके बरक्स था। तो ये सारा मैंने एक स्टोरी बोर्ड बना लिया कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और फिर मैंने इसको लिखा और गाना इस तरह से बना।

0: जो गाना हम सुनते हैं बहुत एंजॉय करते हैं हम स्टूडियो में बैठकर और हमारे श्रोता स्टूडियो के बाहर, लेकिन उस गाने के बनने के पीछे कहानियाँ होती हैं और कई बार मुश्किलात भी होती हैं कि आप जैसे बता रहे हैं कि अनुभव सिन्हा जी आपको दृश्य बता रहे हैं और आप लिख रहे हैं फिर चेंजेस, तो एक कितना आसान नहीं होता है सफ़र। तो फिल्म मुल्क में जो कव्वाली है बड़ी हिट, पिया समय हम सबका पसंदीदा कव्वाली हम सबकी, इस गाने की बनने की क्या कहानी थी?
1: ये तो बहुत ही मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने, और वो तो चले गए शूटिंग करने। मेरे साथ अक्सर होता है यही उनकी फिर उनके गानों को लेके कि हाँ हाँ कर लेंगे, और ऐसा फिर वो शूटिंग पे चले जाते हैं और फिर जब ज़रूरत होती है तब कहते जल्दी करो गाना चाहिए। तो अब वो शूटिंग कर रहे हैं उधर लखनऊ के पास मलिहाबाद वगैरह में, और
0: अभी गाना लिख दो जल्दी।
1: हाँ, और हम जो हैं मैं और अनुराग साइकिया ने ये इसका किया था म्यूजिक वो, और
0: थप्पड़ में भी अनुराग साइकिया का संगीत था। हाँ, आर्टिकल 15 में भी
1: थप्पड़ सोलो था
0: और मुल्क में,
1: और मुल्क में एक ही गाना था उनका ये, बाकी प्रसाद साष्ठे ने दो गाने किए थे
0: जी जी। हाँ,
1: तो हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है, वो रूट पता नहीं चल रहा है कि जाना किधर है।
0: यहाँ पर अनुभव सिन्हा जी का भरोसा भी आप पर अटूट है।
1: हाँ,
0: कि वो गाना देकर चले गए हैं।
1: हाँ, अब मैं फोन कर रहा हूँ कि इसमें लिखना क्या है। अब वो क्योंकि उधर बिजी हैं शूटिंग में, ध्यान उधर लगा हुआ है, कह रहे हैं मैं बताता हूँ। अब हम इंतजार कर रहे हैं, फिर उनका फोन आया, कह रहे हैं मैंने आपको एक वीडियो भेजा है वो देख लीजिए आप, सुन लीजिए। मैंने कहा सर आप बताइए ना कि उसमें क्या है और आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साइंस ये कहती है कि जब सारे रंगों को हम मिलाते हैं तो सफ़ेद रंग बनता है, सारे रंगों को मिलाने से सफ़ेद रंग
0: जी,
1: बनता है
0: जी।
1: मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है सर?
0: बिल्कुल सही बात है, सफेद रंग तो अपने आप में सफेद रंग है, उसमें कोई भी रंग मिलाएंगे तो वो तो दूसरा हो जाएगा।
1: तो, हाँ, तो बोले नहीं ऐसे ही होता है, यही थॉट है। और ये गाना मुझे देशभक्ति इसमें होनी चाहिए और कौमी एकजहती होनी चाहिए,
0: जी, जी, जी।
1: ठीक है, पूरा देश एक साथ चलना चाहिए इस गाने में। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसको लिखा, मुश्किल गाना था बहुत
0: जी।
1: मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी,
0: बेहतरीन फिल्म थी,
1: डिफिकल्ट सिचुएशन थी
0: जी।
1: तो मैंने लिखा उसमें कि पिया समाए जिया में मोरे पिया समाए, ये हुक है, उससे पहले लाइन आती है सात रंग हैं सातों पिया के,
0: सात रंग हैं सातों पिया के।
1: हाँ, सात रंग होते हैं
0: जी।
1: अब मुझे सफेद पर खेलना है और उसको ऐसा बनाना है उसमें पूरा देश एक साथ जुड़ना चाहिए, ठीक है, सारे समुदाय जो हैं वो एक साथ जुड़ने चाहिए, तो वो सारे जो हैं एक साथ जुड़ने चाहिए। तो अच्छा, अभी इसमें जो पिया है ये वो भी पिया है जो मतलब जो जमीन पे है ना, और वो भी पिया है जो खुदा है, ईश्वर है, भगवान है,
0: खुदा है,
1: हाँ, और महबूब भी है हमारा, ठीक है, डबल मीनिंग है। इस तरह के बहुत सारे लागा चुनरी में दाग और फलाना वो
0: छुपाऊं कैसे,
1: है ना, घर जाऊं, घर जाने का मतलब वो मरने के बाद की जिंदगी है ना,
0: दो अर्थी।
1: हाँ, तो ये दो अर्थी ये भी मैंने इसको करके आगे बढ़ाया। सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के,
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: तो ये दूसरे वाले को वो कटाक्ष कर रही है कि तू भी कभी लगा के देख, तुझे भी वो सब पिया के ही लगे
0: रंग दिखाई
1: पड़े। हाँ, अलग अलग मत देख, हम सब एक हैं, सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के, सातों से मिल के भई मैं उजली,
0: वाह क्या बात है,
1: सातों से मिलके
0: भाई
1: में उजली,
0: वाँ वाँ।
1: कोई हरा कोई गेरुआ बताए,
0: क्या बात,
1: पिया समाए जिया में मोरे पिया समाए। अब ये देखने वालों की नजर है कि कोई मुझे हरा बता रहा है कोई गेरुआ बता रहा है, लेकिन मैं तो सातों से मिलके उजली हो गई हूँ
0: जी जी।
1: और तू भी लगा के देख कभी, तो ये बड़ा ही मतलब टेढ़ा गाना था और ऐसा वो सटीक आया है ऐसा कि एक लाइन भी चेंज नहीं हुई, बड़े खुश हुए, बोले आगे बढ़ो।
0: तो ये जो फिल्म है एक संदेश देती है, ये गाना भी संदेश देता है, सब एकजुटता का संदेश है। और बेहतरीन फिल्म का बेहतरीन गाना ये सुनवाते हैं हम।

0: शकील साहब, अभी आपकी जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें करनी हैं। अब यहाँ हम आते हैं आपकी फिल्म धोखा में। फिल्म धोखा
1: हाँ
0: एम एम करीम साहब ने गाया है और
1: जी
0: कंपोज भी किया है गाना,
1: जी
0: इसके बारे में एकदम संक्षेप में बताएं, क्योंकि
1: मतलब आप भट्ट साहब के दरवाजे पर पहुंची हैं।
0: पहुंच गए, दस्तक दे रहे हैं। और महेश भट्ट साहब के साथ आपने बहुत सारा काम किया है और आपकी फिल्मी दुनिया में उनका बहुत बड़ा योगदान, कह ले योगदान भी है, और काफी दोस्ती मित्रता है।
1: हाँ, प्यार रहा बहुत उनका, भट्ट साहब का उस जमाने में। तो ये फिल्म उनकी जो बेटी
0: पूजा भट्ट,
1: पूजा भट्ट, उन्होंने डायरेक्ट की थी। और ये गाना जो है एम एम करीम साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, मेरे पसंदीदा कंपोज़र हैं वो। और उनको हिंदी नहीं आती ठीक से, है ना, तो भट्ट साहब के ऑफिस में उन्होंने मुझे धुन दी, ट्यून बताई हारमोनियम प्ले करके। मैंने उसको तब वो छोटे वाले जो टेप चलते थे, मैंने रिकॉर्ड किया उसमें। और वहीं बैठ के मैंने गाना लिखा वो। और गाना लिखा जब उन्होंने उसको गाना शुरू किया, कहीं कहीं अटके लेकिन फिर वो रवां हो गया। जब उनके मीटर में पूरी तरह से रवां हो गया वो गाना
0: जी।
1: तो मुस्कुराहट उनके चेहरे की बढ़ती गई।
0: क्या बात है।
1: हाँ, वो जो वो ट्यून में पूरी तरह से वो गाना, तो वो गाना जो है वो पूजा को भी बहुत पसंद था, बहुत खुश थी उस गाने से वो। लेकिन इससे पहले भट्ट साहब के यहाँ मेरी पहली जो फिल्म थी वो थी जहर। हाँ,
0: जिसका गाना बहुत मशहूर हुआ था, फिल्म का गाना, इनकी आवाज, श्रेया घोषाल की आवाज में जो गाना था, अगर तुम मिल जाओ, बहुत बहुत मशहूर हुआ था।
1: जी जी। तो ये गाना दरअसल पाकिस्तानी गाना था, ये उसको यहाँ पर अनु मलिक साहब ने रिक्रिएट किया था। रेशमा की आवाज में भी आपको मिल जाएगा वो गाना, कई लोगों ने गाया हुआ है, पुराना गाना है। और ये फिल्म मोहित सूरी की भी पहली फिल्म थी। मोहित सूरी थे इसके डायरेक्टर, वो भी मतलब उनके भट्ट साहब के भांजे होते हैं
0: जी।
1: और ये फिल्म बड़ी कामयाब रही, इसके सारे गाने सुपरहिट हुए और सारे गामा म्यूजिक कंपनी ने इसके गाने रिलीज किए थे। और हमें जो है वो पहली बार आउटस्टैंडिंग म्यूजिक सेल नाम से हमें ट्रॉफी बांटी गई। उसका एक फंक्शन हुआ, एक तकरीब हुई उसकी, और बड़े खुश थे वो लोग, क्योंकि म्यूजिक बहुत बड़ा हिट था और फिल्म भी हिट हो गई थी। सिल्वर जुबली का भी उसका ट्रॉफी मिला था हम लोगों को
0: जी।
1: तो उसमें गाना था वो के ने गाया था वो, ऐ बेखबर ऐ बेखबर
0: जी जी,
1: तो वो भी बहुत बेहतरीन गाना था।

0: और एक गाना वो था, जाने जा
1: जी जी
0: तुझसे बिछड़ के मैं जाऊं कहाँ, वो भी बहुत, सारे गाने ही बहुत हिट हुए थे उसके, और बड़ी कामयाब फिल्म रही वो, तो वो पहली फिल्म थी मेरी भट्ट साहब के यहाँ
1: जी।
0: जी।
1: तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाया श्रोताओं को?
0: आए बेखबर
1: सुनते हैं
0: हाँ
1: ये गाना।

0: अनूप कुमार राठौड़ के साथ आपने और भी काम किया है, और भी गाने उन्होंने गाए हैं, वो उनके बारे में।
1: हमारी शुरुआत ही साथ में हुई थी
0: जी।
1: अनूप कुमार राठौड़ साहब के बारे में मैं बताऊं, जब मैं यहाँ नया नया आया था तो जो कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर थे, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। अनूप कुमार राठौड़ साहब से मेरी मुलाकात हुई
0: जी,
1: तो वो गजल सिंगर होते थे
0: जी जी,
1: और प्लेबैक सिंगर भी होते थे
0: जी, बिल्कुल
1: है ना। फिल्मों में उन्होंने कम गाया, लेकिन एज ए गजल सिंगर उनको ज्यादा
0: नाम शोहरत
1: और इज्जत है उनकी। लेकिन कुछ गाने भी उन्होंने गाए हैं और उसमें से कई गाने बड़े हिट हैं, जैसे ऐ जाते हुए लम्हों
0: जी, जी, जी।
1: संदेशे आते हैं, या वीर ज़ारा का गाना है, है ना। इस तरह के कई गाने हैं जो उनके बड़े हिट हैं। तो जब मैं आया तो मेरी मुलाकात हुई तो वो मेरी गज़लें सुनते थे और उसमें से चूज करते थे और गज़लों को कंपोज करते थे। लेकिन वो गज़ल का टाइम भी जा रहा था। जब मैं आया हूँ उससे पहले गज़ल का एक बड़ा दौर आया था, जिसमें जगजीत जी की गज़लें और पंकज उदास साहब की गज़लें, हरिहरन साहब, रूप कुमार राठौड़ साहब, मतलब नए गज़ल सिंगर भी आते थे, उनके एल्बम भी खूब चल रहे थे
0: जी जी।
1: लेकिन जब मैं आया हूँ तो ये दौर ख़त्म हो रहा था
0: जी जी,
1: गज़ल का मार्केट डाउन हो रहा था जब मैं आया था। तो मेरे सामने ही वो रूप भाई ने कैफी आज़मी साहब का एल्बम किया मेरे सामने, मीर तकी मीर का एल्बम किया मेरे सामने, तो मेरी वो गज़लें कंपोज करते थे। अच्छा, मेरे पास कोई बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर नामी नहीं था, तो मैंने सोचा कि रूप भाई इतने अच्छे कंपोज़र हैं, तो ये अगर फिल्म के गाने कंपोज करें और मैं लिखूँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, और उनका नाम भी है। तो मैंने उनसे कहा कि आप फिल्म के गाने क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा भाई मैं इसलिए नहीं करता कि लोगों को पता चलेगा दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टरों को, तो जो गाने गवा रहे हैं वो भी बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसा होता है हर प्रोफेशन में। तो थोड़े दिन तक तो वो इस बात पर टिके रहे, और मैं उनके अंदर वो म्यूज़िक कंपोज़र को, जो फिल्म का म्यूज़िक कंपोज़र होता है, उसको मैं जगा चुका था, मगर
0: जी जी
1: है ना, कहीं ना कहीं उनके भीतर भी था वो, क्योंकि हर म्यूजिशियन का वो सपना होता है
0: जी जी,
1: वो म्यूज़िक डायरेक्टर बनने का। तो एक दिन उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, लाओ मुखड़े कंपोज़ करता हूँ। तो मैंने लिखने शुरू किए, उन्होंने कंपोज़ करने शुरू किए, और हमारा आज भी 500 गानों का बैंक है, जो हमारे गाने रूप कुमार राठौड़ साहब के बैंक में मेरे लिखे हुए
0: दर्ज है।
1: हाँ, और 400-500 गाने होंगे।
0: बहुत सारे नॉन फिल्म एल्बम भी हैं आपके नाम, एक जोगिया हमें याद आ रहा है।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: जोगिया मन, तो वो कैसे बना वो गाना?
1: जोगिया मन तो अभी बात का है, वो एक नया कंपोजर है और बहुत अच्छा सुरीला है, हरीश सगा ने
0: जी
1: उनके साथ किया था मैंने, बहुत अच्छा लड़का है। और हरीश सगने के साथ हमने एक फिल्म की थी, विक्रम भट्ट साहब की एक फिल्म थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि शकील भाई मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप गाने लिखें। तो मैं गया उनके यहाँ, तो उन्होंने मुझे हरीश सगने से मिलवाया
0: जी जी।
1: और उनकी एक फिल्म आई थी 1921 जिसमें जरीन खान थी हीरोइन, और वो फिल्म भी बहुत अच्छी चली, हिट हुई पिक्चर, और उसके सारे गाने आप सुनेंगे, बहुत अच्छे गाने।
0: थोड़ा सा हम पीछे क्यों चलते हैं, 2004 में जब आपकी पहली फिल्म आई थी, तो वो फिल्म कैसे मिली आपको, पहली फिल्म तक आप कैसे गए? वो तेरा नाम था?
1: वो तेरा नाम था, बिल्कुल।
0: तो यहाँ मतलब फिल्मी दुनिया में आपका प्रवेश कैसे हुआ? हम तो एंटर कर चुके हैं, लेकिन आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि शायरी की दुनिया से फिल्मी दुनिया में एंट्री कैसे हुई आपकी?
1: ये बात तब की है, 2000 का जो सन है उससे पहले की बात है।
0: अच्छा,
1: तब मैं सूरत में रहता था
0: जी जी,
1: और सूरत से मैं बॉम्बे आता जाता था, पैसे जब तक होते थे यहाँ रहता था, पैसे खत्म होते थे फिर सूरत चला जाता था।
0: अच्छा।
1: फिर पैसे इकट्ठा करता था फिर आता था। तो इस आने जाने में मेरी मुलाकात दिलीप सेन समीर सेन से हुई।
0: हाँ,
1: दिलीप सेन से हुई, और दिलीप सेन के साथ मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। तो दिलीप सेन एक फिल्म कर रहे थे, उसके गाने रिकॉर्ड कर रहे थे सहारा स्टूडियो में, जुल्मी फिल्म थी, अक्षय कुमार
0: जी जी जी।
1: तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई यहाँ सहारा में आ जाओ और अपनी किताब लेके आना।
0: वहाँ तनवीर खान भी के
1: हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ तो मैं वहीं आ रहा हूँ।

0: के नाम था।
1: अच्छा
0: हाँ, तो एक शेर जो है वो कैप्शन के तौर पर नीचे था कि अब भी सोते में ऐसा लगता है,
1: अब भी सोते में ऐसा लगता है, क्या बात है,
0: सर के नीचे तेरी हथेली है।
1: ओह क्या बात है।
0: ठीक है, तो ये शेर और कुछ शेर उनको बड़े पसंद आए। उन्होंने कहा यार ये किताब मुझे चाहिए। मैंने कहा ये तो मैं दिलीप सेन जी के लिए लाया हूँ, आप मुझे एड्रेस दे दें तो मैं सूरत जाऊँगा, आपको भेज दूँगा। अच्छा, मैं उनको नहीं पहचानता था, वो मुझे नहीं पहचानते थे, जबकि तनवीर भाई ने बहुत सारे फिल्मों के डायलॉग, बड़ी कामयाब फिल्मों के डायलॉग लिख चुके थे। इस फिल्म के डायलॉग राइटर भी वही थे। तो मैंने वो किताब उनको सूरत जाके भेजी और वो किताब पढ़ के इतने इम्प्रेस हुए, वो किताब वो मेरी शायरी दोस्ती का जरिया बनी।
1: ओह क्या बात है,
0: तो हमारी दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको फिल्मों में काम करना है तो आपको बॉम्बे आना पड़ेगा, मुंबई में रहना पड़ेगा आपको। अब मैं डरता था कि मैं कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा, कैसे सरवाइव करूँगा, इसलिए मैं लेट हो रहा था मुंबई आने में। लेकिन फिर मैंने सोचा यार एक ना एक दिन तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा, तो आज ही क्यों ना उठाया जाए। और इनसे मुझे बड़ी उम्मीदें थी तनवीर साहब से, क्योंकि ये बड़ी फिल्मों के डायलॉग राइटर होते थे।
1: जी जी,
0: तो एक जरिया था। तो मैं सूरत से मुंबई आ गया 2001 फरवरी में
1: जी।
0: और फिर तनवीर भाई के साथ घूमना फिरना, उनके सेट पे जाना, शूटिंग में जाना, ये सब मीटिंग में उनके साथ जाना, ये सब हो रहा था। उसी ज़माने में रूप भाई से मुलाकात मेरी थी
1: जी।
0: तो ये दो लोग थे जिनसे मेरी उम्मीदें जुड़ी थी। तो रूप भाई मेरे गाने कंपोज कर रहे थे। अच्छा, दोनों से एक दूसरे के बारे में मैं बात करता था। मैं इनसे कहता था भाई रूप भाई को सुन लीजिए, मेरे गाने उन्होंने कंपोज किए हैं। अरे मैं सुन के क्या करूँगा, मैं ना डायरेक्टर हूँ ना प्रोड्यूसर हूँ। तब वो डायरेक्टर नहीं बने थे, बाद में डायरेक्टर भी बने। तो ये जो फिल्म थी वो तेरा नाम था, इसके वो डायलॉग लिख रहे थे और इस फिल्म के डायरेक्टर थे कुकू कोहली जी और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे बहुत बड़े आदमी, अलग बिजनेस से, रेमंड के मालिक विजयपत सिंघानिया साहब, उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की थी। तो बड़े लोग बना रहे थे पिक्चर। अमरीश पुरी साहब का इसमें बहुत बड़ा किरदार था, फिल्म उन्हीं की थी सच पूछो तो, बाकी दो लड़के और दो लड़कियां थी उसमें। तो उन्होंने कहा कि भाई रूप भाई को फ़ोन करो, उनको बुलाओ, मैं सेटिंग कराता हूँ कुकू जी के साथ, फिल्म कर रहा हूँ मैं। तो मैंने फ़ोन किया रूप भाई को, तो उन्होंने कहा कि मैं तो स्विट्ज़रलैंड या ऑस्ट्रेलिया में कहीं थे वो, मैं तो यहाँ हूँ। अरे मैंने कहा कि भाई ये सेटिंग करनी थी तो कब आएंगे, तो कुछ 15-15 दिन बताया कि बाद आऊँगा। तो खैर जब तक वो आते तब तक उस फिल्म के कई गाने दिलीप सेन, समीर सेन जी ने रिकॉर्ड कर लिए थे और वो गाने लिखे थे निदा फाजली साहब ने। अब जब रूप भाई आए तो हमारी सेटिंग शुरू हुई, तो उनके पास एक गज़ल थी कतील शिफाई साहब की, जिसकी झनकार में दिल का आराम था वो तेरा नाम था।
1: क्या बात है,
0: तो वो तेरा नाम था इसी गज़ल से लिया गया था।
1: ओ अच्छा, क्या बात है भाई, अच्छी दिलचस्प कहानी।
0: हाँ मतलब पहले से कुछ नाम भले रहा हो पिक्चर का, लेकिन जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ ये गजल, तो वो तेरा नाम था कतील शिफाई साहब की गजल से लिया गया। ये नहीं कि गजल बाद में, गाना बाद में बना
1: जी,
0: पहले जो है गाना आया उसी में से नाम निकाला गया। जैसे मदहोशी थी उसका नाम मुमकिन था।
1: अच्छा
0: हाँ, मदहोशी के डायरेक्टर तनवीर खान साहब थे, राइटर डायरेक्टर, उसका नाम मुमकिन था। जब हमने ये गाना रिकॉर्ड किया मदहोशी, तो इंदर कुमार साहब थे उसके प्रोड्यूसर, उनकी वाइफ थी और उनके साले, तो इंदर कुमार साहब ने कहा कि यार इसका नाम बदल दो, मदहोशी कर दो, ये जो गाना रिकॉर्ड किए हो ये टाइटल सॉन्ग बन जाएगा। तो इस तरह से मुमकिन हटा के मुमकिन नाम से उसका प्रचार भी शुरू हो गया था, बाद में वो मुमकिन हटा के मदहोशी किया गया। तो इस तरह से वो टाइटल आया वो तेरा नाम था। फिर उसमें मेरे दो गाने लिए गए और उसमें कतील शिफाई साहब का भी गाना है, निदा फाजली साहब का है, मतलब दो बड़े शायर और गीतकारों के साथ मेरी शुरुआत हुई फिल्म में। उसमें एक गाना था जो मेरी जिंदगी का पहला गाना, वो ये था कि सुबह हो रही है, भोपाल का माहौल है, 1947 मुल्क आज़ाद हुआ है और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जा रहा है। ये उस टाइम की कहानी थी और समद खान कोई वहाँ के बड़े क्लासिकल सिंगर थे। तो सुबह हो रही है और

0: पूरा उस जमाने की एक्टिविटी थी वो सब हो रहा है, और समद खान वो छत पे रियाज कर रहे हैं अपने महल के, और उनकी बेटी जो फिल्म की हीरोइन है वो कहीं वादियों में गा रही है। तो ये सिचुएशन थी
1: जी,
0: और फिल्म इसी गाने से शुरू होती है। तो वो मैंने लिखा था, मुझे पसंद है वो जी, जो राइटिंग है, और वो गाना इतना मतलब अलका जी ने गाया उसको और उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने अपनी माता जी को फ़ोन करके बुलाया और उनको सुनाया कि देखो आज भी ऐसे गाने लिखे जाते हैं। फिर वो गाना रिकॉर्डेड रूप भाई ने ले जाके लता जी को सुनाया, है ना दीदी, मैंने ये मेरी पहली फिल्म शुरू हुई है ये गाना रिकॉर्ड किया मैंने। तो उन्होंने गाना सुना लता जी ने, तो डांटा उन्होंने प्यार से
1: कि मुझे,
0: अरे ये गाना तो मेरा था, तूने मुझसे क्यों नहीं गवाया।
1: बड़ा कॉम्प्लीमेंट था।
0: हाँ, तो ये गाने में जो एक तो कंपोजिशन और दूसरे जो इसके लिरिक्स हैं के पूरे साहित्यिक, उसका मैं मुखड़ा सुनाता हूँ आपको
1: जी।
0: सुबह हुई दिन निकल रहा है, सुबह हुई दिन निकल रहा है, नदी के तट पर नहा के सूरज सुनहरे कपड़े बदल रहा है।
1: क्या बात है,
0: सुबह हुई दिन निकल रहा है।
1: वाह, बहुत
0: आपके उदयपुर के रेडियो स्टेशन पर ये सुबह इसी गाने से होती है, डेली ये गाना बजता है।
1: हम यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए?
0: मधोशी का टाइटल सॉन्ग सुना दे, मधोशी है मधोशी है।

0: शकील साहब, एक बहुत ज़रूरी सी बात है और आपकी करियर में भी बहुत ये उम्दा बात है, ख़ास बात है। अपने श्रोताओं को बता दें कि आपने कहीं बहुत सारी जगहों पर, आपके बारे में पता है कि बहुत ऊंचे दर्जे की तालीम नहीं ली, स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला आपको, लेकिन एक ऐसी तालीम है जो आपके भीतर आपने खुद से ली होगी। राम के वनवास पर आपकी बहुत सारी नज़्में हैं, जिस पर किताब भी आई है और जिसका आप अक्सर जिक्र करते हैं, तो ये कहाँ से आइडिया आया, कहाँ से खोज की आपने, इतने बड़े फलक पर आपने कैसे कुछ कोशिश की, बताइए।
1: मेरी उर्दू में 8 किताबें हैं।
0: जी
1: मैं साहित्य से, उर्दू साहित्य से ही फिल्मों में और मंचों पर आया। 20 साल तक मैंने सिर्फ साहित्य लिखा, साहित्य के मैगजीन में छपता रहा। मैं बाद में इधर आया फिल्मों की तरफ और मंचों की तरफ। तो ये जो काम है मेरा, ये मैं जंगल पर लिख रहा था, जंगल पर लिख रहा था, और लिखते लिखते उसी दरमियान उर्मिला का जो किरदार है वो कहीं से मेरी ज़िंदगी में आया। उर्मिला जो लक्ष्मण की बीवी है, लक्ष्मण की जो पत्नी
0: जी,
1: है, उस किरदार ने मुझको झकझोर के रख दिया, मुझे हिला दिया उस किरदार ने, उसके बलिदान ने, उसके कुर्बानी ने।
0: कि वनवास होता है लक्ष्मण को 14 वर्ष।
1: हाँ, और अहिल्या, ये दो ऐसे किरदार हैं जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत बेचैन किया मुझे। और उसी ज़माने में जब मैं अहिल्या के दर्द से दो चार था, उसको जी रहा था, और जब ये नज़्म हुई उर्मिला, जब ये नज़्म मैं लिख चुका, तो मुझे लगा कि यार जो रामायण है
0: जी,
1: वो पूरी घटना जो है वो जंगल में है, वनवास जो राम जी का है 14 बरस का, तो क्यों ना रामायण के किरदारों पर नज़में लिखी जाएं। तो मेरी जो रामायण है वो वाल्मीकि जी से लेके अब तक जितनी भी रामायणें लिखी गई हैं, तुलसीदास की जी, हाँ, तो और भी हमारे दूसरे लोगों ने लिखी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी का काम है इस उर्मिला पे,
0: उर्मिला सखी वे मुझसे
1: हाँ
0: कहकर
1: हाँ
0: जाते,
1: हाँ हाँ
0: बहुत बढ़िया।
1: तो सभी ने मतलब कहानी के माध्यम से कहानी कही है। मैंने एक नया रास्ता निकाला, पात्रों के जरिए से, किरदारों के जरिए से मैंने रामायण कही है, मैंने कहानी। तो मैंने तकरीबन सभी किरदारों पर नज़में लिखी, एक के बाद एक, जीता गया और लिखता गया, इस तरह से वो पूरी एक अलग सी रामायण हुई। और पहले मैंने उसका नाम सोचा था जंगल यात्रा, उस किताब का, क्योंकि जंगल पे काम कर रहा था मैं, तो उस किताब का एक बड़ा हिस्सा जंगल भी है, रामायण और जंगल दोनों हैं उसमें, तो वो मेरे लेखन क्षेत्र में आता था, मेरा जो टॉपिक था जंगल उसमें वो वनवास आता था वो। तो जब ये रामायण उसमें शामिल हो गया, तब मुझे, मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसका नाम वनवास रख दिया जाए, उससे बेहतर क्या नाम हो सकता है, अगर जंगल पर किताब है, रामायण पर किताब है, तो वो जो है इस तरह से उसका नाम वनवास रखा गया। और वो किताब इतनी सराही गई है, उर्दू में उसको कई अवार्ड मिले, और उर्दू के जितने भी बड़े क्रिटिक्स और पोएट हैं उर्दू साहित्य में, तकरीबन सभी ने उस किताब पर आर्टिकल्स लिखे हैं, लेख लिखे हैं, मजामीन लिखे हैं। तो किताब पर किताब का आ जाना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब उस किताब पर इतने आर्टिकल लिखे गए कि वो अलग से एक किताब आई है, उसको प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब हैं जो जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उर्दू के, उन्होंने वो किताब कंपाइल की है।
0: क्या बात है।
1: हाँ, तो इस तरह से उस किताब पर किताब आई, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान के राइटरों को भी उस किताब ने बहुत इम्प्रेस किया। वहाँ पर एक बड़े राइटर थे, अभी उनकी डेथ हुई है, जो फिल्म के भी राइटर थे, साहित्य के भी थे और मंचों के भी थे, जिस तरह हमारे यहाँ जावेद साहब हैं, गुलजार साहब हैं, इस तरह का वो नाम थे, अमजद इस्लाम अमजद साहब, अभी इंतकाल हुआ उनका, उन्होंने इस पर आर्टिकल लिखा है।
0: जी।
1: और किस तरह से मतलब हिंदू मैथोलॉजी और रामायण को लेके जो उनकी मालूमात थी वो भी कमाल है, वो जो लिखा है उन्होंने, बहुत अच्छा लिखा है। ये किताब हिंदी में जब आई तो पिछले 3 सालों से बेस्ट सेलर है, कविता की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में एक है ये।
0: क्या बात है।
1: पिछले 3 साल से लगातार, और अभी को दैनिक जागरण ने बेस्ट सेलर अवार्ड दिया गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथ से मुझे।
0: क्या बात है,
1: तो हाँ बहुत शुक्रिया
0: और बहुत बढ़िया बात कही है। और आपके मुशायरों का जिक्र तो हुआ, शुरुआती मुशायरों का, लेकिन बाद के मुशायरों में हमने खुद देखा है, मेरी खुशनसीबी है कि हमने आपको खुद देखा है और कलिंगा फेस्टिवल में देखा, प्रयागराज में हमने आँखों से देखा था जहाँ अनुभव सिन्हा जी भी उपस्थित थे, और आपकी जो शायरी थी वो आपके ख़जाने से निकल रही थी और पूरा हॉल खचाखच भरा था। ऐसे तमाम अनुभव हैं, तमाम वाक्यात हैं जिनकी की बातें हम आपसे और फिर कभी करेंगे। आज तो बस इतना हम कहना चाहते हैं, धुआं धुआं है फजा, रोशनी बहुत कम है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है, आपके ही अल्फाज हैं। आप क्या कहेंगे, आप विविध भारती के श्रोताओं को क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे चलते चलते?
1: मैं यही कहूँगा कि अभी आपने जो सुनाया है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है, तो प्यार बहुत ज़रूरी है। और दुनिया में कुछ भी हो जाए, ये जो मोहब्बत का जज्बा है ये हमेशा बड़ा रहेगा, बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। तो मोहब्बत कीजिए, सबसे पहले तो खुद से मोहब्बत कीजिए।
0: कुछ शायर अंदाज में आप कहे, एक शायर से हम उम्मीद करते हैं शायरी में ही कुछ बोले शेर के साथ
1: जी,
0: कोई अशार।
1: मैं अभी इधर एक नई गजल कही है मैंने, उसके दो तीन शेर सुना देता हूँ, और उसमें एक शेर है खास तौर से उसके लिए मैं ये शेर सुना रहा हूँ कि उसमें ये भी एक शेर है, सीख है कि भाई ठीक है ऊंच नीच होती है, कुछ हमारे अलग अलग सोच होती है, लेकिन उस सब को हटा के आगे की तरफ बढ़ते रहो।
0: क्या बात है,
1: मोहब्बत करते रहो। कि आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ, आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ।
0: क्या बात है,
1: मैं हो गया हूँ उसका वो मेरा नहीं हुआ।
0: वाह वाह वाह,
1: मैं हो गया हूँ उसका वो मेरा नहीं हुआ। वो शेर ये है जो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है वो आप आगे बढ़ें, सांपों को मैंने रहने दिया उनके हाल पर।
0: क्या बात है,
1: सांपों को मैंने रहने दिया
0: उनके हाल पर,
1: उनके हाल पर, मंत्र भी सीख कर मैं सपेरा नहीं हुआ।
0: वाह वाह वाह,
1: ठीक है, मैंने उसे बदला नहीं लिया, मैंने मंत्र आता था मुझे, लेकिन ठीक है यार, तुम तुम्हारे रास्ते मैं अपने रास्ते। इसका एक शेर आखिरी खास तौर से कि देखिए ज्ञान जो है ना
0: जी,
1: शायरी में ज्ञान की बहुत जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आपके पास ज्ञान भी होता है अलग अलग, तो वो शेर में आता है रचना के तौर पर, रचनात्मक तौर पर आता है, तख्लीकी तौर पर, तो बहुत असर करता है। तो एक महाभारत का एक इल्म है, एक ज्ञान है जो इस शेर में आता है, मैं सुनाता हूँ। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है।
0: क्या बात है, ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है। वाह,
1: ये सीख है हम सबके लिए, ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है
0: जी।
1: लड़ते रहो शकील, अंधेरा नहीं हुआ।
0: क्या बात है, वाह वाह वाह। तो अब अपने श्रोताओं से, हमारा तो दिल नहीं कर रहा है कि हम इजाजत लें, और लग रहा है कि आपसे गुफ्तगू जारी रहे, और बहुत सारी अभी बातें हैं जो बाकी हैं आपसे पड़ताल करनी। आजमगढ़ जैसे छोटे से शहर से आप मुंबई जैसे महानगर में आकर और इतना नाम रोशन किया है, शायरी की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में आपने नाम रोशन किया है, इसके लिए आपको पूरे विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद हम दे रहे हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब। नमस्कार,
1: ममता जी।
2: जानी मानी शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अनंत कुमार। भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने मंगलुरु तट के पास एक समुद्री खोज और बचाव अभियान में मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माथा से 6 मछुआरों को बचाया है। बल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि कल खराब मौसम में इस नौका को नुकसान पहुंचने और उसमें पानी भर जाने के बाद सभी जीवित बचे लोगों को रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से बचाया गया। बल ने बताया कि जीवित बचे लोगों को चिकित्सा सहायता और स्थानीय अधिकारियों को सौंपने के लिए न्यू मंगलुरु लाया जा रहा है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में

0: हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: चार दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल धीरज सेठ ने 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी चार दशकों से अधिक समय तक राष्ट्र सेवा के बाद आज सेवानिवृत्त हो गए हैं। जनरल सेठ पुणे स्थित खड़कवासला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं और दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन प्राप्त किया था। लगभग चार दशकों की अपनी विशिष्ट सैन्य सेवा में उन्होंने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत क्षेत्रों में व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सुदृढ़ अर्थव्यवस्था ही मजबूत रक्षा क्षमताओं की नींव है। गुजरात के वडोदरा में आज वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरेगा। भारत ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप पीड़ित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने चिकित्सा सहायता और आपात सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल चालू है और आपदा में घायल हुए लोगों को चिकित्सा देखभाल प्रदान कर रहा है। दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी BLO 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की दो प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। जर्मनी फीफा फुटबॉल विश्व कप से बाहर हो गया है। बोस्टन में नॉकआउट चरण में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनाल्टी शूटआउट में जर्मनी की ये पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 101.8 MHz पर शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित व अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद आप सुनते हैं भजन संध्या कार्यक्रम। युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युवमंच सुनिएगा शाम 5:30 पर। शाम 6 बजे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। सफर सुहाने, गाने नए पुराने, जी हाँ, इस कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:05। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिएगा शाम 6:30 पर। शाम 7 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे। शाम 7:05 पर आकाशवाणी दिल्ली से आईसीसी वीमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल 1 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्ट इंडीज क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल हमारे केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

जी हाँ, ये अनुप्रसारण रहेगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। जी हाँ, मैच का आंखों देखा हाल मैच समाप्ति तक आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं। इस दौरान शाम 7:45 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और 9:00 News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। समाचारों के बाद ICC वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल एक ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्ट इंडीज के मध्य खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल हमारे केंद्र से आप सुन सकते हैं समाप्ति तक। और ये अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। रात्रि 11:00 हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। ये थी कार्यक्रम रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित व अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:10 होने को हैं, जी हाँ, और ये वक्त है आज के भजन संध्या कार्यक्रम का। भजन संध्या कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। जी हाँ, आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त अंजू शर्मा। कार्यक्रम में करते हैं पहाड़ी भजनों की शुरुआत करनाल राणा के गाए इस भजन के साथ।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम
2: और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम।
3: पर दादी आपके नाम?
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो
5: क्या
6: आरबीआई कहता है।
7: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
8: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
9: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही है। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य स्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
10: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
7: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: भजन संध्या कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। भजनों के क्रम को आइए अब आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं जोगिंदर बल्ला की गाई हुई माता रानी की ये भेंट।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जी हाँ, शेर सिंह के गाए इस पहाड़ी भजन के साथ ही अब आज का भजन संध्या कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रही हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युवमंच।

गुड इवनिंग फ्रेंड्स जी, आज के युवमंच कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त अंजू शर्मा। और आज भी बहुत सारी जानकारियां और गीत हम आपके समक्ष लेकर हाजिर हुए हैं। जी हाँ, युवा साथियों का अपना कार्यक्रम है तो कुछ जोश, कुछ जुनून और कुछ जिद तो होती ही है अपने लक्ष्य को पाने की। और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते में जो भी अड़चनें आती हैं उसको हमारे युवा साथी एक चैलेंज, एक चुनौती की तरह लेते हैं। और जब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं ना, तब भी वो अपने लक्ष्य के साथ और आगे बढ़ते जाते हैं, अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करते जाते हैं। और यही हमारे भारतीय युवाओं की पहचान भी बनती है और उनका नाम जो है वो देश विदेश हर जगह इस नाम से जाना जाता है कि भारतीय युवा जो होते हैं ना वो बहुत ही जोशीले होते हैं और साथ के साथ वो जिस काम को करने का भी बीड़ा उठाते हैं उसको पूरा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज एक विशेष अवसर है, इसकी जानकारी हम आपको ज़रूर देंगे। लेकिन इससे पहले एक गीत सुन लेते हैं, अपने आप को उस जोश के लिए तैयार कर लेते हैं और उसके बाद एक विशेष कार्यक्रम हम आपके समक्ष लेकर हाजिर होते हैं। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
4: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
3: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
5: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
6: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
5: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
7: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
5: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
7: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
5: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
8: जी श्रोताओं, युवा साथियों, इस म्यूजिकल कम कमर्शियल ब्रेक के बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि आप भी जानते हैं कि इन दिनों मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सप्ताह। जी हाँ, वैश्विक स्तर पर खेल, स्वास्थ्य और एकजुटता को बढ़ावा देने वाले ये बेहद महत्वपूर्ण आयोजन है। ये हर साल 23 जून के या फिर उसके आसपास पूरे सप्ताह को हम ओलंपिक सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि समाज के हर वर्ग को खेलों से जोड़ा जा सके। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सप्ताह के पावन अवसर पर जागरूकता दौड़ का आयोजन साइंस स्पोर्ट्स सेंटर ग्राउंड अणु से चिल्ड्रन पार्क हीरा नगर हमीरपुर तक किया गया। जी हाँ, और नारा था, लेट्स रन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, फिट इंडिया, हेल्दी इंडिया। और इस आयोजन के मुख्य अतिथि माननीय सांसद एवं अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ओलंपिक संघ श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस जागरूकता दौड़ के शुभारंभ के अवसर पर संबोधित करते हुए कहा

0: खेलेगा युवा,
1: खिलेगा।
0: हमीरपुर के लोकप्रिय विधायक माननीय अशीष शर्मा जी, आज इतना सफल आयोजन यहाँ पर हुआ है, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत ये जितने हमारे नागरिक यहाँ पर खड़े हैं या नेता अगर खड़े थे, एक बार तालियां हमारे खिलाड़ियों के लिए बजाओ भाई। आखिरकार ये दौड़ क्यों? ओलंपिक भी इसलिए मनाया गया ताकि युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित किया जा सके, खेलों में भागीदार बनाने के लिए निमंत्रण दिया जाए। और जब आप लगभग 990 से ज्यादा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुई है और आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए भागने के लिए, जब आप इस दौड़ में भागेंगे तो केवल आप नहीं भागेंगे, ये मीडिया के मेरे मित्र आपको कैप्चर करेंगे, अपने चैनल्स पर दिखाएंगे, कोई सोशल मीडिया की रील्स बनाएगा। और जब आप सड़कों पर भाग रहे होंगे और आप छोटे छोटे बच्चे युवा देखेंगे तो उनमें से बहुत सारे लोग इंस्पायर होके वो भी खेल मैदान की ओर आएंगे, कोई ना कोई स्पोर्ट पिक करेंगे और खेलों में अपना भविष्य तराशने का प्रयास करेंगे। आप लोग बहुत सारे लोगों को इंस्पायर आज करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को फिटनेस का डोज देने के लिए तैयार हुआ, जो पूरा दिन स्कूल कॉलेज में अपना समय लगाने के बाद इस बात का इंतजार करते हैं कि मुझे कब ग्राउंड जाने का मौका मिलेगा, कब प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। वो मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं, हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और आप जैसे युवा खिलाड़ी ही हिमाचल प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। साथियों, ग्राउंड भी बहुत साल पहले, अब तो लगभग 20 साल होने को आए होंगे, उस समय थोड़ा छोटा था, बहुत छोटा था, तो हमने कुमार धूमल जी से, उस समय मुख्यमंत्री थे, कि प्रदेश में कोई भी सिंथेटिक टर्फ नहीं है। और उस समय उन्होंने सिंथेटिक ट्रैक हमें बनाकर दिया, यहां से बहुत सारे खिलाड़ी जिला प्रदेश और देश के लिए भागी रोशन किया। फिर हमें लगा इसके साथ साथ इंडोर गेम्स की सुविधाओं की जरूरत है, तो ये इंडोर स्टेडियम का भी शिलान्यास और फंड उन्होंने ही दिया था, लेकिन उनकी सरकार धूमल जी की चलेगी तो उसके बाद लंबे समय तक कुछ नहीं यहां पर हुआ, लेकिन फिर भी एक्टिविटीज नहीं थी। तब हमने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मंजूर करवाया ताकि लगभग 6 गेम्स को चुना जाए जहां पर हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को अच्छे कोचेस के माध्यम से ट्रेनिंग दी जा सके। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज जितने भी बच्चे यहां पर अलग अलग गेम्स में ट्रेनिंग कर रहे हैं, मात्र 2-3 सालों के अंदर कोई सेंटर नेशनल लेवल के चैंपियन खिलाड़ी पैदा कर दे या तैयार कर दे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमीरपुर ने करके दिखाया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये कोचेस की मेहनत है तो उससे ज्यादा हमारे खिलाड़ियों का प्रयास है। खिलाड़ी के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, कोच तो सबके लिए एक बराबर है, लेकिन वो इंडिविजुअल एफर्ट आपकी कितनी है, आप खुद कितने तैयार हैं पसीना बहाने के लिए, आप खुद कितने तैयार हैं दूसरे से ज्यादा मेहनत करने के लिए, आप खुद कितना तैयार है इस छोटे ग्रुप की बजाय पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों से लोहा लेने के लिए, आप खुद अपने आप को मेंटली फिजिकली और टेक्निकली ट्रेन करते हो कि आपको जो अंदर की चुनौतियां हैं उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। दैट ट्रेनिंग प्रोसेस मस्ट गो ऑन इन योर माइंड। अगर आप यहां से अपने आप को तैयार नहीं करते तो ग्राउंड में जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर ली थी, जब मैच आता है तब आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं निकल सकती। वो प्रेशर जो मैच का है, वो टीम गेम में जो एक दूसरे के साथ कमजोरी को समझना बहुत जरूरी है, वो टीम गेम में ही देखने को मिलता है। और मुझे यहाँ के कोचेस ने बताया कि वो सोचते हैं स्कूल गए होंगे, कॉलेज गए होंगे, लेकिन उनके समय से पहले यहाँ के खिलाड़ी पहुंचते हैं और घर जाने के लिए भी कहते हैं अब तो और ट्रेनिंग करवा दो, हम इससे ज्यादा मेहनत, ये हमारे यहाँ के खिलाड़ियों की ताकत है।
2: जी हाँ, हमारे देश का युवा अगर किसी भी बात को करने का ठान लेगा ना, तो वो उसको करके रहता है। और इस बार की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सप्ताह की थीम भी यही है कि यू कैन डू दिस, लेट्स मूव, यानी तुम ये कर सकते हो, आओ कदम बढ़ाएं। इस वर्ष की थीम का मुख्य फोकस युवाओं के मन से झिझक को दूर करना है। वर्तमान में जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इसके बावजूद शारीरिक सक्रियता में विशेषकर युवाओं को हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर ये वैश्विक अभियान चलाया जा रहा है, ताकि हर व्यक्ति रोज़ अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा समय निकाले। ओलंपिक रिंग्स के संदेश की अगर हम बात करें, तो ओलंपिक सप्ताह के दौरान दिखने वाले 5 रंगीन छल्ले, जो कि नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग के हैं, ये पूरी दुनिया की एकजुटता को दिखाते हैं। सन 1913 में पेरे डी कोबट्रिन द्वारा डिज़ाइन किए गए ये रिंग्स दुनिया के 5 प्रमुख महाद्वीपों अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया के आपसी जुड़ाव और शांति का प्रतीक हैं। जी युवा साथियों, इस सप्ताह में जो मेन बातें रहती हैं, जो 3 सिद्धांत रहते हैं, उनकी बात भी हम आपके साथ ज़रूर करना चाहेंगे। जी हाँ, गतिशीलता यानी मूव, इसका उद्देश्य लोगों को शारीरिक रूप से सक्रिय करना है। उम्र, जेंडर या एथलेटिक्स क्षमता की परवाह किए बिना हर किसी को किसी न किसी खेल गतिविधि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दूसरा सिद्धांत है सीखना यानी लर्निंग। इस स्तंभ के तहत खेलों के जरिए समाज में शिक्षा, नागरिकता और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है। खेल के मैदान पर और उससे बाहर भी नैतिक मूल्यों को सीखने पर जोर दिया जाता है। और तीसरा सिद्धांत है खोज करना यानी डिस्कवर। लोगों को ऐसे नए खेलों और गतिविधियों को आजमाने का मौका देना है जिसे उन्होंने ना कभी पहले खेला होता है, लेकिन फिर भी जब वो खेलने लगते हैं तो वो असाधारण प्रतिभाशील बनकर दुनिया में अपना नाम चमकाते हैं। युवा साथियों, ओलंपिक सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा खेल मंच नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी पाठशाला है जो एक साधारण युवा को असाधारण इंसान में बदल देती है। जब कोई युवा ओलंपिक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का सपना देखता है या उसमें भाग लेता है ना, तो उसके जीवन का हर एक पहलू, चाहे वह शरीर हो, मन हो या उसका भविष्य, एक सकारात्मक बदलाव से गुजरता है। शारीरिक बदलाव की अगर हम बात करें, तो इसके साथ असाधारण फिटनेस और अनुशासन बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, ओलंपिक की तैयारी किसी भी युवा को शारीरिक रूप से उसके उच्चतम स्तर यानी पीक परफॉर्मेंस पर ले जाती है। शारीरिक क्षमता के विकास की अगर हम बात करें, तो सालों की कड़ी ट्रेनिंग से युवाओं की सहन शक्ति, ताकत और फुर्ती आम लोगों से कई गुना बेहतर हो जाती है। साथ ही अनुशासित जीवन शैली भी बन जाती है। जी हाँ, एथलीटों को अपनी डाइट, सोने के समय और रिकवरी का कड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये अनुशासन उनके शरीर को दीर्घायु और गंभीर बीमारियों से मुक्त रखता है। साथ ही चोटों से उबरने की क्षमता भी उनके अंदर जो है वो आती है। वैज्ञानिक ट्रेनिंग के कारण युवाओं का शरीर अंदरूनी रूप से इतना मजबूत हो जाता है कि किसी भी शारीरिक तनाव या चोट से बहुत जल्दी उबर यानी रिकवर हो जाता है। मानसिक बदलाव की अगर हम बात करें, तो चट्टान जैसा आत्मविश्वास और लचीलापन जो है, ये बहुत ही अच्छा एक अनुभव युवाओं को होता है। खेलों में जीत से ज़्यादा हार का सामना भी कई बार करना पड़ता है, और यही हार युवाओं को मानसिक रूप से फौलादी बनाती है और दोबारा उन गलतियों को ना दोहराने का एक संकल्प भी दिलाती है। तभी तो कहते हैं कि अगर सिर्फ जीतते ही रहें तो आपको पता नहीं चलता है कि हार क्या होती है, लेकिन जब हार का सामना करना पड़ता है ना, तो अपने अंदर जो इच्छा शक्ति है, अपने जो जोश और जुनून को आप प्रदर्शित कर सकते हैं ना, वो हार के बाद ही दोबारा उठकर जब दोबारा से अपने लक्ष्य को साधने का संकल्प युवा साथी लेते हैं ना, तो ये सारे अनुभव उनके साथ होते हैं। इससे मानसिक लचीलापन आता है। जैसे ओलंपिक स्तर पर दबाव में खेलना युवाओं को तनाव प्रबंधन सिखाता है, वे जीवन के बड़े से बड़े संकट में भी शांत रहना सीख जाते हैं। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की जब हम बात करते हैं, तो जब युवा साथी वैश्विक मंच पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उसका आत्मसम्मान जो होता है एक नए आयाम, नए स्तर पर हो जाता है। ये विश्वास जीवन के हर क्षेत्र में झलकता है। और एकाग्रता की जब हम बात करते हैं तो युवा साथियों, सेकंड के 100वें हिस्से से हार जीत तय होने वाले इस मंच पर युवाओं को लेजर शार्प फोकस विकसित करना पड़ता है, जो आपकी निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है। और युवा साथियों, इसके आर्थिक फायदों की अगर हम बात करें तो स्थिरता, सम्मान और सुनहरे अवसर तो मिलते ही हैं। जी हाँ, आज के दौर में ओलंपिक में भाग लेना या पदक जीतना एक युवा की पूरी आर्थिक स्थिति को बदल सकता है। पदक विजेताओं और ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सरकार जैसे खेल मंत्रालय, रेलवे, सेना और निजी कंपनियों द्वारा करोड़ों रुपए के नकद पुरस्कार और उच्च पदों पर सरकारी नौकरियां भी दी जाती हैं। स्पॉन्सरशिप और ब्रांड एंडोर्समेंट भी होता है। जी हाँ, ओलंपिक एथलीट युवाओं के लिए रोल मॉडल बनते हैं, जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें अपने ब्रांड का चेहरा बनाती है। ये उनके लिए कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया बनता है और भविष्य की सुरक्षा भी इसके साथ होती है। कई देशों में ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए आजीवन पेंशन, मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं और उनके बच्चों के शिक्षा के लिए भी विशेष प्रावधान होते हैं। युवाओं को तैयारी के समय अपने अंदर सजगता और सटीकता, विश्व नेट जो वैश्विक नेटवर्क है और उसका एक्सपोजर है, वो भी उनके सामने आता है। तो युवाओं के लिए आज के इस अवसर पर हम यही संदेश देंगे कि ओलंपिक का महत्व सिर्फ मेडल जीतना नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया में एक बेहतर इंसान बनना है। जी हाँ, खेल को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ओलंपिक भावना के साथ जैसे एक्सीलेंस, फ्रेंडशिप और रिस्पेक्ट को अपने जीवन में उतार कर हर युवा एक विजेता बन सकता है। चुनौतियों से ना डरें। ओलंपिक ये सिखाता है कि हार केवल एक फीडबैक है, अंत नहीं। मैदान पर गिरने के बाद उठने की कला ही आपको जीवन में कामयाब बनाएगी। और इसलिए तो कहते हैं युवा साथियों के खेल के मैदान में उतरिए, चाहे वह कोई भी खेल हो। वहां से मिला अनुशासन और जज्बा आपके जीवन को उस ऊंचाई पर ले जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जी युवा साथियों, और इसके साथ ही अब कार्यक्रम में थोड़ा सा समय बचता है, एक और गीत आपके रेडियो सेट्स पर भेज रही हैं।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
4: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
3: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।
5: जी युवा साथियों, इस म्यूजिकल कम कमर्शियल ब्रेक के बाद अब आज का युवमंच कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अपनी रेडियो दोस्त अंजू शर्मा को दीजिए इजाजत। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने देशभर में दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट और भूस्खलन संभावित सड़कों की पहचान की है और 50,000 करोड़ रुपए की लागत से सुधार कार्य शुरू किए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि उचित साइंस, लेन मार्किंग और अंडरपास सहित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सड़क इंजीनियरिंग सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। उन्होंने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने में जनता की अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। गडकरी ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने, तेज गति से वाहन न चलाने, हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने, लेन अनुशासन बनाए रखने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करने का आग्रह किया। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज शिमला स्थित लोक भवन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लाभार्थियों को कृत्रिम अंग प्रदान किए। उन्होंने गैर सरकारी संगठन एक्ट ह्यूमन द्वारा राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी के सहयोग से आयोजित कृत्रिम अंग वितरण शिविर का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने दिव्यांगजनों के सहयोग के लिए संस्था द्वारा चलाए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन किसी से कम नहीं है और हर व्यक्ति में अपार क्षमता व शक्ति होती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया है। उन्होंने आज ऊना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान के समापन अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अनुराग ठाकुर ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया। इस मौके पर अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई।
1: 2014 में मात्र 7 राज्यों में हमारी सरकारें थी। आज 2026 में 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। इसलिए हम कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करते हैं कि सत्ता एक सेवा का माध्यम कैसे है, सत्ता में रहकर सरकारी योजनाओं को धरातल पर लागू कैसे करें। कार्यकर्ता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इन्हीं कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर संगठन की और ताकत को बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं।
0: शिमला जिला प्रशासन द्वारा सब्जी मंडी, अनाज मंडी, लक्कड़ मंडी और ट्रांसपोर्ट गतिविधियों को शिमला शहर से बाहर स्थानांतरित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने शिमला में एक बैठक में बताया कि इसके लिए महली के समीप लगभग 300 बीघा भूमि का चयन किया गया है और आज अधिकारियों की एक टीम ने इस भूमि का निरीक्षण किया है। उपायुक्त ने कहा कि ये भूमि महली शोघी फोरलेन के समीप है, जिससे लोगों व आढ़तियों को यातायात की बेहतर सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, जल भराव और ओलावृष्टि से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। खरीफ सीजन के दौरान भी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हमीरपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में खरीफ सीजन में मक्की व धान की फसल का बीमा किया जा रहा है। हमीरपुर के कृषि उपनिदेशक डीडी शर्मा ने बताया कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। मक्की व धान की फसल बीमा के लिए 1,200 रुपये प्रति हेक्टेयर यानी 48 रुपये प्रति कनाल प्रीमियम तय किया गया है। प्रदेश के 7 जिलों में मॉनसून ने आज से दस्तक दे दी है। इनमें किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, शिमला, मंडी, सिरमौर और कांगड़ा जिला शामिल हैं। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि इन जिलों के अधिकतर क्षेत्रों में आज मॉनसून की वर्षा हुई है। उन्होंने कहा कि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और चंबा जिलों में मॉनसून के अगले 2-3 दिनों में दस्तक देने के आसार हैं। उन्होंने कहा कि अगले 3-4 दिनों में कुछ जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
2: तो आज 30 जून को प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मॉनसून का आगमन हो चुका है। इसमें अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो मॉनसून ने पूरे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर को कवर कर लिया है, साथ में डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति और कुल्लू को लगभग पूरा कवर है। केवल कुछ एक क्षेत्र शेष हैं डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति और कुल्लू के। शिमला और डिस्ट्रिक्ट मंडी के बहुत से क्षेत्रों में मॉनसून का आगमन हो चुका है तथा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का जो चूड़धार का एरिया जो शिमला का एडजॉइनिंग है और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का जो बड़ा बंगाल एरिया वहां पे मॉनसून का आगमन हो चुका है तथा परिस्थितियां अनुकूल है कि जो शेष हमारे डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा है और कांगड़ा का बहुत सारा क्षेत्र है, सोलन है, यहाँ पे आगामी 2-3 दिनों में मॉनसून का आगमन हो सकता है।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कुछ नए और कुछ पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने। सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त अंजू शर्मा। और दोस्तों, आज भी हम चलेंगे इस सफ़र में खूबसूरत तरानों के सफ़र पर। दोस्तों, कहते हैं कि रास्ते तब और खूबसूरत हो जाते हैं जब सुरों की महफिल साथ हो, और आज फिर हम लेकर आए हैं आपके इस पसंदीदा शो में कुछ नए और कुछ पुराने फिल्मी गीत। और आज के इस सफ़र में हम सिर्फ मील के पत्थर पार नहीं करेंगे, बल्कि यादों की गलियों से भी गुजरेंगे, जहां की शोरदा की सादगी भी होगी और अरिजीत सिंह की दीवानगी भी होगी। तो थाम लीजिए अपने दिल को और बांध लीजिए अपनी सीट बेल्ट, क्योंकि सुरों की ये गाड़ी अब रफ्तार पकड़ने वाली है।

0: आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स है, आप सभी आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से एचआईवी फैलने की बात लिखी है
2: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी हो सकता है।
3: मल्टीपल पार्टनर्स यानी कि एचआईवी का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें हम भी इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाऊं, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखो।
4: एचआईवी एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें।
5: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जारी।
6: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
7: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
6: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
8: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
6: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
8: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
6: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
9: जी श्रोताओ, इस म्यूजिकल कम कमर्शियल ब्रेक के बाद हम ये कहना चाहेंगे कि जब हम पुराने गाने सुनते हैं ना, तो हमें लगता है कि जो रफ़ी साहब हैं या किशोरदा हैं, इनकी आवाज़ में ऐसी कशिश है कि आज भी दिल वहीं थम जाता है। लेकिन दोस्तों, वक्त का पहिया थमता कहाँ है? पुराना दौर अगर सुकून था, तो नया दौर भी इस सुकून की नई परिभाषा है। चलिए, यादों की इस झरोके से थोड़ा सा बाहर आते हैं और देखते हैं कि आज की युवा पीढ़ी किन गानों को सुन रही है। जी हाँ, सुर वही हैं, जज्बात वही हैं, बस अंदाज थोड़ा नया है। सुनिए ये खूबसूरत नया गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी हाँ दोस्तों, नए गाने जहाँ आपको थिरकने पर मजबूर कर देते हैं, वहीं इस भागती दौड़ती जिंदगी में जब थोड़ा सा सुस्ताने का मन करे ना, तो हम कहाँ जाते हैं? सीधे ब्लैक एंड वाइट ज़माने के उस सुनहरे दौर में जहाँ मोहब्बत खतों में बयां होती थी। आइए दिल की धड़कनों को थोड़ा सा धीमा करते हैं और सुनते हैं गुजरे ज़माने की एक ऐसी धुन जो आज भी हर दिल की धड़कन है।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी हाँ युवा साथियों और हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं, सफ़र चाहे ज़िंदगी का हो या रास्तों का, बेशक हम युवा हैं या हम थोड़ी सी मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं या फिर हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हमें हर वर्ग का ध्यान रखना होता है। और सफ़र चाहे ज़िंदगी का हो या रास्तों का, अगर बैकग्राउंड में म्यूज़िक अच्छा है ना, तो हर मंजिल आसान लगने लगती है। और वैसे भी कहते हैं कि नए और पुराने का जब मेल होता है ना, तभी असल में उन्नति और खुशियों के द्वार खुलते हैं। तो दोस्तों, चाहे गीत नए हों या पुराने, ये वो आईना होते हैं जो हमारे दिल का हाल बयां करते हैं। और इसी तरह के एक नगमे को हम आपके रेडियो सेट्स पर भेजने जा रहे हैं, जो आज के नए दौर में भी वही पुराना दिल का हाल बयां करने का एक अलग अंदाज लेकर आया है।

जी हाँ दोस्तों, नए गानों का जोश और पुराने गानों का होश। उम्मीद है आज का ये सफ़र आपके दिल को छू गया होगा। फिर किसी दिन मिलेंगे इसी मोड़ पर कुछ और नए पुराने तरानों के साथ, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो स्टेशन AIR FM हमीरपुर पर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और देखते रहिए ज़िंदगी का ये सफ़र सुहाना।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हो चुके हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: इक ते घरा दे संगेले नी मुकदे, पर दे आए पे बरखा दे मौसम च, और कमाना भी क्या पे खेतरे पट्ठे में नी जाई होना, तो चल ए संगेला ही हो जाएगा तो खरी गल ही। कने और सी तो कुसी हाथ नहीं लगाना, अगर चीज पई होगी तो तिथी तिथी पई रहो। ये कुदालू ते हड़का क्यारू च हपे आ, कुसी नहीं लंदे चक्की ने, पर चल हूं रखी दिंदी है थों सारिया चीजा ने ना।
7: सुनो दी ताई अंदर खा कोई गला दा ताया ना, पर पता नहीं पाई आई कुछ दे पासे करा लियो करे ही आए।
6: हिंदी दाए अब आई जा रोशनी आई जा, तीजो भी टाइम लगे हाथ बटाना।
7: आई कुछ पासे खाई
6: ओ ए मी ए आई जा अंदर स्टोर च दिथी जी कऊ कदाड़ू रखे हो।
7: अच्छा तो इस टाइम कऊ कदाड़ू ने क्या लगी दी आई तू करने पर लाए
6: काम खेतरा दे तो ओही है भई हूं घा पट्ठा लियाना है लिया ने रखी लिया। कने दिख ए छिड़काव कित्या है ना कोई लंबा जो फिर और कई खरपतवार निकली आ दे ती ना जो जेडी जेडी दवाइया का छिड़काव कर लिया सह बोतलू है कई थोड़ी बची हुई कई खाली हुई है।
7: खरा कित्या ते टैमर छिड़काव करी ले या कने हूं तो दिख बरखा भी इं उतरी पई ना भाई उरे परे भी बरखा बथेरिया भर दी हरे पास भी हो दी बरखा कने मौसम भी बड़ा बदली रही है या।
6: तो दे है पे छिड़काव तो पहले ही होंगे ना बरख तो पहले पहले ही ना तो बरखा के दड़ाके ने सारा कुछ रुड़ी जाना।
7: और दिख जाली भी दवाइया का छिड़काव करना तो कई सावधानी आ जो बरतने पौंदी आई हूं बरखा लगी होगी कहीं तू छिड़काव करने चली पाऊंगी तो तीहे दवाइया रखे आई असर रही आना ही है या।
6: शुरू जी होगी ना बरसात तो पता थोड़ी लगता पे कल जी बरखा भरी आनी है ना जेड़ा काम हो सही खरा।
7: फिर भी तू बोल पे बरखा कितनी भी आई ना पर उमस तेड़ी दी तेड़ी आई
6: वालता कमरे च बड़ा देता तदे आई निकला था ना उन मैं भी इस कमरे ता हल्की लगी हो पर उमस जे ही निकला दी और
7: उमस जी
6: का तापमान ना भी अधिकतम जी ऐसे 30 डिग्री सेल्सियस कने न्यूनतम जी ऐसे 30 डिग्री सेल्सियस
7: ए ता सिमरो दसी ते ना ते पर उमस ही ना ज्यादा ते इस कमरे ते चली पाओ की करना जे इथे कुछ काम कार और
6: नहीं बस मी हुन तू आई ना ते मैं तीजो ने भी गलाई बोली लैंदी है कने ए थोड़ा बहुत रे ऐसे बाद च दिखी लेंगी ना मैं ए दिखे अलमारी करी ती हुन मैं बांध इस बीच सा जी दवाई है ना छिड़काव करने सही है भाई रखी है कने एक कमरा जिस बीच सारे जेडे भी खेती बाड़ी दे औजार होंगे सह
7: ना बड़ा भारी बढ़िया काम पे लग तरीके ने कने लग कमरे जिसे सारा समान रखे रहा नहीं तो जाली चाहिए होंगे ना फिर ताली तड़ोफे बजे पे आउन इथी तोपिए कि उथी तोपिए।
6: हां तो दे करना चल उथी बाहर बैठ दिया न आवा च कने चाह पानी भी पींदिया न कने गलांदियां बोलदियां भी हैं।
7: हां तो चल आई जाना कने सुन चाह पानी तो तू प्या बादा च पर पाइया मैं ही लोक गीतां दी शकीन।
6: ओ अच्छा तमी ए दिख पुछा दी का जो ए रखे रेडियो ना लगा कने सुनना इस बीच लोक गीत। हां

0: दवाई आई तां एड़ा भी अगर अहें पौध संरक्षण दवाइयां दा इस्तेमाल करा दे तो तिन्हारा सही तरीके ने रख रखाव करना जैसे बड़ा भारी जरूरी होंदा ही है।
1: हाँ तो ये गल्ला जरूर ध्यान च रखनी है। कने दिख तू आई कने गलाना बोलना लगी है तो है ना सारी गलबात भी समझ हो गई।
0: हां गलबात तो समझ होगी ना, पर एक गल और ही
1: हाँ
0: दिख हूं जरा होंगे भी अहें हर जगह पर जी असं ना पौध संरक्षण दवाइया का इस्तेमाल नहीं करी सकते हैं।
1: हाँ
0: कई जैविक विकल्प भी होंगे हैं, जैविक कीटनाशक बोलते हैं ना।
1: हाँ कने इं भी जैविक तरीके ने अगर हम खेती करते हैं तो बोले तीस चाह जो ज्यादा फायदा मिला था ना। अगर हाँ जी कैंचू खाद का प्रयोग करिए, नीम अदारक प्रयोग करिए, फिदरे करक होई या इन्हों सारी चीजों का प्रयोग करके जी अस अपनी खेती बाड़ी जो जी अस सुरक्षित रखी सकते हैं। तिसते जी मिट्टी है सह भी उपजाऊ बनी रहनी।
0: खरी गल, ये तो गल्लां बातां बड़ियां भरियां खरियां ही ना, पर जे हुण एक लोक गीत मिली आओ ना सुनने जो तो और भी बड़ा खरा होना।
1: ओ लै वो बो बोले बधाई थी मैं आवाज सुन लोक गीता।

0: सिमरो रसाइनर ता पाइए रख रखाव करी ले या ना पर आउ तो यु दस्तरी ही ना पे रसाइनरी जगह अगर आहें जैविक तरीके ना इस्तेमाल करन जैविक दवाइयां रे इस्तेमाल करन ना ता हरिया खेती बाड़ी है जो जी आस है बड़ा परिछाल उंदा कने आहारी खेती बाड़ी जई से खरीफ फल दी फूल दी आई तिहर ने सजे उत्पादन हुंदा ये या सह भी पाइए बड़ा खरा हुंदा तीसरी कीमत हां जो छाल मिल दी आई।
1: हाँ तो देखा खेती बाड़ी यहाँ का जो कर दे वो पे ता ही कर दे ना कि जेड़ा बी पाज जहाँ पा दे तीस दा हाँ जो अच्छा पाज जी से मिली आओ। तो अगर गाल करिए हाँ तो अहाँ वास्ते सरकार भी परंपरागत कृषि विकास योजना जैसे शुरू कीती हो कने यह योजना दा मुख्य उद्देश्य है किसान जो रासायनिक उर्वरक ते मुक्त कराई के जैविक खेती दी ओर जैसे प्रोत्साहित करना।
0: ए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन दा ही हिस्सा है कने यह योजना च जे आसे बड़िया सारिया गल्लां बातां आउंदियां न तियां जे मिट्टी री गुणवत्ता पे जैविक खादा रे प्रयोग ने आहारी सजे मिट्टी तिहा जो उपजाऊ बनाना ही है या तिहरी उपजाऊ शक्ति कने स्वास्थ्य जो हाँ सुधारना। देख आहें जितने ज्यादा रसायनर इस्तेमाल कर दे ता ए जी मिट्टी हुंदी ना इहरी उर्वरक क्षमता जैसे कट दी शुरू शुरू ता हाँ जो लगदा ही है या भी भाई पौधा बड़ा भरी हो आदा ही है या पर धीरे धीरे जे ऐसे पौधा कटदा जांदा जबकि अगर आहें जैविक खेती करा दे न जैविक खादा ना प्रयोग करा दे तक भाई शुरू शुरू च पौधा जे है ना 1-2 साल घट हो सकता ही है या पर पाइया बाद च ए बढ़दा ही जांदा ही है या बढ़ोतरी हुंदी आई पौधा भी बदता है या कने गुणवत्ता च भी सुधार हुंदा।
1: तो इस बीच अहां क्या है पारंपरिक कने प्राकृतिक संसाधन दे उपयोग ते खेती दी लागत जो कट करना।
0: बिल्कुल कने किसान जो उनारे जैविक उत्पादन दी बिक्री वास्ते जिया से बाजार तक सीधा संपर्क जिया ते भी यह योजना दे अंतर्गत जैसे दित्या जांदा है या
1: कने यह योजना दे तहत जैविक खेती अपनाने वाले किसान जो 3 साल ताई प्रति हेक्टेयर लगभग 31,500 दी वित्तीय सहायता जैसे दित्ती जांदी।
0: यह राशि रा प्रयोग आहें दिख फेरी जैविक बीज खरीदने च खादें खरीदने च कने कीटनाशक जैविक के तीना जो खरीदने च कने मार्केटिंग आदि च जे अस प्रयोग करी सकदे हैं।
1: तदी आई पे अगर हां इस तरीके ने प्रयोग कर दे जैविक खेती दा जाते ज्यादा तो अहां वास्ते ज्यादा फायदेमंद जी से हुंदा। कने अगर पात्रता दी गल करिए ना इस योजना दा लाभ उठाने वास्ते किसान जी से उस क्षेत्र दा स्थायी निवासी होना जी से जरूरी है।
0: किसान जे ऐसे समूह बनाए ने भी कृषि विभाग या फिर से जे आहारी स्थानीय ग्राम पंचायती तिनारे माध्यम ते जी से आवेदन करी सकते हैं। इसरे सौगी सौगी जी आसे आहें ऑनलाइन भी इसरा जी आसे आवेदन करी सकते हैं तहां कृषि विभाग दी वेबसाइट पर जान कने ओथी यह योजना जी हर जिनावा परंपरागत कृषि विकास योजना यह रे बारे च सर्च कर गे ना तहां जो सारी जानकारी जी से मिली जांदी आई। सौगी ना दिख पई आहें गल कीती ना वित्तीय सहायता मिलदी आई ते ए जी वित्तीय सहायता ई केंद्र कने राज्य सरकारां दे बीच जी है ना से अनुपात च चलदी आई पे 60% दियां जे केंद्र सरकारें दित्ती ते 40% जे असे राज्य सरकार दिंदी कने अगर अहें हिमालय कने पूर्वोत्तर राज्यां च रहंदे हन तां ओथे ए अनुपात 90:10 च चलदा ही है।
1: हां तो देखो ए अहां तो वास्ते सहूलत ही है ना तां जो जरूर लेना चाहिंदी।
0: ए तां अहें गलबात कीती दिख परंपरागत कृषि विकास योजना दे बारे च ना पे इसरे अलावा भी दिख सरकारें जे से कई योजना चलाए रही आई तियां जे कृषि यंत्रीकरण योजना होगी फेरी सिंचाई योजना होगी आई फिर
1: किसान सम्मान निधि योजना होगी कने दिख हर कोई इन्हां दा फायदा भी लै दा।
0: आओ बड़ियां सारियां योजना होंदियां हैं ना कने आहारे से प्रगतिशील किसान भाई नहीं है ना लखनपाल जी है ना तीन ता पई बड़ियां सारियां योजना दा लाभ ले रहा कने सारे जो दस दे से
1: कने दी है ना कुते भी अगर जियां किसान दी सभा होवे या कोई भी सम्मेलन हो तो से जरूर पूछ दे।
0: बिल्कुल कने तेड़े ही होने चाहिदा हां सारे किसान जो प्रगतिशील होने चाहिदा ताकि अह नए नए काम सीखण कने नए नए जानकारियां इकट्ठी करी सकण।
1: हां तो एक ही जगह है ना तेड़ी सेमिनार तो से दसद है सारी गल्लां बातां पे कुन कुन योजना दा मैं लाभ लिया तो मैं फटाफट है सारी गलबात जी से रिकॉर्ड कर लियो।
0: अच्छा तो मैं जो भी सुना।
1: हां ले सुन सुन मैं कर दी इस फोन ऑन ना ले सुन
2: ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਈਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਂ ਦੇ ਖੜ ਪਤਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਬੁਸ ਕਟਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੇ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸਕੰਨੇ ਇੱਕ ਬੁਸ ਕਟਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਡਾਟਾਂ ਕੱਟਣਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਆਸਾਨੀਆਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਕੱਟੀ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹਾਂ ਦੀ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਆਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਏ ਜਾਂ ਉਹ ਹਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲੂਗੀ ਕਿ ਚਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਰਧਨ ਕਣਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਵੀ ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਹਾਂ ਲਿਆ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਸਾ ਲੈ ਦੇ ਕਨੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਆਹਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਆ ਕਨੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਆਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਹੱਲ
0: ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹਰ ਭਾਈ ਆਹਾਂ ਜੋ ਨਾ ਦਾਮ ਵੀ ਅੱਛੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
1: ਹਾਂ ਤਦੇ ਨਾ ਪੇ ਮਿਹਨਤ ਜੀ ਆਹਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
0: ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਾਮਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਭਈ ਹਜੇ ਆਹਰੀ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਪਾਈ ਤਿੰਨਾਂ ਰੇ ਅੱਜ ਕੇ ਪੌਜੇ ਸੇ ਕਿਆ ਰੇ।
1: ਹਾਂ ਸਭ ਹੀ ਹਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਰੁਕ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਸਭ ਤਾਂ ਦੇਖ ਨਾ ਬੋਬੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੇ ਥੋਕ ਭਾਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਲੂਏ ਦੀ ਤਾਂ ਆਲੂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਰੇ ਆ 10 ਤੇ 12 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਆਲੂ ਪਹਾੜੀ ਰੇ ਆ 16 ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ। ਪਿਆਜ਼ ਰੇ 28 ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਭੀ ਰਹੀ 60 ਤੇ 65 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ। ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਰਹੀ 25 ਤੇ 28 ਰੁਪਏ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਰਹੀ 50 ਤੇ 60 ਰੁਪਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੀਆ ਰੇ ਆ 20 ਤੇ 25 ਰੁਪਈਏ। ਲੌਕੀ ਰਹੀ 25 ਤੇ 30 ਰੁਪਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੰਡੀ ਰਹੀ 25 ਤੇ 30 ਰੁਪਈਏ। ਕਰੇਲਾ ਰੇ ਆ 25 ਤੇ 30 ਰੁਪਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਕ ਰੇ ਆ 50 ਤੇ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ। ਧਨੀਆ 120 ਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ। ਟਮਾਟਰ ਰੇ 30 ਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ। ਰਾਮ ਤੋਰੀ ਰਹੀ 30 ਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ। ਗਾਜਰ ਰਹੀ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਰਹੀ 40 ਰੁਪਏ ਤੇ 45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ। ਖੀਰਾ ਰੇ ਆ 20 ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਦਰਕ ਦੀ ਤਾਂ ਅਦਰਕ ਰੇ ਆ 220 ਤੇ 230 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ। ਲਸਣ ਰੇ ਆ 150 ਤੇ 180 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ।
0: ਇਸ ਰੇ ਸੌਗੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਫਰਾਂਸ ਬੀਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਬੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਰੇ 85 ਤੇ 90 ਰੁਪਈਏ। ਕੱਦੂ 20 ਤੇ 25 ਰੁਪਈਏ। ਅਰਬੀ 30 ਤੇ 32 ਰੁਪਈਏ। ਚੁਕੰਦਰ 40 ਤੇ 45 ਰੁਪਈਏ। ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਫਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੇਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਡੱਬਾ 12 ਕਿਲੋ ਰੇ ਆ 550 ਤੇ 600 ਰੁਪਈਏ। ਸੇਬ 165 ਤੇ 180 ਰੁਪਈਏ। ਅਨਾਰ 190 ਤੇ 210 ਰੁਪਈਏ। ਮਸੰਮੀ 95 ਤੇ 100 ਰੁਪਈਏ। ਪਪੀਤਾ 58 ਤੇ 60 ਰੁਪਈਏ। ਕੀਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਡੱਬਾ 900 ਤੇ 1000 ਰੁਪਈਏ। ਅਨਾਨਾਸ 45 ਤੇ 50 ਰੁਪਈਏ। ਅਮਰੂਦ 95 ਤੇ 100 ਰੁਪਈਏ। ਮਾਲਟਾ 160 ਤੇ 180 ਰੁਪਈਏ। ਤਰਬੂਜ ਰੇ ਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ 20 ਰੁਪਈਏ। ਖਰਬੂਜਾ 45 ਰੁਪਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ। ਅੰਬ ਸਫੇਦਾ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ। ਅੰਬ ਤੋਤਾ 45 ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਅੰਬ ਦੁਸ਼ਹਿਰੀ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਪਲਮ 90 ਤੇ 100 ਰੁਪਈਏ। ਲੀਚੀ 160 ਤੇ 170 ਰੁਪਈਏ। ਚੈਰੀ 250 ਤੇ 300 ਰੁਪਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਰਹੀ।
1: ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਪਈ ਇਹ ਤਾਂ ਰੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਥੋਕ ਭਾਓ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਬੋਬੋ ਆਈ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਬਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲ ਜੋ ਬੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਅੰਦਰ ਮੱਛਰ ਲੱਗੀ ਪਿਆਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਖਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਬੈਠ ਇਹ ਲਸਣਾਂ ਦੀ ਕਟੋਰੀ ਇਸ ਲਸਣਾਂ ਖੋਲਤਾ ਲਈਏ ਜੋ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨੇ ਬੜਾ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਮੈਂ।
3: ਕਿਆ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਇਧਰ ਇਧਰ ਇਧਰ ਹਮ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬੀਜੂ ਕਾ ਪੁਤਲਾ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਕਸ਼ੀਓ ਸੇ ਤੋ ਹਮ ਖੇਤ ਕੋ ਬਚਾ ਲੇਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇਨ ਘਾਤਕ ਰਸਾਇਨੋ ਸੇ ਕੈਸੇ ਬਚਾਏ।
4: ਮਤਲਬ
3: ਦੇਖ ਬੇਟਾ ਤੂ ਜੋ ਇਹ ਅੰਦਾ ਤੁਮ ਰਸਾਇਨ ਮਿਲਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਕੀ ਸਿਹਤ ਬਿਗੜਨੇ ਲਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਬ ਮਾਟੀ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੜ ਜਾਏਗੀ ਤੋ ਉਪਜ ਕੈਸੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਗੀ। ਅਰੇ ਪਹਿਲੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਪੁੱਛਣਾ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸੇ ਕੈਸੇ ਫਸਲ ਲਹਿਲਾਤੀ ਥੀ ਸ਼ੁੱਧ ਤਾਜ ਰੱਖਤੀ ਥੀ ਹਾਂ ਮਾਟੀ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਕਹਾ
4: ਪਰ ਹਮ ਤੋ ਸਮੇਂ ਡਾਲੇ
3: ਸਭ ਨਹੀਂ ਆਜ ਵੀ ਲਾਖੋ ਜਾਗਰੂਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਧੀ ਸੇ ਫਸਲ ਉਗਾ ਰਹੇ ਪਰਚਾ ਕਮ ਔਰ ਉਪਜ ਕੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਪਾ ਰਹੇ।
4: ਸੱਚ
3: ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੇ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ ਧੂਪ ਪੇ ਬਾਲ ਸਮੇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਏ ਹੈ।
4: ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਅਲਟੀਟਿਊਡ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ।
5: ਮਾਟੀ ਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਪਰੰਪਰਾਗਤ। कीती।
1: कार्यक्रम किसानवाणी दे प्रायोजक के
0: कृषि कने किसान कल्याण मंत्रालय
1: भारत सरकार।
5: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का एक हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। वे आज वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। यहां टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
7: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
6: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू भाता के 6 मछुआरों को बचाया है। तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब मौसम के कारण नौका क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें पानी भरने लगा। इसके बाद रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से सभी 6 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में छात्रों से शिक्षा को न्यायसंगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगान क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का मुकाबला 9 से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:05 हुए हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल 1 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्ट इंडीज़ के मध्य खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल अनुप्रसारित किया जाएगा।
8: Platform and the bowlers must make sure they don't pitch in the slot, otherwise you got people like Matthews who can hammer. And this is the outside the leg stump delivery, should be a wide definitely. Mooney had to really go to her right and pick up the ball. She's a good keeper behind the stumps, very very flexible and very agile, and she saves the blushes because that is wide outside the leg stump, and the score remains with one more to 8 for the loss of no wicket. So one extra delivery, one extra wide. Here is Hamilton bowling this one, which is just about on the off stump. The loosely held bat played onto the offside to the backward of point, and the score is 8 for the loss of one wicket after one over.
9: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
10: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
9: तुम हो ही भुलक्कड़।
10: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
11: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
12: आभा
11: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
8: ओवर टू संजय। संजय, वंडरफुल फर्स्ट ओवर।
13: बिल्कुल, अगर आप वेस्ट इंडीज के लिहाज से देखें तो एक अच्छा ओवर, और जहां तक शुरुआत का सवाल, तो कोई बहुत ज्यादा हलचल नहीं मिली गेंदों को। ऑन द स्टंप्स फेंका, किसी तरह का बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला शुरुआती ओवर में। हालांकि हवा तेज है वहां पर, किम गार्थ इस समय गेंदबाजी की शुरुआत कर रही है। ये दूसरा ओवर है और मैथ्यूज जो कि सबसे सॉलिड बैटर हैं टीम की, ऑफ स्टंप से टप्पा खाकर थोड़ा सा बाहर की ओर निकली थी। पॉइंट की दिशा में उस गेंद को हल्के से केवल प्लेस किया, कोई रन नहीं। अच्छी बात यह कि कोई बहुत जल्दबाजी हड़बड़ाहट नहीं दिखा रहे वेस्ट इंडीज के ये दोनों बैटर्स। उन्हें पता है कि उन पर कितना दारोमदार है टीम का, और अगर आप इन दोनों बैटर्स का स्ट्राइक रेट देखें तो वो 115 और 116 है। वृंदा राठी भारत की हैं और इस मुकाबले में अंपायरिंग कर रही हैं सेमीफाइनल में, और किम कॉटन है उनके साथ जो कि न्यूजीलैंड की, 8 रन बिना किसी नुकसान के। और इस बार गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा टप्पा खा करके बाहर निकल रही थी। मैथ्यूज ने बल्ला चलाया जरूर था, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, किस्मत अच्छी। और एक परेशानी का दृश्य देखने को मिला कुछ समय पहले, जब डियंड्रा डॉटन को तकरीबन 2-3 लोग उठा करके लेकर के जा रहे थे। समझ से परे है कि डॉटन को हुआ क्या, लेकिन एक बहुत अच्छी बैटर है टीम की, उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द वो वापस लौटेंगी। शॉर्ट थर्ड स्लिप, डीप बैकवर्ड पॉइंट, पॉइंट ऑफसाइड की फील्ड प्लेसमेंट, और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, और इस बार दोनों स्लिप्स के बीच में से गेंद निकलती हुई चली गई 4 रनों के लिए। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर।
14: ये लगा आभा का चौका।
8: Well, that was a freaky shot on the offside, not intended, but squeezes through the third man region, through the slip cordon. And that was a lucky boundary for the side, almost to the outstretched hands of the fielder Sanjay. That was close.
13: बिल्कुल नजदीक मामला हो सकता था, और काफी तेज छलांग भी लगाई थी उस गेंद को अपने नियंत्रण में लेने के लिए, लेकिन संभव नहीं। लेकिन पावर प्ले है, और पावर प्ले में आप इस तरह के स्ट्रोक्स बहुत ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं। लगातार गेंदों को आप स्टंप पर टप्पा डाल रही और थोड़ा सा बाहर की ओर निकालने की कोशिश, एक हल्का जो स्विंग का मोमेंट है वो देखने को मिल रहा है गार्थ की गेंदों पर। एक स्लिप बिल्कुल विकेट से सटे हुए, और

0: लीजिए सुनिए भारतीय सेना गीत, गीतकार संगीतकार और गायक कलाकार हैं कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: ಸ್ವಯಂಗೆ ಕಟ್ಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: अभी आप सुन रहे थे भारतीय सेना गीत. गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार थे कैलाश खेर.
2: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन. अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम.

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

इल्ज़ाम इस फिल्म का गीत सुनिए आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज़ों में। गीतकार हैं अनजान, संगीत है बप्पी लहरी का।

जवानी इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज़ों में। गीतकार हैं गुलशन बावरा, संगीतकार हैं राहुल देवबर्मन।

साथियों, जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती।

अंतराल के बाद एक बार फिर से जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में, नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीत है राहुल देवबर्मन का, फिल्म का नाम है बुढ़ा मिल गया।

0: के बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: हर जाई इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। नगमा निगार है निदा फाजली, धुन है राहुल देव बर्मन की।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई, खुशी तो होगी,
5: अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला

0: राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
1: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 7:45 होने को है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हमीरपुर जिले के नेरी में स्थापित होगा देश का पहला स्वदेशी बायोचार संयंत्र, लोगों को सृजित होंगे आजीविका के अवसर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए कीटनाशकों का संतुलित उपयोग करने का किया आग्रह। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कुल्लू अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला की मृत्यु पर जताई चिंता, सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग। राज्य के 7 जिलों में मॉनसून की दस्तक, अगले 3-4 दिन अनेक स्थानों पर भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हमीरपुर जिले के नेरी में देश का पहला स्वदेशी बायोचार संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार व आजीविका के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में इस संबंध में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और कहा कि इस परियोजना के लिए बायोमास की खरीद 2.5 रुपये प्रति किलो की दर से की जा रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत चीड़ की पत्तियों, लेंटाना, बांस और अन्य पौध आधारित बायोमास का उपयोग कर बायोचार का उत्पादन किया जाएगा। इस परियोजना से प्रदेश को 28,800 कार्बन क्रेडिट मिलने की संभावना है। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों का संतुलित उपयोग करने का आग्रह किया है। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की सलाह देते हुए इस बात पर जोर दिया कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है, जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल, सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज शिमला स्थित लोकभवन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लाभार्थियों को कृत्रिम अंग प्रदान किए। उन्होंने गैर सरकारी संगठन एक्ट ह्यूमन द्वारा राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी के सहयोग से आयोजित कृत्रिम अंग वितरण शिविर का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने दिव्यांगजनों के सहयोग के लिए संस्था द्वारा चलाए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन किसी से कम नहीं है और हर व्यक्ति में अपार क्षमता व शक्ति होती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने पार्टी कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया है। उन्होंने आज ऊना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान के समापन अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अनुराग ठाकुर ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया। इस मौके पर अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति और

0: और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई।
1: 2014 में मात्र 7 राज्यों में हमारी सरकारें थी, आज 2026 में 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। इसलिए हम कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करते हैं कि सत्ता एक सेवा का माध्यम कैसे है, सत्ता में रहकर सरकारी योजनाओं को धरातल पर लागू कैसे करें। कार्यकर्ता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इन्हीं कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर संगठन की और ताकत को बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं।
0: राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि किन्नौर जिले के कल्पा में जल्द ही मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने आज कल्पा पंचायत में नव निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। जगत सिंह नेगी ने कहा कि मिनी सचिवालय बनने से लोगों को एक ही स्थान पर प्रशासनिक व राजस्व कार्य निपटाने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि कल्पा में पुलिस चौकी के समीप नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाएगा। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज कुल्लू में प्रसव के दौरान दम तोड़ने वाली महिला के परिजनों व धरने पर बैठे विभिन्न संगठनों के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण महिला की मृत्यु होना चिंताजनक है और इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वे इस संबंध में मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव से बात कर अब तक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगेंगे। उन्होंने इस घटना को लेकर प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई न करने को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। शिमला के चर्चित मनीषा मर्डर मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेहर पवन ने बताया कि मनीषा मित्तल का भाई हिमांक मित्तल ही उनकी हत्या का मास्टरमाइंड निकला है और उसी ने हत्या की साजिश रची है। उन्होंने कहा कि मनीषा मित्तल का अपने भाई के साथ संपत्ति विवाद चल रहा था और हिमांक ने अपनी बहन की हत्या करवाने के लिए दो शूटरों को सुपारी दी थी।
2: हिमांक के पास सरस्वती पैराडाइज स्कूल के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज का एक्सेस था, जिससे वह मृतका श्रीमती मनीषा मित्तल के आने जाने का सारा मूवमेंट ट्रैक कर सकता था। ये सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस हिमांक ने गोविंद को प्रोवाइड किया था। जांच के आधार पर यह सामने आया कि हिमांक ही इस हत्या की साजिश का मास्टरमाइंड था तथा हिमांक ने गोविंद के साथ मिलकर दीपक व आशीष को इस वारदात को अंजाम देने के लिए नियुक्त किया था। हिमांक को भी दिनांक 29/6/2026 को रोहतक हरियाणा में गिरफ्तार कर लिया गया है।
0: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विद्यार्थियों से पढ़ाई के साथ खेलों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। उन्होंने आज शिमला जिले के रोहडू में 50वीं बुशहर क्रिकेट खेलकूद प्रतियोगिता शीलघाट के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। रोहित ठाकुर ने कहा कि युवाओं के चरित्र निर्माण में खेलों की अहम भूमिका है और राज्य सरकार ग्रामीण स्तर पर खेलों को बढ़ावा दे रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि युवाओं में नशे की प्रवृत्ति को लेकर राज्य सरकार चिंतित है और इस पर रोक लगाने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रतियोगिता में फागू टीम विजेता और ननखड़ी टीम उपविजेता रही। प्रदेश के 7 जिलों में मॉनसून ने आज से दस्तक दे दी है। इनमें किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, शिमला, मंडी, सिरमौर और कांगड़ा जिला शामिल हैं। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि इन जिलों के अधिकतर क्षेत्रों में आज मॉनसून की व्यापक वर्षा हुई है। उन्होंने कहा कि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और चंबा जिलों में मॉनसून के अगले 2-3 दिनों में दस्तक देने के आसार हैं। उन्होंने कहा कि अगले 3-4 दिनों में कुछ जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
3: तो आज 30 जून को प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मॉनसून का आगमन हो चुका है। इसमें अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो मॉनसून ने पूरे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर को कवर कर लिया है, साथ में डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति और कुल्लू को लगभग पूरा कवर है। केवल कुछ एक क्षेत्र शेष हैं डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति और कुल्लू के। शिमला और डिस्ट्रिक्ट मंडी के बहुत से क्षेत्रों में मॉनसून का आगमन हो चुका है तथा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का जो चूड़धार का एरिया जो शिमला के एडजॉइनिंग है और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का जो बड़ा बंगाल एरिया है वहां पे मॉनसून का आगमन हो चुका है तथा परिस्थितियां अनुकूल है कि जो शेष हमारे डिस्ट्रिक्ट है इसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा है और कांगड़ा का बहुत सारा क्षेत्र है, सोलन है, यहाँ पे आगामी 2-3 दिनों में मॉनसून का आगमन हो सकता है।
0: तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश की काउंसलिंग के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव अनुपम कुमार ठाकुर ने बताया कि बीटेक, बी फार्मेसी, एमटेक, एमबीए, एमसीए, बी आर्क और अन्य विषयों की काउंसलिंग के लिए डायरेक्ट एंट्री के तहत 7 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा लेटरल एंट्री के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया 25 जुलाई तक जारी रहेगी। केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, जलभराव और ओलावृष्टि से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। खरीफ सीजन के दौरान भी किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हमीरपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में खरीफ सीजन में मक्की व धान की फसल का बीमा किया जा रहा है। हमीरपुर के कृषि उपनिदेशक डीडी शर्मा ने बताया कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। मक्की व धान की फसल बीमा के लिए 1,200 रुपये प्रति हेक्टेयर यानी 48 रुपये प्रति कनाल प्रीमियम तय किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हमीरपुर जिले के नेरी में स्थापित होगा देश का पहला स्वदेशी बायोचार संयंत्र, लोगों को सृजित होंगे आजीविका के अवसर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए कीटनाशकों का संतुलित उपयोग करने का किया आग्रह। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कुल्लू अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला की मृत्यु पर जताई चिंता, सरकार से मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग। राज्य के 7 जिलों में मॉनसून की दस्तक, अगले 3-4 दिन अनेक स्थानों पर भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
4: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
5: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
4: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
5: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
4: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
7: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
8: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
7: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
9: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
7: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
9: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
7: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
10: कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स, कश्मीरी कॉम्प्लेक्स हमीरपुर।
11: 145 सालों से कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स के गहने आपके हर जश्न की शान बनते रहे हैं। रिवायती गहनों से लेकर आज के दौर के बेहतरीन डिजाइन तक, यहाँ हर मौके के लिए कुछ खास है।
10: गहनों की दुनिया में सबसे विश्वसनीय नाम कश्मीरी सन्स ज्वेलर्स हमीरपुर। संपर्क करें 9418000363।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे ICC वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल एक के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्ट इंडीज़ के मध्य खेले जा रहे क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल।

0: The ball is hitting onto the stumps. We'll have to wait and watch. Where was the ball pitching and where was the ball going? Sanjay, you were probably looking at that option. Was it coming onto the stumps? But here it looks quite close. The ball was below the knee roll. And it appears that she's safe because there is a spike when the ball crosses the bat. And that's the reason the umpire did not give it as out there. And Kim Cotton was absolutely on the target. Absolutely spot on. That's experience saying. So Australia has lost one of the reviews. They just got one more review. That was close, Sanjay. But except for the edge, she was absolutely beaten.
1: बिल्कुल बल्ले पर हल्का सा एक स्पर्श हुआ था और जिसका एहसास निश्चित तौर पर फील्डिंग कप्तान को नहीं था.
0: Next delivery outside the off stump. A bit of width offered and the batter moves away, plays it down into backward point. No runs taken. Very good over from Gardner. Just three singles given away. 66 for 4 after 13 overs, West Indies.
2: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
2: तुम हो ही भुलक्कड़.
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
4: लीम, जानिए आभा के बारे में.
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
1: तो वेस्ट इंडीज की निगाहें अब कितने स्कोर पर होंगी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जिस गति से वो रन बना रहे हैं और जिस गति से उनके विकेट गिर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो परेशान करने वाला होगा इस टीम के लिए. ओवल में सबसे कम स्कोर न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड का 103 रन का था 8 विकेट के नुकसान पर. यहाँ 66 for 4 और 14वें ओवर की शुरुआत हो गई है. ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद, अच्छा कट, हालांकि प्रयास था लेकिन 4.
6: ये लगा आभा का चौका.
0: And this one was played late because there was a width offered outside the off stump, but that was very close to the outstretched hand of the fielder there at backward point. And on a given day, that could have easily a large jaunty roads kind of an approach to take pick up that one in the air. Very fortunate for Henry.
1: Sutherland ki is over ki akli gend aur isko halke se keval place kiya tha iklaute run ke liye. Runon ki raftaar अभी भी तकरीबन धीमी सी बनी हुई, 6 के नीचे. स्कोर प्रेडिक्टर बता रहा 125. और अगर आप वेस्ट इंडीज के लो टोटल्स का जिक्र करें तो कई बार उन्होंने गोते लगाए हैं. 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 43, 26 में श्रीलंका के खिलाफ 49, और इस बार इंतजार किया. पहले से कमिट हुए गेम के टप्पे का इंतजार कर रहे थे, उन्हें उम्मीद थी कि शायद टप्पा ऊपर आएगा और उसे वो उलट करके थर्ड पॉइंट की दिशा में या फाइन लेग की दिशा में निकालेंगी, लेकिन जो अंदाज था उतनी गेंद ऊपर आई नहीं, बल्ले के बीचों बीच कनेक्ट हुआ नहीं और इसी वजह से चलिए सुरक्षित अपनी जगह पर. डॉट बॉल, डॉट बॉल्स अच्छी खासी देखने को मिल रही हैं. 10 ओवर्स में 33 डॉट बॉल थी, 33 डॉट बॉल्स, यानी कि 5.5 ओवर डॉट बॉल से ही खत्म हुए थे और वो आपके स्कोर में बिल्कुल साफ रिफ्लेक्ट कर रहा है. 71 for 4, रन रेट 5.26. ऐसा लगता है कि रन रेट की जो सुई है वो अटक सी गई है, उसमें किसी तरह की हरकत दिखाई नहीं दे रही है. कैम्बल जिन्होंने धमाकेदार शुरुआत की थी, आते ही साथ 2 चौके लगाए थे, अब 18 गेंदों पर सिर्फ 13 रन बना सकी हैं. और इस बार मोड़ने का प्रयास बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, कनेक्शन सही मिला नहीं, बल्ले के बीचों बीच आई नहीं, इकलौता रन सिर्फ मिल गया. तो इस ओवर में अब तक 6 रन बने हैं सदरलैंड के. उस लिहाज से वेस्ट इंडीज के हिसाब से अगर आप कहें तो ये एक बेहतर ओवर आप कह सकते हैं. सदरलैंड का जहां तक सवाल, अच्छी कसी हुई गेंदबाजी, मैथ्यूज इकलौती बैटर जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी, पूरी तरह से बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहती थी हेनरी, लेकिन टाइमिंग गड़बड़, गेंद का टप्पा पहले खाया और बल्ला बाद में चला. लेकिन चलिए अपनी जगह पर सुरक्षित. और ये 72 for 4, 14वें ओवर की आखिरी गेंद आने वाली है सदरलैंड. बड़ा अटपटा सा स्ट्रोक, सीधे बल्ले से खेलना चाहती थी, आड़ा बल्ला लगा, एक रन दौड़ करके पूरा किया. 14 के बाद 73 for 4.
0: So well, now what we've seen is 14 overs, 73 for 4, time for drinks in the center. And I'm sure this would certainly give time for the West Indies side to take some change of course. But Sanjay, isn't it, you know, quite surprising that the power play saw 35 runs for no loss in just 4 boundaries odd. But now, in the next 7 to 14 overs, just 38 runs scored. And Shamas Sani says that, last 5 overs, 18 for 3, 18 runs and 3 wickets. What kind of a pressure was it? Now it looks as if the power play was a much better option.
1: बिल्कुल, लेकिन प्रेम अगर आप देखें तो असली जो प्रेशर है उन्होंने पावर प्ले में ही ले लिया था। अगर आप पावर प्ले में 34-35 रन बनाते हैं, भले ही विकेट ना गिरे, तो ये बताता है कि आपके बैटर स्ट्रगल कर रहे हैं रन बनाने में। और जोसेफ ने खास तौर पर शुरुआत जिस तरह से की, उनके बल्ले से बिल्कुल भी रन नहीं निकल रहे थे, कनेक्शन मिला नहीं, तो वो जो प्रेशर है, वो जो दबाव है, वो ऊपर से नीचे की ओर आता लगातार दिखाई दे रहा है। और कोई भी बैटर ऐसा नहीं है जो विकेट पर टिक करके एक बड़ी पारी खेल सके।
0: And another thing which I've observed, maybe you have also observed, that the bounce is a bit variable, and that's been keeping the batters completely on a tension mode. And once those first 2 wickets fell, the others looked like as if they were completely strokeless wonders.
1: जी बिल्कुल ठीक बात है प्रेम, और मुझे ये भी लगता है कि क्रिकेट का खेल हो या दुनिया में कोई भी खेल, मैदान पर तो खेला ही जाता है, दिमाग पर ज़्यादा खेला जाता है। जब आपके 2 विकेट गिर जाते हैं तो वही जो बाउंस था, जो अब वेरिएबल दिखाई दे रहा है, वो पहले ठीक दिखाई दे रहा था। मैथ्यूज के स्ट्रोक बड़े शानदार थे, लेकिन उसके बाद आप देखिए किस तरह से प्रेशर ले लिया। अगर आप दब करके खेलेंगे, बहुत ज़्यादा बैकफुट पर जाएंगे या स्ट्रोक्स नहीं लगाएंगे, तो फील्डर्स को आप न्योता देंगे कि आप उन पर दबाव बनाएं।
0: बट लुक एट द अदर थिंग, look at the bowlers, they also bowled well. You saw Ashley Gardner coming with some very good bowling. Of course, Garth and Hamilton started off seamers, but the spinners were more effective because they're bowling stump to stump, bowling the wrong ones and letting the ball come onto the stump line, and the batters, they make a mistake, and more often than not, you've seen most of the wickets fall when they're trying to play the ball across the line.
1: बिल्कुल, और मुझे तो लगता है कि क्रिकेट में, खास तौर पर shorter format के क्रिकेट में, अगर आप बिल्कुल stump to stump bowling करते हैं, तो आप बैटर्स को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब स्टंप पर बॉल होती है, आप खींच करके फ्रस्ट्रेशन में कोई बड़ा स्ट्रोक लेना चाहते हैं और ज़रा सी गेंद को मिस करते हैं तो आपका विकेट चला जाता है। तो लगातार अगर आप स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करेंगे, विड्थ नहीं मिलेगी ऑफ स्टंप के बाहर, तो फिर वो स्ट्रोक देखने को नहीं मिलेंगे, वो कॉन्फिडेंस बैटर के अंदर नहीं आएगा। और वही कहानी हुई है वेस्ट इंडीज़ की। और वेस्ट इंडीज़ का प्रदर्शन, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया कि वेस्ट इंडीज़ एक ऐसी टीम है कि अगर उसका दिन हो तो वो दुनिया की किसी भी टीम को हरा दे, और नहीं तो दुनिया की किसी भी हल्की से हल्की टीम से भी हार जाए। हमने देखा है 2 मैचेस हारे हैं वो इस वर्ल्ड कप के बीच में, किस्मत अच्छी थी जो सेमीफाइनल में पहुंच गए।
0: एशली गार्डनर रियली बोल्ड वेल, आउट ऑफ द 3 ओवर्स शी इज गॉट 12 डॉट्स इन दैट, टेकन 2 विकेट्स ऑफ 6 रन्स। शी इज द वन हु लिटरली मेड दैट यू नो मूव टू पुट देम अंडर ट्रबल। हियर इज अ फर्स्ट ओवर आफ्टर ड्रिंक्स एंड दिस इज अप इन द एयर, goes high in the air, the fielder comes under and grabs this one, and that's Annabel Sutherland, and another wicket falls, just the first delivery after the drinks break, and the fifth wicket goes.
1: आसान मौका, गेंद के ठीक पीछे थी, स्ट्रेट खेला था, एकदम लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के नजदीक, वहां से सदरलैंड ने गेंद को फील किया, बढ़िया मौका, और उस मौके को तब्दील किया, कोई हड़बड़ाहट जल्दबाजी नहीं, और वेस्ट इंडीज की पारी अब लगभग धराशायी होती हुई। हेनरी भी 11 गेंदों में 10 रन बनाकर बाहर जा रही हैं। मुश्किल का समय है, क्या वेस्ट इंडीज 125 भी पहुंच पाएगा, 125 का स्कोर भी दे पाएगा? ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह की बैटिंग है, ये रन्स मुझे नहीं लगता है कि उनके लिए कोई चुनौती देने वाले।
0: That's right, and I think they've just invited pressure on their shoulders to some very good bowling. I don't think it was extraordinary, but they kept bowling on the stump line and the batters committing mistake. And now I can see the pressure causing them further agony. Why? Because they're stepping out to play and risking the wickets.
1: शुरुआत के लिहाज में अगर आप देखें तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बॉल रुक करके आ रही है, और इसलिए जब वो बड़े स्ट्रोक्स के लिए जा रहे हैं तो एक तो उन्हें कनेक्शन मिल नहीं रहा है, टाइमिंग सही नहीं हो रही, और गेंद उछल करके इधर उधर जा रही है। ज़्यादातर कैचेस हमने देखे पकड़े गए बहुत आसानी के साथ, तो अब करें तो करें क्या? अगर आप हल्के से प्लेस करके रन लेने की कोशिश करेंगे तो एक एक रन से ज़्यादा आपको मिलेंगे नहीं, बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाएंगे तो कैच पकड़ने की उम्मीद है।
0: That's right, in the next ball, been played by Campbell because they run across for a single and plays it down on the inside, takes a single and takes the score up to 74. And West Indies now looks to be in real dire straits. Absolute 74 for 5 in the 15th over continuing, as here is Molina bowling a slower delivery and the batter has to literally smash this one, plays it down into the whitish mid-off region, crosses over and takes a single. And now boundaries have become a kind of a precious item, and I'm sure Chama will just now tell me as to how many deliveries since we haven't seen a boundary. That's a very interesting thing. Our scorer is going to work on that. Here's the next delivery, which is back of the length spot there, and the batter off the back foot just punches down to the wide-ish mid-off region, picks up a single, easy-looking single, and that takes the score snailing up to at a snail's pace, or cantering up to 76 for the loss of 5 wickets. 15th over, just 2 deliveries more, as here's the next one, that slightly short, plays it across the line, a sweep shot, but there is a superb piece of fielding there at backward square on the inside. The batters have in the meantime crossed over for a couple of runs, and that brings the score to 78 for 5. Nothing exciting about it. I'm sure the coaches, all of them must be really worried as to what should be the score after 20 overs.
1: Kehpana bada mushkil. West Indies bhi shayad uska anumaan nahi laga pa rahe honge. और ये स्ट्रोक खेलना चाहते थे एकदम सीधे, लेकिन गेंद बल्ले से लगती हुई थोड़ा सा ऑन साइड में गई, डीप मिड विकेट पर गेंद फील्ड हुई सदरलैंड के हाथों, लेकिन रन वहां पर मिल गया.
0: ऑलराइट, सो वेल संजय, इफ यू लुक एट द लास्ट 3 or 4 ओवर्स, द बैटर्स आर लिटरली स्ट्रगलिंग टू गेट इवन सिंगल्स एंड टूज. वेयर एवर दे प्लेइंग द बॉल, दे गेट द बॉल फील्डेड.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
2: तुम हो ही भुलक्कड़.
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
4: लीम, जानिए आभा के बारे में.
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
0: So we start a fresh over from Wareham, and that ball is in the air but safe of the fielders there. The ball will hit the fence for 4 runs at the whitish long off region.
6: Ye laga abha ka choka.
0: So this boundary, Sanjay, coming after 2 overs.
1: T20 international semi-final mukabla aur 2 over ke baad ek boundary West Indies ke batter se.
0: And that too not very convincing. That ball could have gone into the hands anyway. Wareham comes in over the wicket balls and in the slot played onto the wide-ish mid-off region, straight into the hands of the fielder all along the ground. Campbell, of course, playing on 22 of 24. But it now looks as if even Campbell is not really gelling with the kind of stroke she's known for. Here's the next one. She daringly steps up and oh, that ball. Is that a low catch? We'll have to wait and watch. And the ball has straight gone into the hands of the fielder there. Yes, that's another wicket there. And that ball went as a very low catch, trying to step out and play. Just couldn't get in the middle of the bat, low toe end of the bat. And the catch coming into the whitish mid-off region.
1: एलिस पेरी ने बड़ा बढ़िया कैच पकड़ा नीचे झुकते हुए. तारीफ करनी होगी उनकी, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी उन्होंने और शरीर के संतुलन को बनाए रखने में भले ही कामयाब नहीं थी, लेकिन कैच छोड़ा नहीं. छठा विकेट चला गया वेस्ट इंडीज का और अब ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज 100 के आंकड़े के लिए स्ट्रगल करता दिखाई देगा. कैम्बल ठीक ठाक खेल रही थी, कुल मिलाकर 22 रन बनाए उन्होंने, शुरुआत अच्छी की, लेकिन बाद के ओवर्स में थोड़ा सा संघर्ष दिखाई दिया. और अब डॉटेन आ रही हैं. डॉटेन आमतौर पर या तो मध्य क्रम में या पारी की शुरुआत करती हैं, एक अच्छी बैटर हैं टीम की. डिएंड्रा डॉटेन कुल मिलाकर 153 मैचों में 3000 से ज़्यादा रन हैं उनके, 14 अर्धशतक, 2 सेंचुरीज लगा चुकी हैं T20 इंटरनेशनल्स में, तो ये बताता है डॉटेन का कद क्या है. लेकिन आज मुकाबले से पहले थोड़ी सी चोटिल दिखाई दी, अब लगता है कि रिकवर करके वापस आई हैं.
0: संजय, अब शायद कहना पड़ेगा कि आप पछताए कहा हो जब चिड़िया चुग गई खेत.
1: बिल्कुल, चिड़िया तो चुग गई है, लेकिन ये अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है.
0: एब्सोल्युटली.
1: और आप आखिर तक कुछ कह नहीं सकते.
0: Well, Dotton comes. He's in a bit of a bother as Wareham's first delivery plays on the offside and no runs taken. We earlier saw how Dotton was carried from the middle of the ground where she was practicing. This was not in the game. So here is the next delivery, which is outside the off stump. And once again, just about on the fourth stump, which the batter wanted to convert into a stalk on the offside, moving away from the line of the ball. And no runs taken. We have six fielders on the offside, three on the on, four on the fence, two in the V, one on the mid-wicket region, one on the back of the square on the offside. Here's the next delivery, played on the offside. And that ball goes straight into the hands of Molyneux. And a very good chance of a run out goes out of hand for Australia, but I don't think they will mind ever. 16 overs gone, West Indies now 84 for 6.
5: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
1: तो डॉटन अब क्रीज पर आ चुकी हैं, लेकिन उनके आने से क्या वेस्ट इंडीज की उम्मीदें वापस जोर मारेंगी? क्या वेस्ट इंडीज इन आखिर के कुछ ओवर्स में, चार ओवर्स यानी कि 24 गेंदें बाकी हैं, 24 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा कितने रन्स बना पाएंगे? क्योंकि अब उनकी पास बल्लेबाजी भी बहुत ज्यादा बाकी नहीं है. ग्लासगो हैं, फ्लेचर, मुनीशर, तो जो नीचे के बल्लेबाज हैं वही अब इसके बाद दिखाई देंगे. गार्डनर कमाल की गेंदबाजी की उन्होंने आज, ये 17वां ओवर डाल रही है डॉटिंग के लिए. डॉटिन ने कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को ड्राइव किया एक लौते रन के लिए. गेंद बल्ले से लगी और डॉटिन ने अपने सफर की शुरुआत की. बहुत ही सॉलिड बैटर और लंबे समय से खेल रही है वेस्ट इंडीज के लिए. 2016 में वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप T20 इंटरनेशनल के फाइनल में हराया था और उस टीम की पांच लड़कियां इस टीम में भी शामिल हैं. जो तजुर्बा है, अनुभव है, लेकिन उसका आज प्रतिफल दिखा नहीं. इस गेंद को हल्के से केवल प्लेस किया, एक लौथा रन दौड़ करके पूरा किया. तो गार्डनर की दो गेंदों पर दो रन, वेस्ट इंडीज 86/6, 5.27 का औसत, रनों का औसत 5.25 के आसपास पूरी तरह से अटका हुआ है, न बढ़ता है न घटता है. और इस बार फिर निकाला मिड विकेट की दिशा में एक रन, ये दूसरे रन के लिए जा रही है. थोड़ा सा जोखिम हो सकता है, लेकिन आपको अब इन आखिर के ओवर्स में जोखिम लेना ही होगा. गार्डनर ने बड़ी कसी हुई गेंदबाजी आज की है, अच्छा प्रदर्शन गार्डनर का. अगर आप देखें कुल मिलाकर चौथा ओवर उनका चल रहा है, उनकी इकोनॉमी है 2.86. T20 इंटरनेशनल में 2.86 की इकोनॉमी के साथ दो विकेट लिए हैं गार्डनर ने. तुरुप का पत्ता है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए. और 17वां ओवर चलता हुआ ओवल में क्या वेस्ट इंडीज अपने बचाव के लिए आखिर के तीन ओवर्स में आतिशबाजी कर पाएगा? क्या डॉटन का बल्ला चलेगा? और इस बार गेंद पैड्स पर डालने की कोशिश की थी, लेकिन अपने शरीर से दूर धकेला, एक लौता रन और. इस एक रन के साथ वेस्ट इंडीज का स्कोर बढ़ता हुआ अब 90 रन 6 विकेट पर. डॉटन ने अब तक 5 रन बनाए 6 गेंदों से. ग्लासगो ने 4 रन बनाए हैं 4 गेंदों से. और गार्डनर के कोटे की आखिरी गेंद रक्षात्मक तरीके से रोका, एक रन दौड़ करके पूरा किया 17 के बाद 91/6.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
2: तुम हो ही भुलक्कड़.
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में.
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
0: West Indies in dire straits, and Shamla Sanjay says proudly that, you know, 50 dots have been bowled. So Sanjay, imagine 8.2 overs of dot deliveries, 9 boundaries and a 6. That says the story.
1: बिल्कुल, अगर आप इतनी डॉट बॉल्स डालते हैं, गार्डनर ने देखिए 24 में से 12 डॉट बॉल्स डाली, गार्थ ने 18 में से 9 डॉट बॉल डाली, तो हर बॉलर ने यहां पर अपना काम किया. हैमिल्टन ने 12 में से 7 डॉट बॉल डाली और क्षमा के साथ साथ हमारे जो स्टैटिस्टिशियन है प्रदीप कुमार तुम्बड़े, उनकी कलम भी बहुत तेज चल रही है ये बताने के लिए कि डॉट बॉल्स का हिसाब क्या है।
0: Well, what can Pradeep Tumre do if you don't really get the runs on the scoreboard? Here's the first delivery of a fresh over. Off the back foot, just tears it down into the back cut point. The ball running to the fence. That's four runs.
6: ये लगा आभा का चौका.
0: Tenth boundary, Sanjay.
1: अच्छा चौका, थोड़ी सी राहत और उछाल लेती हुई गेंद थी और उस उछाल लेती हुई गेंद का पूरा फायदा लिया चुके ऑफ स्टंप से बाहर थी, मौका मिला उसके ठीक पीछे जाते हुए गेंद को केवल खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक डॉट इन का।
0: Almost reminds you of Chris Gayle playing the upper cut as here's the next delivery that's played awkwardly on the on side. Didn't get the proper center of the bat there. The ball goes into Sutherland and one more run on the cards. The West Indies team has to literally play out of the skins, and I think if they get about 110 odd runs, 120 maximum, and just about daydreaming on that, I think that would be certainly a score that still not suffice. But the bowlers, as we said, bowling dots. So T20, you don't have to sometimes get wickets. Just keep bowling those dots and the batters are going to come under pressure. Garth runs away, bowls around the wicket to the left-hander. The ball is up in the air. Would that be danger? Yes! Oh, just dropping between two fielders. I almost started thinking it will land into the hands of the fielder. But then two of them almost converging, but the ball drops exactly in center of them at the long off region. But it was in the air, it hung in the air for a very, very long time.
1: बिल्कुल हवा में काफी ऊपर थी और फील्डर्स के पास मौका था बॉल के ठीक नीचे जाने का, लेकिन शायद जिस जगह पर वो मौजूद थी वहां पर उनकी पहुंच से बाहर, और इसीलिए वो कैच तब्दील नहीं हो पाया। एलिस पेरी थी।
0: पेरी वाज देयर द एक्सपीरियंस फील्डर, बट नेवर माइंड, एज हियर इज गार्थ कमिंग इनटू बॉल, ऑलरेडी 7 रन्स, इट्स ओवर, वाइड आउटसाइड द लेग स्टंप, दैट्स एन एक्स्ट्रा रन, शुड बी अ वाइड। सो well, I don't think they will now really bother about it because they already got the inroads quite well. They have dismissed the top six batters. Dot in, whatever she tries, now she can't do something magical to get the score. I don't think more than 120, if I just being very, very optimistic on that. There is no slip there. There is a gully slightly more deeper on the offside, and the batter this time placed the ball into that region of the point, dot in, moving away from the line of the ball. Slow delivery from Garth and just misses the line, and no runs taken. Now it's going to be a good contest between the bat and ball, and even there is a, you know, things shown on the big screen, the score predictor of 121, which is of course by looking at the standards of a T20 today, I think that's below par total we are looking at. Well, 17.4 overs gone, 99 for 6. The run rate hovering around 5.6 for a very long time. There are 6 fielders on the off, 4 on the on. The V protected long on, long off, mid wicket, and fielder at the point region. As here's the next delivery outside the off stump, thrashed! And the ball goes into the widest long off region like a bullet for 4 runs.
6: Ye laga, abha ka choka.
0: Very good shot there, moving away from the line of the ball, and a crushing blow to the ball, and the ball just goes super fast, beating the fielder there, and rushes to the widest long offense for 4 runs. Must say, Dutton has really come in and added some kind of a life into the shots there. That is Glasgow, the left-hander, and we see that the number of left-handers in the West Indies side is about 4 of them, as here is Garth coming into bowl, the last delivery of the over, 103 for 6. You got 2 more overs after this. Maybe 120, 125 could be quite optimistic. Now 5 fielders on the off, 4 on the on. Here she bowling in, right outside the leg stump, wrapped on the pads. No question about leg before. The ball goes into the point region, picked up there. A single taken in the process. And that ends the 18th over. West Indies, 104 for 6. Dot in 11, Glasgow 10.
1: मुझे लगता है कि अब तक का सबसे खर्चीला ओवर कुल मिलाकर 11 रन इस ओवर में आए हैं कार्थ के। और ऐसा होता है जब आप रन्स बनने लगते हैं तो आमतौर पर जो लंबाई है गेंद की दिशा उससे भी भटकाव आता है। 13 रन इससे पहले बने हैं, 13 रन इस ओवर में बने हैं, जो कि सबसे ज्यादा हैं। मॉलिन्यू और सदरलैंड ने इससे पहले तीसरे और आठवें ओवर में 10-10 रन खर्च किए थे, तो ये तीन ओवर्स ऐसे हैं जो वेस्ट इंडीज के लिए लाभप्रद रहे हैं। लेकिन कहानी ये है कि वेस्ट इंडीज क्या अपने इस टारगेट को डिफेंड कर पाएगा। सामने शक्तिशाली ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन, उनके जो बैटर्स हैं वो जिस तरह का प्रदर्शन करते हैं, वो सचमुच परेशान करने वाला है, चौंकाने वाला है भारत की मजबूत टीम को, जिस तरह से उन्होंने शिकस्त दी थी। और जितने संतुलित तरीके से खेलते हैं, जिस रणनीति के साथ खेलते हैं, अगर गेंदबाजी करेंगे तो विकेट टू विकेट बॉलिंग करेंगे। विकेट पर गेम थी, इस बार गेम को अपने से दूर धकेला एक रन के लिए। इसे एक रन के साथ, बल्कि दूसरा रन भी पूरा कर दिया तेजी के साथ दौड़ते हुए। रनिंग बिटवीन द विकेट बेहतर करने की जरूरत है इस समय। ये आखिर के एक दो ओवर्स ऐसे होते हैं जब आपको अपना सब कुछ झोंक देना होता है, और आज ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले में जो दबाव बनाया है वो डॉट बॉल्स के जरिए बनाया है। पहले से कमिट हो गई थी स्ट्रोक के लिए, और ये देखते हुए मॉलिन्यू ने जहां पर खड़ी थी लेग स्टंप के बाहर तकरीबन उस गेंद को रखने की कोशिश की थी, एक रन दौड़ करके पूरा किया। स्कोर प्रेडिक्टर 120 से 25 की कहानी बता रहा है, और रनों का जो औसत है वो अभी 5.84 है। मॉलिन्यू का ये आखिरी ओवर है, चार गेंदें बाकी हैं उनके, इस कोटे की दो विकेट उन्हें भी मिले हैं, और इकोनॉमी 6.6 के आसपास। इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर, और उठा दिया है गेंद को टप्पे के साथ, चार के लिए भी नहीं जा पाई, ऊंची गई लेकिन टप्पा खाने के बाद ठहर सी गई, और इसीलिए जो शायद उम्मीद थी एक बड़ा सा स्ट्रोक दिखाई दे रहा था वो नहीं बन पाया। दो रन दौड़ करके पूरे किए। डॉटन का बाद में आना क्या ये परेशानी का सबब था वेस्ट इंडीज के लिए? मॉलिन्यू की ये गेंद, और इस बार करारा स्ट्रोक,
0: एंड दिस वन द बॉल गोज इनटू द ऑफसाइड टू द वाइडिश लॉन्ग ऑफ रीजन, एंड वन मोर रन टेकन, and the score moves up to 110 for the loss of 6 wickets. Dotin not in control of the shot, the ball just rolls over on the bat, and the pace of the ball was taken away because the ball rolling over the bat. Lucky there was not a catch in there. Here's Molyneux for the fifth time in this over, and Glasgow steps out in confidence, didn't once again get hold of the ball. The ball goes into the wide-ish long off region. Sutherland picks up, disallowing the second run. The score now moves up to 111 for the loss of 6 wickets. And West Indies in real trouble there. Now, how much can you score in the last? I mean, you just left with 7 more deliveries to go.
1: Aakhri gain ka samna karengi Dotin. Aur is baar Dotin ne nikal diya on side par. Ek aur char.
6: Ye laga Abha ka choka.
0: Once again, confidence oozing out of Dotin, and who steps out daringly and plays the ball to the offside, to the whitish, almost an extra cover region, let's put it that way, and a good boundary to end up that over. So it looks as if the West Indies team now looks better confident compared to what it was earlier, and the Australian bowlers have really bowled wonderful. They've kept the ball on the stump line. Of course, occasional boundaries are bowled, but rather scored, but then the bowlers have done well. The highest score that the West Indies team in this World Cup, it was 163 for 3 versus New Zealand, then was 153 for 6 versus Scotland. The lowest score was 99 for 5, that was against Sri Lanka, as Sutherland bowls the first delivery. And that ball once again played nicely onto the back of the square on the inside. A bit of a risk involved, and the ball rushing to the fence for 4 runs on that occasion. Here comes Sutherland bowling outside the off stump, and that ball has been once again a crushing blow onto that one to the extra cover fence for more runs.
6: ये लगा आभा का चौका।
0: गुड गोइंग बाय दीज टू, गुड रिकवरी एक्शन, एंड द बॉल वाज ऑलमोस्ट होल्डिंग ऑन टू द पिच वेयर द राइट हैंडेड डॉटन प्लेड इट अक्रॉस टू द वाइडिश mid-off region. No fielder there for four runs. At least some respectability to the score for the moment. 120 for the loss of six wickets. Here's the next one. That's an uppercut. This will definitely be productive. The ball goes to the third man region. Four runs.
6: ये लगा आभा का चौका.
0: Wonderful shot and wonderful thinking, because the ball was there to be played, and this is the innovative technique for the batters who are in control of the shot to just play that one uppercut over the fielder there at short third and going to the fence for four runs. Sutherland must be rather unhappy. So West Indies now at least looks a bit more brighter compared to the situation they were in earlier situations. So five fielders on the off, four on the on. As here is the next delivery outside the off stump, and that's been played straight into Molyneux standing there at extra cover on the 30-yard circle, and no runs taken. So well, for the moment, two more deliveries to go, and West Indies now still below par in terms of their scoring. They were struggling very badly. So the partnership for the seventh wicket is 41 of 25 deliveries. That's what Shama is telling us. And that should really take you to a thinking point that what if these 41 runs partnership didn't come in? It would have been a distress signal for the West Indies. So Australia will have to make some effort. But then the West Indies bowlers will have a task in hand, because the score to defend is not really going to be a good score. 125 for 6. One more delivery to complete those 20 overs. One more legal delivery to come and bowl. And we'll just watch as to how much of a score can take up. Maybe a boundary this time. She steps out to play. That ball didn't quite come close to the bat. And the 20th over gets completed. The score reads 125 for the loss of 7 wickets. Yes, that was a wicket, because the ball got the edge and the keeper behind the stumps takes the catch. And Sutherland gets a wicket of the last delivery. So West Indies completing 20 overs with 125 for 7. Dotin not out on 26 of 16. Glasgow on 15 of 13. So good recovery action by these two for the 7th wicket with 45 runs of partnership. And now Australia will have to score 126 in those 20 overs. And that's going to be a good contest on the anvil. We're just waiting for our team in the studios to start a program immediately after this called a free hit for this 20 over match here. Free hit 20, and I leave you to the anchors and the experts to handle the program.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।

0: Hello and a very warm welcome to Free Hit 20 as we have just witnessed the first innings of the first semi-final between Australia and West Indies in the ongoing women's ICC Women's T20 World Cup, where Australia, after having won the toss today, decided to bowl first and they were able to contain the West Indian team for a mere 125 runs on board within 20 overs. Now, will Australia be able to chase this target is what we have to speak and is what we have to now witness also. But for the moment, I'm Sakshi Mandwal, joined over here by my dear friend and colleague for the evening, Amit Arora. Good evening, Amit.
1: Good evening, Sakshi. And yahan par charcha karne ke liye hamare saath hain Ravinder Singh ji, BCCI coach, Rakesh Rao, sports journalist, aur Asha Rawat, former India batter. Aap teenon ka swagat hai. आशा जी, 125 रन सात विकेट खोकर बनाए हैं वेस्ट इंडीज़ ने, कम है या काफ़ी हैं?
2: नहीं, वैसे कम है 125, जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया बैलेंस टीम है तो उनके लिए ये जो टारगेट है मुश्किल नहीं होगा, उनके लिए बहुत इजी होगा। अगर मैं वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग की बात करूं तो अगर देखें तो सारे जो बैटर थे ना वो केवल क्रॉस बैट चला रहे थे, मतलब बॉल की लाइन में नहीं खेल रहे थे। अगर वो ही उस बॉल की लाइन में खेलते तो मुझे लगता बेटर स्कोर होता।
0: राइट, राकेश, आई विल कम टू यू। समवेयर डू यू फील दैट द वेस्ट इंडियन बैटिंग जस्ट कुडंट पिक अप देमसेल्व्स टुडे, दे वर एवरीवेयर व्हाइल पुटिंग ऑन अ स्कोर टुडे?
3: या, यू आर राइट, बिकॉज़ व्हाट आई थॉट वाज दैट, यू नो, इवन आफ्टर दैट 47 रन स्टार्ट, समहाउ दे कुडंट गेट गोइंग। It was, you know, that they could never accelerate. They were just about, you know, that run rate of between 5 and 6. They stayed there and they ended up with just over 6 and over. And that is thanks to that 42 run stand for the, you know, that last wicket, which we saw, the 7th wicket. Otherwise, I think between that 47 run stand at the top and 42 run stand in the middle, in between, they had very little to show. And thanks to that, you know, that late kind of a charge which we saw, desperate charge, and that too, and it came from the bat of, you know, like that in which we all thought that she was not able, she, you know, like there was this thing whether she'll be able to come and bat or not. She gave that impetus. I don't think it's enough, but then women's cricket, as I said, 120 125, at the face of it, yes, Australia should just, for them it looks like just like a walk in a park, but let's see. I mean, because I'm also getting the impression that ball is probably stopping at times. But then, you know, when these guys, I mean, you know, I mean, when Australian girls come and bat, their skill sets are very different than what we have seen from the West Indian batters. So the timing and all, we are likely to see a very different approach.
4: Right. लेकिन अगर हम वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की बात करें तो यहाँ पर कप्तान सोफी मोलिनी ने 6 गेंदबाजों को लगाया, कप्तान ने खुद 2 विकेट लिए। एशले गार्डन की तारीफ करनी होगी रविंदर जी, 4 ओवर में मात्र 13 रन और 2 विकेट।
5: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी डिसिप्लिन बॉलिंग का प्रदर्शन किया सबने लोगों ने, और मुझे लगा है कि इतना एक्सपोजर शायद अब वेस्ट इंडीज़ में इतना लोकल वुमेंस में शायद नहीं मिलता होगा, जितने मैचेस नहीं खेल पाते होंगे, जबकि जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जैसी टीमें खेल पाती हैं। ये इनकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे लगा, सिर्फ मैथ्यूज ने शुरू में अच्छी बैटिंग करके दिखाया, बाद में डॉटिन ने थोड़े से अपने हाथ चलाए तो वो बड़े, और बाकी जो लग रहा था ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई फॉर्म में है, और पूरा टूर्नामेंट में जैसे पता चला 2 मैच हारने के बाद भी ये लोग पहुँच गए हैं, तो मुझे लगता है केक वॉक ही रहेगा ऑस्ट्रेलिया।
4: लेकिन आशा जी, अगर हम गेंदबाजी में देखें, 6 एक्स्ट्रा थे, 2 लेग बाय, 4 वाइड, नो बॉल तो हुई नहीं, प्रोग्राम फ्री है 20 है।
2: वो ऑस्ट्रेलिया ने मुझे लगता है सुन लिया, इसलिए उन्होंने कोई नो बॉल नहीं दी।
0: लेकिन अगर आज हम आशा यहाँ पर बात करें, जिस तरह की आज गेंदबाजी रही ऑस्ट्रेलियन टीम की, 47 में पहला विकेट गया, लेकिन असली कमर जो कहते हैं ना कहीं पर वेस्ट इंडीज की, तब टूटी जब अगली 4 गेंदों में उन्होंने 3 और विकेट्स अपने गवा दिए। एंड टू टॉप इट ऑल, उसके साथ अगर देखें तो आज जो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग का हम राउंडअप देखते हैं उसमें कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलियन की गेंदबाजी ने आज 54 डॉट बॉले डाली है, T20 के मुकाबले में जहां 120 गेंदें होती हैं उसमें 54 डॉट्स।
4: और राकेश कहते हैं एक भी नहीं होनी
0: चाहिए, मतलब कमेंडेबल थिंग कर दिया आज ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग ने ओवरऑल अगर देखें आज तो।
2: हाँ, वही ना, पहले तो सबसे पहले आप T20, मैं वही बोल रही हूँ, सारे क्रॉस खेलने के लिए जा रहे थे, अगर वो बॉल की लाइन में आके खेलते तो जो रन 125 बने हैं मे बी वो 140-150 के करीब चले जाते, पर आपने स्टार्टिंग में जब हमारे ओपनर आए तो वो ओपनर भी जो थे क्रॉस, सब क्रॉस खेल रहे थे, किया जो सर्फ, ये सब इन्होंने क्रॉस खेला, जबकि मैथ्यू बहुत अच्छा खेल रही थी बट वो उसने जो बॉल चूज करी वो बहुत ही गलत, मतलब वही मैं कह रही हूँ ना, सबने क्रॉस खेला, उसको स्ट्रेट खेलती तो मे बी वो बाउंड्री हो जाती।
4: राकेश, टू मेनी डॉट बॉल्स फॉर कम्फर्ट।
3: या बिकॉज यू नो इफ यू कांट प्ले स्पिन यू हैव लॉस्ट 6 out of 7 विकेट्स टू स्पिन and overall when you look at it you always struggle, you're not able to read the length, you're not able to gauge the turn, and it wasn't turning viciously. I mean it was just another typical England wicket where it doesn't spin so much, there is an extra bit of bounce I thought sometimes every time the ball hit the seam, and the batter struggled. Any delivery which had a bit of bounce and that too just a bit short of the length, you know, back of the proper length,

0: इस समय, क्योंकि रन उनके पास इतने हैं नहीं सेव उसमें, और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया पहले ही 6 ओवर के अंदर ही काफ़ी 50-60 रन बना के मैच को एक वन साइड ले जाएगा, क्योंकि ये विकेट जो है इतना, जिस हिसाब से बॉल किया है उस स्पिनर्स ने, उससे बहुत ही स्लो बॉल किया है, और वेस्ट इंडीज़ को भी अब, लेकिन बॉल तो स्पिन कर सकते हैं, लेकिन उनके पास वो डिफेंड करने के लिए उतना रन नहीं है। 160-170 रन बनते तो फिर शायद थोड़ा चांस बन सकता था, लेकिन इसमें मुझे लगता नहीं है कि मैच
1: जी। आशा, डिएंड्रा डॉटिन जो है वो पहले लग रहा था थोड़ा इंजरी स्केयर हो गया मैच से पहले, और वो खेलने भी बहुत नीचे आई, लेकिन फिर जब आपने उनको देखा खेलते हुए, 26 रन नाबाद 16 गेंदों में 4 चौके, तो फिटी लगी या फिर कुछ अभी कैरी कर रही है इंजरी?
2: नहीं, फिटी लग रहे थे जिस हिसाब से, बल्कि मुझे लगता है जो ओपनर ने नहीं करा सिंगल, वो लास्ट के बैट्समैन सिंगल ले रहे थे, तो वैसा गेम अगर वो पहले खेलते अगर ओपनर, तो मे बी स्कोर और अच्छा होता।
1: ऊपर खेलने क्यों नहीं आई राकेश?
3: टाइम चाहिए था उनको रिकवर होने के लिए, इसलिए बिल्कुल नीचे आए हैं।
4: सो समवेयर डू यू थिंक इट प्लेड अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज बिकॉज डिएंड्रा डॉटन वाजंट अवेलेबल, एंड कम टू थिंक ऑफ इट शी मेड 26, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन।
3: यस, आई मीन शी डिडंट हैव द टाइम आल्सो टू सेटल इन, शी जस्ट केम एंड जस्ट यूज्ड द लॉन्ग हैंडल एंड शी डिड इट वेरी इफेक्टिवली, सो यू हैव टू गिव इट टू हर, ब्रेव एफर्ट, बट आई थिंक बिफोर हर हूसोएवर केम दे डिडंट डू इनफ बिकॉज यू डिडंट रोटेट द स्ट्राइक, दैट बीट्स मी कंप्लीटली।
1: लेकिन अगर हम अब ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाजों की बात करें, तो जो विकेट कीपर है उनकी लेफ्ट हैंडेड बेथ मूनी और जॉर्जिया वॉल, कैसे देखते हैं आप सलामी जोड़ी को आशा?
2: जिस हिसाब से वो पहले भी बहुत अच्छा करते आ रहे हैं, 5 मैचों में अभी तो कोई उनकी मतलब हारे नहीं है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है पार्टनरशिप उनकी अच्छी, और उनमें सबसे पहली बात है कि कोई प्रेशर भी नहीं है, कोई इतना रन नहीं है, 120 बॉलों में 126 रन बनाने हैं, तो कोई टारगेट भी इतना नहीं है, तो उस हिसाब से, और बाकी उनकी बैटिंग लाइनअप भी बहुत अच्छी है। तो
4: रवि, आपके पास आऊँगी, 125 रन का मतलब स्कोर बना, 126 चाहिए ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए। आज हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग भी अप टू द मार्क उतनी नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की बॉलिंग उनके बॉलर्स ने आज करी है, वेस्ट इंडीज़ को 125 में उन्होंने कंटेन कर दिया। क्या यहाँ से कोई भी ऐसा पैतरा हो सकता है जो आपको लगता है वेस्ट इंडीज़ थोड़ा सा भी अपने इस गेम को अपने पक्ष में करने के लिए कर सकती है, अपना सकती है?
0: बिल्कुल, इसमें देखो वैसे तो क्रिकेट बने अनिश्चितता का खेल होता है, क्रिकेट में कभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर यही है कि आप स्पिनर से शुरुआत की जाए 2 रन से, और उसमें अगर कुछ एक आध कोई गलती वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया के बैटर कुछ कर सकें तो कर सकें, क्योंकि इस विकेट पे जो मुझे कोई ज़्यादा दम लग नहीं रहा कि बॉलर्स के लिए कुछ ज़्यादा दम है, अगर वो अगर ये चाहते तो थोड़े से मतलब सिंगल सुंगल्स निकाल के 160 तक पहुँचाते तो मैच में फाइट बनता, लेकिन अब तो मिराकल से हो सकता है अगर कोई 2-3 गलतियां करें और 2-3 विकेट निकाल जाए तो शायद प्रेशर बन जाए।
1: जी राकेश, ये जो गेंदबाजी है वेस्ट इंडीज़ के पास, अश्विनी मुनिसर, एफी फेचर, आलिया एलेन, जेनिलिया ग्लास्को, तो इनके पास भी है विविधता?
3: बहुत शार्प नहीं है, छोटी टीम्स के अगेंस्ट फिर भी ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं चलेगा ये, क्योंकि अगर वो इंडियन स्पिनर्स को देखने के बाद तब भी मैच निकाल सकते हैं, जितना भी इंडिया वाला मैच अगर आप याद करें तो उसमें स्पिनर्स ने जितना इफेक्टिव हो सकते थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि इंडिया के पास पेस अटैक उतना इफेक्टिव नहीं है, कहने को तो बॉलर्स हैं लेकिन वो जान नहीं है, तो यहाँ पे भी उनके पास वो वेराइटी क्लास नहीं है, स्पिनर हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो इफेक्टिव स्पिनर्स होंगे, वो क्लास है नहीं उनके पास।
4: राइट, एंड आई थिंक समवेयर टुडे इफ यू वर टू टॉक अबाउट दिस हाउ द गेम प्रोग्रेस्ड आल्सो, ऑस्ट्रेलियंस वर जस्ट वे टू गुड फॉर द डे फॉर वेस्ट इंडीज टुडे राकेश, मतलब दे डिड नॉट अर मच from their strategy apart from the fact that yes in fieldings we could pick out nitpick that there were dropped catches, dropped missed opportunities, but still the fact that they were able to hold their nerves together under extreme pressure in a match like a semi-final, much appreciation and kudos and a round of laurel should go for Australia today, do you think? So
3: Sakshi, far what happened was that, you know, barring that one dropped catch in the outfield, Australians held everything, you know, when the ball fell in no man's land, then it was beyond them. But overall, I would say that West Indies did nothing to put pressure on the Australians. That 47 run start was too sedate. You know, it should have been a little more, you know, in the face, which it wasn't.
1: Gee.
3: So when you are maintaining a run rate of around 6-7 initially, not good enough. Because Gee. If you want to put pressure, you have to be off to a flyer. And that we didn't see.
1: Gee.
3: And that is where I hold Campbell responsible. To a large extent, she stuck in there and she ended her innings. She played the longest. I mean, if you see the amount of time that she took, although she didn't get strike very regularly, but she couldn't even maintain 100% strike rate.

0: So.
1: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
2: मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
3: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
2: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
0: One key pillar which has brought about a transformation.
4: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
2: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
5: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
2: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
6: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
2: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
8: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आमतौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिधो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with secretaries on deregulation for ease of doing business and ease of living. Also discusses promotion of Atmanirbharta. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VB G Ramji Act 2025 to come into force from tomorrow. President Draupadi Murmu says students should strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. Railways to launch 3 projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra. US Supreme Court strikes down President Trump's order ending birthright citizenship. And in FIFA World Cup, France to take on Sweden in New York while Ivory Coast to clash with Norway in Texas. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today interacted with various secretaries to several ministries at Seva Tirth in New Delhi. The discussion focused on 2 key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos. Highlighting the importance of integrated planning and coordination, Mr. Modi encouraged wider utilization of the PM Gati Shakti as an effective platform for interdepartmental coordination and informed decision-making. He exhorted the secretaries to focus on the tangible impact of schemes on the lives of people. During the interaction, the secretaries outlined the major steps being taken by their ministries and departments in line with the 2 key themes. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen, VB G Ramji Act 2025, will come into force across rural India with effect from tomorrow. On the eve of the nationwide rollout of VB G Ramji Act 2025, Union Minister for Rural Development Shivraj Singh Chauhan said that no eligible rural worker should remain without work even for a single day. Mr. Chauhan said, the government, in close coordination with the states and union territories, has completed all administrative, financial and technical preparations to ensure a seamless transition to the new framework. He added, the enhanced guarantee of 125 days of wage employment will strengthen rural livelihoods, create durable community assets and accelerate the vision of Viksit Bharat. President Draupadi Murmu has called upon students to use education as a means to build an equitable and inclusive society. She said educated youth should not work only for their own progress, but also strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. The president said this while addressing the first convocation of the Central Tribal University of Andhra Pradesh in Visakhapatnam. The president urged the students to become agents of social transformation, saying education should go beyond securing employment and help strengthen society, culture, traditions and economic progress. She said every educated youth should help bring forward those left behind and contribute towards achieving the goal of a developed India by 2047.
10: बस 2047 तक विकसित भारत बनाने का हमारा लक्ष्य है। मुझे विश्वास है कि आंध्र प्रदेश का एक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अपना सार्थक, समावेशी और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित व्यवहारिक शिक्षण पद्धति से इस लक्ष्य प्राप्त करे और उसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
9: Union Education Minister Dharmendra Pradhan urged students to become job creators rather than job seekers and said universities should lead innovation to help realize the vision of a developed India by 2047. The Indian Railways will launch three projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. The Railways has approved the doubling of over 44-kilometre Mansi-Saharsa section of East Central Railway at a cost of 499 crore rupees. It will augment line capacity, improve operational efficiency and cater to the growing demand for passengers and freight movement on this important route. The Railways has also sanctioned a project for the replacement of relay-based interlocking with electronic interlocking at 27 stations or cabins on the high-density network and highly utilized network routes of Asansol Division of the Eastern Railway. The sanctioned work includes the replacement of 28 relay-based interlocking installations. It will cost over 432 crore rupees. The Railways has approved the provision of balance 48-fiber optical fiber cable across Southeastern Railway at a cost of about 200 crore rupees. The move will strengthen the digital communication backbone of the railways network in the country. Union Home Minister Amit Shah today launched the Foreign Contribution Regulation Act 2.0 portal and the electronic Overseas Citizen of India card in New Delhi. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that both the initiatives will improve citizen services and address the difficulties faced by those receiving donations through the FCRA portal. He said when the intention is clear, the policy is transparent and there is a mindset to embrace technology, then all forms of governance becomes easier for honest people. He underlined that a strict surveillance system is established against wrongdoers and the country becomes increasingly secure. The Home Minister informed that the new system will bring great convenience to more than 50 lakh OCI cardholders. He added that after 20 years, when a new passport is issued, there will be no need to reissue the OCI booklet and the cardholder's registration number will remain unique. General Dheeraj Seth took charge as the 31st Chief of the Army Staff from General Upendra Dwivedi, who superannuated after more than four decades of distinguished service to the nation. General Seth is an alumnus of the National Defence Academy, Pune, and was commissioned into the Armoured Corps in December 1986. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. The Special Intensive Revision SIR of Electoral Rolls has begun in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra today. As part of the exercise, in Delhi, over 13,000 booth-level officers will visit every household till the 29th of next month to distribute pre-printed enumeration forms in duplicate to all existing electors for verification and updation of the electoral rolls. Addressing the media, Chief Electoral Officer of Delhi Ashok Kumar said that claims and objections can be filed from the 5th of August to the 4th of September. The final electoral roll will be published on the 7th of October. More from our correspondent.
7: According to the data released by Office of the Chief Electoral Officer, Delhi, on day 1, more than 168,200 number of enumeration forms were distributed to electors. Over 7,600 numbers of enumeration form were digitized. The claims and objections can be filed from 5th of August to the 4th of September. Delhi has 13,033 polling booths covering 1,45,10,298 electors. Electors can also fill the enumeration form online at www.voters.ec.gov.in. Chief Minister of Delhi, Rekha Gupta, today submitted her enumeration form and appealed to all eligible electors in the national capital to participate in the ongoing revision process. Aman Yadav, Akashwani News, Delhi.
9: Jharkhand today observed Hul Divas with programs organized across the state to pay tribute to the heroes of the Hul Revolution, Sidho Kanho, Chand Bhairav and Phulo Jhano. Prime Minister Narendra Modi paid tributes to them and all the brave tribal warriors who stood firm against the injustice of foreign rule. In a social media post, Mr. Modi said, "The Hul Divas is a powerful symbol of the extraordinary courage and unwavering spirit of tribal communities who laid down their lives for the motherland." We have a report from our Ranchi correspondent.
11: Jharkhand Governor Santosh Kumar Gangwar offered floral tributes at Lok Bhavan in Ranchi, while Chief Minister Hemant Sorin paid homage at Siddho Kanu Udyan by garlanding the statues of the tribal heroes. Speaking on the occasion, the Chief Minister said that the struggles of these brave revolutionaries for the protection of Jal, Jungle and Zameen would continue to inspire society. Leader of the opposition Babulal Marandi and former Chief Minister Arjun Munda also paid tributes to the martyrs at Siddho Kanu Park in Ranchi. Thousands of people offered floral tributes at the Hul Memorial in Bhognadi and at Panchkatia in Sahibganj. Mahvish Rahman, Akashwani News, Ranchi.
9: India has signed 28 migration and mobility partnership agreements with over 26 countries for safe and legal mobility. Speaking at the Human Resource Mobility Forum in New Delhi today, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said several pacts with others are currently under negotiation. He underscored that India also recognizes the need for bilateral collaboration in ensuring safe, orderly and legal migration. He highlighted the collective responsibility of nations to combat illegal migration, exploitative practices, fraudulent intermediaries and human trafficking. Dr. Jaishankar said that India's commitment to safe and legal mobility is reflected in the e-migrate platform.
0: One key pillar which has brought about a transformation in the governance of migration has been the use of digital systems and tools. India's commitment to safe and legal mobility is reflected in the e-migrate platform. And since its inception, more than 5 million immigration clearances have been issued. This digital ecosystem has become a global example of leveraging technology to protect migrant workers while facilitating mobility.
9: The U.S. Supreme Court has struck down President Donald Trump's executive order aimed at ending birthright citizenship, reaffirming the long-standing interpretation that nearly everyone born in the United States is automatically granted U.S. citizenship. In case of Trump versus Barbara, the court ruled 6-3 that the executive order is unlawful. Chief Justice John Roberts, along with Justices Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett, and Ketan G. Brown Jackson, concluded that the order violates the 14th Amendment to the U.S. Constitution. The ruling marks the second time the Supreme Court has blocked a major policy initiative from President Trump's second term. It follows the court's February decision invalidating significant portions of his tariff policies. Afghanistan's permanent mission to the United Nations has strongly condemned the Pakistani airstrikes in the provinces of Paktia, Paktika and Kunar, which killed 36 civilians and injured over 160, including women and children. The mission called on Pakistan to immediately halt all military strikes on Afghan territory and ensure full accountability for alleged violations of international law. The Afghan mission said the strikes constituted a serious violation of Afghanistan's territorial integrity and were inconsistent with international law, including the Charter of the United Nations. On to sports. In the FIFA World Cup, Morocco and Paraguay have advanced to the round of 16. Morocco defeated Netherlands 3-2 on penalties after a thrilling 1-1 draw in Guadalupe, Mexico. Germany suffered a stunning exit after losing 3-4 to Paraguay in a penalty shootout in Boston, USA, following a 1-1 draw. Brazil has also secured their place in the round of 16 with a 2-1 victory over Japan in Houston, USA, late last night. Tonight, Ivory Coast will take on Norway in Texas, United States. The match is scheduled to begin at 10:30 p.m. Indian time. In another encounter, France will take on Sweden late tonight. The match is scheduled to kick off at 2:30 a.m. IST. The Board of Control for Cricket in India has announced a 15-member women's squad for the Asian Games 2026, which will be held in Aichi, Nagoya, Japan, later this year. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi interacts with secretaries on deregulation for ease of doing business and ease of living. Also discusses promotion of Atmanirbharta. Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VBG Ramji Act 2025 to come into force from tomorrow. President Draupadi Murmu says students should strive to uplift the weaker sections and contribute to nation building. Railways to launch three projects worth over 1,100 crore rupees to improve communication and operational system. Special intensive revision of electoral rolls begins in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Karnataka and Maharashtra. U.S. Supreme Court strikes down President Trump's order ending birthright citizenship. And in the FIFA World Cup, France to take on Sweden in New York, while Ivory Coast to clash with Norway in Texas. That is all in the news at 9. Good night.
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर. रात्रि के 9:15 हुए हैं. लीजिए सुनिए आकाशवाणी दिल्ली से आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल एक ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्ट इंडीज के मध्य खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल.
12: As the next delivery, that shot of a length and off the back foot, just plays it across at the onside. The fielder in hot pursuit but can't get to it. And that's a boundary onto the onside to the mid-on region.

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए।

तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है सचिन देव बर्मन का, फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

अगला गीत है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में, नगमा निगार हैं राजा मेहंदी अली खां, संगीत है मदन मोहन का, फिल्म का नाम है वो कौन थी।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। नगमा निगार हैं साहिर लुधियानवी, संगीत है रोशन का और फिल्म का नाम है बहू बेगम।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लेकिन कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा जिक्र तो कल्याण जी का होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये बात कल्याण जी और आनंद जी पर केंद्रित रहेगी। यानी जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की बातें होंगी आज के इस प्रोग्राम में।

कल्याण जी भाई दोनों भाइयों में सबसे बड़े हैं। 1929 में उनका जन्म हुआ था, जबकि आनंद जी का जन्म कच्छ में सन 1933 में हुआ था। मजे की बात यह है कि आनंद जी तो बचपन में कच्छ गुजरात में रहे, लेकिन कल्याण जी मुंबई में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चले आए। आगे चलकर इनका परिवार मुंबई आ गया। दोनों भाई चाल के अपने घर में, पड़ोसियों के घरों में रेडियो सुना करते थे, क्योंकि रेडियो तब एक लग्जरी हुआ करता था और सबके घरों में रेडियो नहीं होता था। जब घर में ग्रामोफोन आया तो दोनों भाई मिलकर सुरेंद्र, शांता आप्टे, कुंदनलाल सहगल और पंकज मलिक के गीतों को बड़े चाव से सुना करते थे। सन 1954 अचानक कल्याण जी वीर जी शाह शोहरत की ऊंचाई पर पहुंच गए। दरअसल शशधर मुखर्जी की फिल्म नागिन में उन्होंने संगीतकार हेमंत कुमार के निर्देशन में क्ले वॉयलिन पर बीन की आवाज निकाली थी। ये अपने आप में एक करिश्मा था, क्योंकि इससे पहले फिल्म संगीत में जब भी बीन के सुर सुनाई पड़ते थे तो वो असली बीन होते थे, लेकिन इस बार वाद्य बदल गया था और सुर कुछ तरोताजा हो गए थे।

0: इस गाने के वादक, जी हाँ वादक यानी म्यूजिशियन कल्याण जी को बड़ी प्रसिद्धि मिली। कल्याण जी वीरजी शाह ने बतौर अकेले संगीतकार फिल्म सट्टा बाजार में भी संगीत दिया था। अभी तक आनंद जी उनके साथ नहीं आए थे।
1: जरा ठहरो जी।

दिलचस्प बात यह है कि मनमोहन देसाई ने सन 1960 में जब छलिया फिल्म बनाई तो भी कल्याण जी आनंद जी को मौका दिया। छलिया का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय हुआ।

सन 1964 की बात है। मनोज कुमार फिल्म उपकार बना रहे थे। उनकी इच्छा थी कि इसका संगीत शंकर जयकिशन दें, लेकिन इस जानी मानी जोड़ी के बीच तनाव चल रहा था, इसलिए बात कुछ बनी नहीं। लेकिन जयकिशन ने कल्याण जी आनंद जी के नाम की सिफारिश मनोज कुमार से की।

उपकार वो फिल्म है जिसने कल्याण जी आनंद जी को शंकर जयकिशन के प्रभाव से मुक्त किया। यहां से वो संगीत आया जिसमें रिदम का अनूठा पैटर्न था।

सिने संगीत के कद्रदान केवल रिदम और अरेंजमेंट को सुनकर कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का फर्क समझ लेते हैं।

ताशी और बांसुरी और साथ में ग्रुप वायलिन, सब कुछ कल्याण जी आनंद जी के संगीत में अनूठा और निराला है।

कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये गाना मेरे छोटे भाई आनंद जी ने कई सालों पहले हिंदी ओजी का लिखा हुआ वो तैयार करके रखा हुआ था। तो मनोज जी नए नए डायरेक्टर हुए थे, उपकार पिक्चर बना रहे थे, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि कल्याण जी भाई ये गाना मेरे लिए रख लीजिए, मैं उपकार फिल्म में प्राण जी के

कहूँगा। तो हमने सोचा कि ये उसको उस टाइम प्राण जी फिल्मों में गाया नहीं करते थे, तो हमने सोचा कि ये बिल्कुल नए डायरेक्टर हैं और शायद हमें भी नए कर देंगे। लेकिन मनोज जी ने उपकार फिल्म में वो गाना प्राण जी से इतना अच्छा गवाया और प्राण जी ने भी इतना अच्छा गाया है कि जब अपन फिल्म देखते हैं तो लगता नहीं है कि किसी प्लेबैक सिंगर ने ये गाना गाया होगा। बिल्कुल प्राण जी ऐसी इसी तरह गा रहे हैं कि जैसे वो ही गा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली गाना मन्ना डे जी ने गाया हुआ है।

मुकेश और कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कुछ बड़े अद्भुत नगमे दिए हैं। दरअसल शंकर जयकिशन के बाद अगर मुकेश की प्रतिभा को किसी ने पहचाना तो वो कल्याण जी आनंद जी ही थे।

ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। आपको शायद मालूम होगा कि ये गाने के लिए हम लोगों को सिने म्यूजिक डायरेक्टर का फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था। और मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी गाना मैं जब अनाउंस करता हूँ तो सब लोग चाहते हैं कि इसके साथ कोई हंसी मजाक जरूर होनी चाहिए। तो इसमें तो सही वाक्या होगा हो गया था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन एक ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद किसी लड़की का फ़ोन आया कि भाई हमें आपका मैं तो एक ख्वाब हूँ ये गाना बहुत पसंद आया और मैं चाहूँगी कि आपके मुँह से ये गाना सुनूँ। तो हमने उनको म्यूज़िक हॉल पर बुला लिया, तो एक दफ़े सुनाया, उसके बाद फिर वो दो चार दिन के बाद आई कि मुझे हमें ये फिर गाना सुनाइए। तो तीन चार दफ़े उन्होंने जब हमसे सुना तो मैं उनके सामने देख रहा था। तो बाद में चौथी दफ़े जब मैंने ये गाना सुनाया तो मैंने ये गाना बोला कि मैं तो एक बाप हूँ, इस बाप से तो प्यार न कर, क्योंकि उसकी निगाहों से लग रहा था कि इसमें और कुछ चक्कर है।

0: कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत को मिला दिया। वे प्रगतिशील संगीतकार थे। प्रगतिशील इस मायने में कि उन्होंने संगीत के बने बनाए ढर्रे को तोड़ा, लगातार नए प्रयोग किए, नई ध्वनियां अपने संगीत में पिरोई और बनाया अद्भुत संगीत।
1: ढोल बजा

0: चाहे उदास नगमा हो या ढमाढम संगीत, कल्याण जी आनंद जी की कोई सानी नहीं। आइए कुछ उदास नगमे सुने जाएं इस संगीतकार जोड़ी के।
1: हम

0: फिल्म समझौता।
1: समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं। ये गाना मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने एक दिन मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। मैं बोला किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं आप? बोले भाई आपका मैं गाना लेके गया था और उससे मेरा एक पेशेंट बहुत अच्छा हो गया। बोला गाने से पेशेंट अच्छा हो गया? बोले आपके गाने के कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ गया। तो अरे सही वाक्य है कि अगर इस गाने को करेक्ट कोई मीनिंग समझे तो जिंदगी की काफी उलझने कम हो जाती है।

आपको ये जानकर अचरज होगा कि कल्याण जी आनंद जी की इस सदाबहार और सुपरहिट जोड़ी को जीवन में केवल एक बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1974 में ये फिल्म थी कोरा कागज। कल्याण जी आनंद जी की संगीत यात्रा इतनी लंबी है कि आधे घंटे के सीमित समय में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उनके सफर पर नजर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये जोड़ी लगातार हिट संगीत देती रही, लगातार लोगों के दिलों पर राज करती रही।

कल्याण जी आनंद जी की ये जोड़ी टूट गई है। टूटना शायद आपको सही शब्द ना लगे, ये जोड़ी एक दूसरे से बिछड़ गई है। आज कल्याण जी नहीं हैं, लेकिन आनंद जी हैं और है इस जोड़ी का अनूठा संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। कभी कभी जिंदगी में कोई चेहरा यूं ही सामने आ जाता है और फिर वो चेहरा एक आदत, एक दुआ, एक धड़कन बन जाता है। उसे देखते ही मन अनायास कह उठता है, तुझे देखा, लगता है तुझे चाहा। और शायद यही तो प्रेम की सच्ची और मासूम परिभाषा होती है। प्रेम को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती, कई बार एक नज़र, एक मुस्कान और एक अनकही सी चाहत ही दिल की पूरी कहानी कह देती है। किसी को चाहना उसके साथ होने का नाम नहीं, बल्कि उसके ख्याल से ही मन का महक उठना है।

चलो एक ऐसा संसार बुने जहां सिर्फ प्यार की बारिश होती हो, झीलों पर एक हाउस बोट हो जहां गुजर जाए पूरी जिंदगी, जहां सुबह सुबह हाउस बोट की खिड़की पर कोई धर जाए फूलों की टोकरी, एक ऐसा जहां हो जहां सुबह खिले मुस्कानों के साथ, जहां प्यार भरी गुफ्तगू से नरम धूप खिल जाए, जहां सपनीली आंखों से आसमान की ओर देखें तो शाम खुशगवार हो जाए, मुस्कुराएं तो चांद खिल उठे।

जरा सी बात कहनी थी कि प्यार है तुमसे, पर सदी बीत गई, जुबान से शब्द नहीं फूटे, नहीं कह पाए प्यार है तुम्हें से। पलकों की पंखड़ी में ही बंद रही प्यार की पोटली, शायद सच्चे प्यार की यही है परिभाषा। वो प्यार ही क्या जिसका बार बार बखान किया जाए, वो याद ही क्या जिससे प्यार ना हो, वो याद ही क्या जो हर वक्त दिल के करीब ना हो।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। बंद लिफाफे की तरह है सच्चा प्यार, लिफाफा खुलते ही आंखों को दिख जाती है कागज पर लिखी इबारत। मन की किवाड़ का सांकल खटखटाते ही खुद को खबर हो जाती है कि मन प्यार की गिरफ्त में है। प्यार का वही जमाना भला था जब चुपके से होता था प्यार, पलकों के भीतर रेशमी ख्वाब की तरह बंद, छुई मुई की तरह नाजुक होता था प्यार का वो जमाना। जमाना कोई भी हो, प्यार में इंतजार, समर्पण, किसी के लिए मर मिटने की तड़प हमेशा बाकी रहती है। प्यार में इंतजार बड़ा ही मीठा लगता है।

ढलती हुई रात से गुफ्तगु, चांद का सफर जारी है। चांद का मुस्कुराना उस रोज भी कुछ ऐसा ही था जब हुई थी मुलाकात उनसे। तारों की ओढ़नी पहनकर रात निकल पड़ी थी सैर पर। खूबसूरत हो रात, मनमीत हो साथ, तो बस जिंदगी में और क्या चाहिए।

आंसू और मुस्कान से मिलकर बनती है जिंदगी, पर दिल नहीं मानता। मुस्कानों को अपना हम सफर बनाकर उसी के गले लगना चाहता है, पर कभी कभी आंसू की लड़ियां भी दिल को सहलाती हैं। कई बार ये यादों की घाटी में ले जाकर खुली हवा में छोड़ देती हैं, जहां लम्हों के बेहिसाब फूल होते हैं, जिन्हें छूकर हम हौले से मुस्कुरा देते हैं। आंसू और मुस्कान से बनी जिंदगी से फिर से बे इंतहा मोहब्बत कर बैठते हैं।

रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:31 और पूरे 18 सेकंड्स हो चुके हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें। चांदनी रातें कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। जी हाँ, इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त अंजू शर्मा। और चलिए चलते हैं रोमांटिक फिल्मी गीतों के सफ़र पर और सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा रोमांटिक फिल्मी नगमा।

जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि मोहब्बत दुनिया का सबसे हसीन एहसास है। एक ऐसा जज्बा जो इंसान को जीना सिखाता है। लेकिन इसी मोहब्बत का एक दूसरा पहलू भी है, एक ऐसा पहलू जहाँ शिकायतें हैं, आंसू हैं और दिल का टूटना है। जब दिल टूटता है ना, तो इंसान पूरी दुनिया से और कभी कभी खुदा से भी सवाल कर बैठता है। मोहब्बत करने वाले तो अक्सर महफिलों में मुस्कुराते हैं, लेकिन तन्हाई में उनके दिल से बस एक ही सदा निकलती है। जी हाँ, किसी शायर ने बिल्कुल सही कहा है कि दिल लगाने से पहले सोच लेते हुजूर, ये तो वो रास्ता है जहाँ मंजिल कभी मिलती है, कभी हंसते हंसते रो पड़ते हैं वो लोग अक्सर जिन्हें मोहब्बत की वफा महफिल में नहीं मिलती। कुछ ऐसा ही सवाल एक मासूम सी शिकायत और दिल को छू लेने वाली तड़प लिए आज का हमारा अगला नगमा है। एक ऐसा गीत जो आज भी जब कानों में पड़ता है ना, तो बीते हुए लम्हों की यादें ताज़ा कर देता है।

जी हाँ, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। दोस्तों, ये प्यार ऐसी ही चीज़ होती है, जब प्यार के समंदर में कोई डूबता है ना, तो वहाँ पर दर्द भी बेहद मीठा लगता है। और दोस्तों, क्या कभी आपने भी ये बात महसूस की है कि आप भीड़ में हों, चारों तरफ महफिल सजी हो, लोग मुस्कुरा रहे हों, लेकिन आपका दिल किसी एक चेहरे को ढूंढ रहा हो, एक ऐसा चेहरा जिसके बिना पूरी कायनात अधूरी लगती है। जब वो आपके पास ना हो, तो चाय की चुस्की भी फीकी लगती है और पसंदीदा किताब के पन्ने भी बेगाने हो जाते हैं। इसी को तो कहते हैं बेकरारी। कहते हैं ना कि जब दिल को किसी की आदत हो जाती है, तो धड़कने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि उनके ख्यालों से चला करती हैं। इसी बेताबी को बयां करती हुई ये गीत की पंक्तियां भी आपके दिल को छू जाएंगी। आइए सुनते हैं इस बहुत ही खूबसूरत गीत को, मजरूह सुल्तानपुरी साहब के जज्बात, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जादुई धुन और सुरों के दो सबसे बड़े समंदर, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों का वो संगम जो सीधे आपके दिल के तार को छेड़ देगा।

जी हाँ दोस्तों, कहते हैं मोहब्बत में जुदाई का जो वक्त होता है ना, वो कांटे नहीं कटता, सदियों जैसा भारी हो जाता है। एक एक पल, एक एक दिन का इंतज़ार इंसान को अंदर तक खामोश कर देता है। आँखें हर आहट पर दरवाजे की तरफ उठती हैं और दिल बस एक ही दुआ करता है कि काश एक बार वो सामने आ जाए। और सोचिए, जब ये लंबा इंतज़ार अचानक ख़त्म होता है, जब सालों की जुदाई के बाद वो चेहरा अचानक आपकी आंखों के सामने आ जाता है, तो क्या होता होगा? जी हाँ, तब जुबां खामोश हो जाती है, शिकायतें हवा हो जाती हैं और सिर्फ आंखें बरसने लगती हैं। उस वक्त लफ्ज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि दिल सीधे दिल से गुफ्तगू करने लगता है।

0: जी हाँ दोस्तों, घड़ी की सुइयाँ अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं, और जब भी वक्त आगे बढ़ता है ना, तो दिल थोड़ा भारी सा होने लगता है, क्योंकि हमारे इस सुहाने सफ़र में अब उस मोड़ पर आने का वक्त हो गया है जहाँ से मुझे आपसे थोड़ा सा वक्त मांगना होगा। तो दोस्तों, हम आपसे विदा लेने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि विदा लेने का ये अंदाज़ आज बिल्कुल भी उदास करने वाला नहीं, बल्कि आपके चेहरे पर एक बेहद प्यारी सी मुस्कान छोड़ने वाला है। तो चलिए, आज के इस सफ़र को एक ऐसे ही बेहद हसीन और नटखट मोड़ पर ले चलते हैं और सुनते हैं कानों में रस घोलने वाला ये गीत। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।
1: तो हम चलते हैं।

0: परसों?
1: परसों नहीं, नरसों।
0: कहाँ?
1: यही, यहाँ कोई आता जाता।
2: जी श्रोताओं, इसी खूबसूरत नगमे के साथ अब अपनी रेडियो दोस्त अंजू शर्मा को आज का चांदनी रात कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की दीजिए इजाजत। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजेश्कियान से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
4: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
3: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साड़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारी आज की सभा के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। कल प्रातः 5:55 पर प्रातःकालीन सभा के प्रसारणों के साथ हम आपके समक्ष पुनः उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। शुभ रात्रि। जय हिंद।